मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृ वंदना से।

अभी आप समूह स्वर में वीरेंद्र सिंह की लिखी देशभक्तिपूर्ण रचना सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए चंद्रकांत गंधर्व के स्वर में गुरु नानक देव का शब्द।

चंद्रकांत गंधर्व के स्वर में अभी आपने गुरु नानक देव का शब्द सुना। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में बलबीर निर्दोष की लिखी रचना।

महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आपने बलबीर निर्दोष की लिखी रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना।

0: इसी के साथ आज की वंदना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख सुश्री मेनका वर्मा का है।
1: मानव संसाधन एक समय किसी देश का मजबूत पक्ष माना जाता था, अधिक लोग यानी अधिक प्रगति, पर जब से मशीन मानव श्रम का विकल्प बन गए हैं बहुत कुछ बदल गया है। मशीनीकरण के युग में कम लोग अधिक काम कर देते हैं, जिससे बहुत से हाथ खाली हैं। हाथ खाली मतलब पेट खाली, और पेट का खाली होना अर्थात एक सीमित क्षेत्र में रहने वालों की संख्या जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। पर यह पता कैसे चले कि जनसंख्या अधिक है? उत्तर स्पष्ट है, जब युवाओं में बेरोजगारी बढ़े, किसी परिवार को रोटी के लिए अत्यधिक श्रम करना पड़े तो समझा जाता है वहां की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का

0: 2020 की थीम थी परिवार नियोजन, लोगों का विकास, राष्ट्र की प्रगति। 2021 की थीम रही बच्चे के जन्म दर में विस्फोट का समाधान प्रजनन दर में बदलाव से ही संभव है। 2022 की थीम है महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा और कोविड-19 पर ब्रेक लगाना। विश्वभर में इस दिन प्रजनन नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की जाती है, बढ़ती जनसंख्या की दिक्कतों पर विचार विमर्श किया जाता है। लैंगिक असमानता, परिवार नियोजन, गरीबी, नागरिक अधिकार, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल, यौन रोग जैसे गंभीर विषयों पर चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। ये दिवस मनाया जाना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि 2020 की पहली तिमाही में विश्व की जनसंख्या 7.8 बिलियन है। पहली जनगणना 1808 में हुई, तब हम 1 करोड़ थे। अगले 55 वर्ष बाद जनसंख्या 3 गुनी बढ़ गई, जो 2000 तक 6 अरब से अधिक थी। एक शोध के मुताबिक 1 मिनट में 250 बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से 110 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, यानी हर सेकंड 4 बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से आधे नहीं बच पाते। विश्व की वर्तमान जनसंख्या 770.9 करोड़ है, जिसमें हम भारतीय 140 करोड़ हैं। हर साल विश्व में 8 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसमें 2 करोड़ की वृद्धि अकेले भारत करता है। हमारे यहां 50 वर्ष से कम के युवा 45 करोड़ हैं। चीन में यही आंकड़े 10% कम हैं। इस गति से हम 2100 तक 12 अरब हो जाएंगे। पिछले 2 दशकों में हम तेज गति से बढ़े हैं, पर केवल जनसंख्या के आंकड़ों पर। हम तमाम गतिरोधों के बावजूद हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया भारत में जोड़ रहे हैं। इस तरह हम सुपर पावर बने न बने शीघ्र ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जरूर हो जाएंगे। जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उस दर से प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ रहे। हमारी अनियंत्रित गति से हम जल, जमीन, ईंधन और रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि की विकराल समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे। भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा में हम निरंतर तरक्की कर रहे हैं। हमारे वन लगातार कट रहे हैं, खेत प्लाटों में बदलते जा रहे हैं। परिवार नियोजन से संबंधित शिक्षा, महिला शिक्षा, यौन शिक्षा, विवाह की आयु में वृद्धि, संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, आश्रम, शिक्षा और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन के साधनों और जनसंपर्क माध्यमों के प्रचार प्रसार आदि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार यदि जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियां अभी से गंभीरतापूर्वक अमल में लाई जाएं, तो 2050 के बाद आबादी में स्थिरता आ सकती है। धरती को जनसंख्या विस्फोट से बचाएं, जनसंख्या नियंत्रण के कठोर कानून बनाएं। स्थिति की भयावहता से पूर्व ही हमें सावधान हो जाने की जरूरत है।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, आलेख सुश्री मेनका वर्मा का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कलाकार हैं उत्तरा कैलकर और रविंद्र साठे। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

मुनियाज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आई। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी उत्तरा केलकर और रविंद्र साठे। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा विषय है दलहन तिलहन का उत्पादन अधिक आय का समाधान। जानकारी देते हुए डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू।
1: सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है जेमा दलहन तिलहन ला आगे बढ़ाना है। राहेर हमार छत्तीसगढ़ मा दलहनी फसल में बहुत मायने रखते और लगभग हमार पूरा छत्तीसगढ़ मा मेड़ में या खेत में राहेर की बुआई करते। तो जो संगवारी मन हमार मेड़ में राहेर की बुआई करते वो मन अभी जैसे बरसात चालू हुई एक दो पानी बढ़िया गिर जाई तो रोपा लगाए के पहली मेड़ मा सर्वनाशी आप निंदनाशक के उपयोग करके कचड़ा ला मार के उमा आप लगभग 3 फीट के गेप मा और एक पौधा से एक बीज से लेकर दूसरा बीज लगभग 4 से 5 इंच या अधिकतम 6 इंच के गेप पर एक एक पौधा डाल के आप बोई कर सकता हो। और संगवारी हो बोई के समय का जरूर ध्यान रखू कि माँ कम से कम एक बीज के आसपास गोबर खातु माँ या वर्मी खातु माँ 1 चम्मच के आसपास डीएपी खाद और पोटास खाद मिले रहा है ओकर मिक्सिंग करके आप ओकर उमर रख रख के बीज के जहाँ जहाँ बीज रखत जाओ वहाँ वहीं खातु भी दे जाओ। एकर से आपके पौधा के विकास में फायदा हुई और भविष्य में आपके पौधा में जो जैसे आवश्यकता रही जैसे 1919 से 2020 से या 0524 से 13045 से ये कोई घुलनशील जतका खाद है एकर उपयोग करके आप स्वस्थ पौधा तैयार कर सकता ओकर से आप लग निश्चित रूप से ज़्यादा उत्पादन हुई। बात आते संगवारी हो अब हमला ये थो खेत के मेड़ में धना में अब हमला खेत में बोना है। तब आप खेत में जब राहेर के फसल बोना है तो ओकर लिए जो किस्म है ओकर अनुसार 1.5 से 2 फीट या 2 से 3 फीट के बीच में बड़े बड़े नाली खींच लो और ओकर लिए अभी बढ़िया समय है। नाली खींचे के बाद आप जो उन्हें वो में जतका कचड़ा जाम ही वो कचड़ा ला आप जो उन्हें सर्वनाशी दवाई के माध्यम से ओला मार सकते हो। मारे के बाद जैसे 15 जुलाई से लेकर आखिरी जुलाई तक या अगस्त के पहली सप्ताह तक जब रिमझिम बारिश होते वही समय आप जो उन्हें हर मेड़ में आप ला अरहर की बुआई करना है। अरहर की बुआई करे से पहले आप ला बीज उपचार करना है। बीज उपचार के लिए आप ला राइजोबियम कल्चर जो अरहर के नाम से ही पीएसबी कल्चर और जेडएसबी कल्चर एकर साथ ही अगर संभव हो तो डीएपी के नैनो डीएपी भी 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के और जतका प्रकार के कल्चर बताया हो एकर 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है और उपचारित करके आपला बुआई करना है। बुआई करे के बाद संगवारी हो खेत में लगे है तो ओकर आवश्यकता के अनुसार आपला डीएपी या राखड़ खाद और गोबर खातु के साथ ही बुआई करना है। एकर बाद जैसे आपके फसल के अवधि आते वो अवधि के हिसाब से जौन जौन खाद की आवश्यकता है जैसे शुरुआती में घुलनशील खाद 1919 या 2020 ओकर बाद फूल आए के समय फिर वापस 13045 और ओकर बाद फली बने के समय 0534 ये तरीका से घुलनशील खाद के उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। संगवारी हो समय के अनुसार जौन भी कीड़ा बीमारी लगी वो कर लिए आप अपन नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या अपन जिला के कृषि विज्ञान केंद्र से या अपन कृषि विभाग के साथी मन के माध्यम से ओकर रोकथाम के लिए आप उचित दवाई की जानकारी ले सकते हो।
0: कृषि चर्चा में जानकारी का विषय था दलहन तिलहन का उत्पादन अधिक आय का समाधान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में डॉक्टर माधुरी देवी का वीणा वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें सुनिएगा ग्रामीण विकास विकसित भारत की पहचान विषय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर आईएएस श्री विश्व रंजन से विशेष संवाद। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार से खास मुलाकात और विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला जनगणना अधिकारी और अपर कलेक्टर श्री मनीष मिश्रा से विशेष बातचीत।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुबह 8:30 पर सुनिएगा। हड्डियों से संबंधित समस्याएं और उनका उपचार, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल। इनसे बातचीत करेंगे दीपक खटवार।

सुबह 9 बजे बातों बातों में इसमें सुनिए छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की होगी। सुबह 9:40 और 8:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे भरत लाल हरिंद्र, और साथ ही इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे गौतम चंद जैन और साथी को। दोपहर 12 बजे आकाशवाणी संग्रहालय से इसमें सुनिएगा गाथा जरोखों से का 7वां भाग, कर्तव्य परायणता की कहानी लोक गाथा अहिमन रानी, लेखक डॉक्टर पीसी लाल यादव, प्रस्तुति मोहन सिंह रामानी की। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत दोपहर 12:30 पर। घर आंगन में दोपहर 1:30 पर आज के गोट का विषय होगा विश्व जनसंख्या दिवस, श्रीमती वैशाली वर्मा की वार्ता, आर्थिक स्वावलंबन पर स्वरोजगार, साथ ही सुनिएगा एक कलाकार के गीत। युवाणी में शाम 5:10 पर अपन गोट का विषय होगा बाढ़त जनसंख्या के परिणाम, आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा मानसून मौसमी बदलाव के खेती ऊपर प्रभाव। शाम 7:30 पर आज की सलाह में डॉक्टर आशुतोष दुबे वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जानकारी देंगे गोबर एवं गौ मूत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। सुबह 10 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम नई फिल्मों से और सुबह 11:05 पर सुनिएगा सदाबहार नगवे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप सुन रहे हैं सुबह की ताजगी से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। नई सुबह अपने साथ नए अवसर लेकर आती है और आज का दिन भी इतिहास, समाज और प्रेरणा के कई रंगों से भरा हुआ है। साथियों, दुनिया के संदर्भ में भी जुलाई का यह समय नई सोच और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। मॉनसून देश के बड़े हिस्से में सक्रिय है, ऐसे में यह समय प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सावन के स्वागत की तैयारियों के साथ गांवों और शहरों में हरियाली का रंग धीरे धीरे

गहराने लगा है। यह मौसम सिर्फ मौसम नहीं बल्कि नई उम्मीदों, नई शुरुआत का एहसास भी लेकर आता है। तो चलिए इस सुहानी सुबह का सफर शुरू करते हैं।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: साथियों, आज बात एक ऐसे साहित्यकार की जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को आईना दिखाया। ज्ञानपीठ सम्मान से अलंकृत महान बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, जीवन का अनुभव भी सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह एक ऐसा विचार है जो आज भी प्रासंगिक है। हम सभी स्कूल और कॉलेज में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन धैर्य, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और रिश्तों की अहमियत हमें जीवन के अनुभव से मिलती है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है, हर सफलता हमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। आशापूर्णा देवी ने अपने साहित्य के माध्यम से यह बताया कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सोच को व्यापक बनाना, सही निर्णय लेना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है। आज जब नई पीढ़ी तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ रही है, तब यह विचार हमें याद दिलाता है कि किताबों का ज्ञान और जीवन के अनुभव दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

0: दोस्तों कहते हैं भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण विकास की, क्योंकि जब गांव आगे बढ़ते हैं तभी देश सशक्त बनता है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी, महिलाओं का सशक्तिकरण और किसानों की आय में वृद्धि, ये सभी ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहां ग्रामीण विकास केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की भागीदारी, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो चलिए इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला पंचायत सीईओ जिला रायपुर आईएएस विश्वरंजन जी। विश्वरंजन जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए कि ग्रामीण विकास का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या यह केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित है?
1: ग्रामीण विकास का अर्थ केवल सड़क और भवन या अधोसंरचना नहीं है
0: जी।
1: ग्रामीण विकास एक सर्वांगीण विकास की ओर इशारा देता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी विकसित ग्राम
0: जी।
1: जब हमारे गांव विकसित नहीं होंगे तो विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो 2047 के जो विकसित गांव का परिकल्पना अगर हम करेंगे तो उसमें केवल अधोसंरचना नहीं आएगा, उसके साथ साथ अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी, डिजिटल स्मार्ट विलेज आएंगे, सिंचाई रोजगार आएंगे, उच्च गुणवत्ता का स्वास्थ्य सेवाएं आएंगे, स्वच्छ पेयजल आएंगे, महिला सशक्तिकरण, किसान, ये सभी सहकारिता, ये सभी क्षेत्रों में एक सर्वांगीण विकास करके एक विकसित गांव का परिकल्पना होगी
0: जी। सर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं आज क्या हैं?
1: छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है
0: जी।
1: यहाँ पे जो जनजाति समुदाय है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, यहाँ पे वो फॉरेस्ट एरिया काफी है, उसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे माइनिंग रिलेटेड वो सब की मात्रा भी बहुत ज्यादा है यहाँ। तो यहाँ के प्राथमिकता है जैसे किसान
0: जी।
1: किसान यहाँ पे धान की कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो उस मामले में किसानों के लिए ये मतलब छत्तीसगढ़ के लिए किसान बहुत मायने रखते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा ग्रामीण विकास उसी आधारित होना चाहिए जो शुरुआती में किसानों का आय कैसे दुगनी हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उन सबसे हमारे आय कैसे वृद्धि हो, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हम कैसे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में ऊपर जाए, इस चीज पे बहुत ज्यादा

0: जोर देने की जरूरत है, उसके साथ साथ हमें सिर्फ वर्तमान पे ध्यान नहीं देना है, जैसे मैंने बताया 2047 का सपना देखना है, तो उसके साथ साथ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी AI जो एक्सपोर्ट हमें बाहर एक्सपोर्ट के रूप में एक्सपोर्ट हब के रूप में भी अपने आप को खड़ा करना है, तो ये सभी और ये सभी के लिए हमें अभी से गांव-गांव स्तर पर तैयारी करनी चाहिए।
1: जी सर, एक सवाल है कि आज डिजिटल तकनीक इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं गाँव के विकास में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है?
0: देखिए, डिजिटल तकनीकी से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है और भारत में आधार, जनधन, मोबाइल, ये ट्रिनिटी है, DBT से, UPI से जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो मतलब भारत में आज गाँव में भी इवन दुर्गम अंचलों में भी जो सुविधाएं उपलब्ध है, बड़े बड़े विकसित देशों में भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज हमारे बहुत छोटे किराना दुकान में भी जो UPI पेमेंट तुरंत होता है वो बाहर के राष्ट्रों में भी नहीं है। तो ये अभी से हम बाकी जो विश्व से भी आगे निकल चुके हैं पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और आने वाले समय में ये अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गांव-गांव स्तर पे सबसे पहले हमारा जो वर्कफोर्स है, यूथ वर्कफोर्स है, तो AI के जमाने में ह्यूमन का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, ह्यूमन इनपुट, क्योंकि AI भी आजकल आर्टिकल लिख रहा है, AI भी फोटो जनरेट कर रहा है, AI भी इंफॉर्मेशन खुद से जनरेट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन वेरीफाइड इंटेलिजेंस, ह्यूमन क्रिएटेड इंफॉर्मेशन, उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। क्रिएटर इकोनॉमी, जो ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें भी हमारे गांव-गांव के युवाएं उसमें भी भाग लेके अपना आय को वृद्धि कर रहे हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तमाम सेक्टरों में डिजिटल तकनीकी की प्रवेश होगी और हमारी उत्पादकता, गुणवत्ता, कैपेसिटी सब वृद्धि होगी।
1: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: दोस्तों, अगर खेल में प्रतिभा हो और उसे विज्ञान का साथ मिल जाए तो सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अब छत्तीसगढ़ भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर की खास बात यह होगी कि यहां खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती, फिटनेस, पोषण और तकनीक का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। यानी अब केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि डेटा और विज्ञान भी यह समझने में मदद करेंगे कि कोई खिलाड़ी किस खेल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और अपनी क्षमता को बेहतर कैसे बना सकता है। तो चलिए, इस विषय को विस्तार से समझने के लिए जुड़ते हैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव आईएएस यशवंत कुमार जी से। यशवंत जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: जी नमस्कार।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि स्पोर्ट्स साइंस क्या है और आज के समय में इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ गई है।
1: स्पोर्ट्स साइंस जैसे बाकी विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है जिसमें विज्ञान और खेल दोनों का ये संगम है। इसमें स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को किस तरीके से और कोचेज को किस तरीके से खिलाड़ियों को ट्रेन करना है जिससे उनका समग्र रूप से हाई परफॉर्मेंस हो सके, जिसमें स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी हो, बायोमैकेनिक्स हो, बायोमैकेनिक्स के बेस पे डाटा हो, डेटा के बेस पे डेटा एनालिसिस हो और डेटा एनालिसिस बताए कि आपका किसी खिलाड़ी का कौन सा चीज कमजोर है, क्या चीज उसका स्ट्रेंथ है
0: जी।
1: तो ये पूरा एक साइंस है जो स्पोर्ट्स में कैसे एक्सेल किया जाए इसके लिए मदद करता है
0: जी। सर, बिलासपुर के बहतराई में प्रस्तावित स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खिलाड़ियों के लिए किस तरह से अलग और खास हो सकता है।
1: बिलासपुर में चूंकि हमारा एक एक्सेलेंस सेंटर है तो इसमें सारे खिलाड़ियों का बायोमैकेनिक्स देखा जाएगा, उनके बेस पे उनका एनालिसिस करके उनको बताया जाएगा कि आपको किस सेक्टर पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा करना है या दूसरे चीजों पे फोकस करना है। और एक इसमें भी दो तरीके के साइंस होते हैं, एक होता है सभी गेम के लिए, सभी एथलीट के लिए, एक नॉर्मल साइंस होता है जिसमें नॉर्मल डेटा एनालिसिस होता है और दूसरे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी होता है कि फिर जब ये चयन कर लिया खिलाड़ी ने कि ये स्पोर्ट्स करना है, जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए उसको अलग चीजें, अलग तरह के चीजों की जरूरत है, अलग मसल्स की जरूरत है, तो वो मसल्स कैसे बनेंगे, वो मसल्स के लिए खास न्यूट्रिशन क्या होगा, ये भी स्पोर्ट्स साइंस का हिस्सा है। वो न्यूट्रिशन के साथ साथ कैसे उनको अगर इंजुरी से कैसे बचना है, पहले से ही प्रिवेंटिव तरीके से क्या क्या चीज किया जाए जिससे इंजुरी आपको कम से कम हो, और अगर इंजुरी हो जाती है तो उसका रिहैब किस तरीके से किया जाए, ये भी स्पोर्ट्स साइंस का हिस्सा है। तो न्यूट्रिशन

0: में कैसे मदद करेगा?
1: इसमें भी हम एथलीट मैनेजमेंट यूनिट एक AMU की का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जिसमें सारे खिलाड़ियों के डेटा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, वो सारे खिलाड़ी देख सकते हैं, कोचेस देख सकते हैं उनके, और हमारे एनालिसिस के लिए भी वो जरूरी होगा, ताकि वो और उनको स्पोर्ट्स पर्सन को हम यूनिक आईडी देंगे, जिसके बेस पे उनको ये पता होगा, वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि उनकी क्या चीज स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है।
0: जी सर, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस सेंटर से कैसे जोड़ा जाएगा, क्या इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जा सकती है?
1: ग्रामीण खिलाड़ियों तक हम स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के कैंप्स लगाएंगे, जिससे हम उनके तक, उनके दरवाजे तक पहुंच सकें और उनको हम एनालिसिस कर सकें। इसके अलावा जो स्कूल एजुकेशन के, जो स्कूल विभाग के जो खेल होते हैं, हायर एजुकेशन के जो खेल होते हैं, उन सभी में हम उनको आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का भी कैंप लगाएंगे और उसके बेस पे उनका एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी दूर दराज के भी खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर उनमें पोटेंशियल है, तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर उनको एक अवसर देता है, उनकी पहचान करता है कि ये इसकी जो है रनिंग कैपेसिटी या इसकी जो है ये कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, तो ये गेम के लिए अनुकूल हो सकता है। तो सभी की एक पोटेंशियल क्षमता जो होती है वो हम नापेंगे इसमें, और उससे जो है हम उनको आगे आने का अवसर देंगे।
0: जी सर, आखिरी सवाल है कि यदि किसी अभिभावक का बच्चा खेलों में करियर बनाना चाहता है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कम उम्र में वैज्ञानिक प्रशिक्षण शुरू करना लाभदायक होगा?
1: कम उम्र में भी ये स्पोर्ट्स साइंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, न सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्ट्रेंथ और साथ में स्किल, इसके अलावा जो बाकी एनालिसिस है और बाकी कैसे रिहैक कर सकते हैं, बाकी और कैसे एक्सेल कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशन से उसको और ज्यादा पावर बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजों पे इसमें फोकस किया जाता है। तो अभिभावकों को भी ये चीज समझने की आवश्यकता है, और साथ साथ कोचेज को भी ये समझने की आवश्यकता है। सही तकनीक, शारीरिक विकास, पोषण, पर्याप्त नींद और मानसिक संतुलन, ये सारी चीजें मिल करके ही एक स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेल कर पाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभिभावकों के लिए, हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, उनकी क्षमता, उनकी जो रुचि है वो अलग हो सकती है, तो उनके व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबी अवधि में सफलता का मूल मंत्र यही है।
0: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स साइंस जैसे विषय कुल पर हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।

0: साथियों, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य केवल बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा करना नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है। जनसंख्या तभी देश की सबसे बड़ी ताकत बनती है जब हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्याप्त पोषण, रोजगार के अवसर और सम्मानजनक जीवन मिले। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए हमारे लिए जनसंख्या एक चुनौती के साथ साथ एक बड़ा अवसर भी है। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं अपर कलेक्टर और जिला जनगणना अधिकारी मनीष मिश्रा जी से।
1: मनीष जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार
1: सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
2: जैसे आप सभी को पता है कि जनसंख्या किसी भी देश की स्ट्रेंथ होती है, और हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास उस स्ट्रेंथ के संबंध में हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम कितने लोग हैं और उनका क्या स्ट्रेंथ है, उसके संबंध में बात करते हैं। तो हमको पता है कि भारत जैसे बहुत विशाल देश के संबंध में 1865 से 1872 के बीच में हम अलग अलग क्षेत्र की लोगों के बारे में जानते थे, लेकिन 1881 के बाद हम नियमित रूप से हर प्रति 10 वर्ष में हम अपने देश के लोगों के बारे में कितनी जनसंख्या है इसकी जानकारी हम लेते रहे हैं, और उसके आधार पर हम तय करते हैं कि हमारी योजनाएं कैसे बनेंगी।
1: जी सर, एक सवाल ये भी है कि अक्सर कहा जाता है कि जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि संसाधन भी हो सकती है, इसे आप किस तरह से समझाएंगे?
2: आपने जैसे प्रश्न किया, इसके पहले मैंने बोला कि जनसंख्या हमारा संसाधन है, तो संसाधन के रूप में हम लेते हैं कि हमारे पास यदि हमको पता रहे कि हमारे किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और किस वर्ग के लोग हैं, और उनको हम कैसे उपयोग करके कैसे सशक्तिकरण करें, ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। तो हर 10 साल में हम पता करते हैं कि हमारे पास कैसे संसाधन है। तो जनसंख्या कभी भी बोझ नहीं होता है, उसको भारत जैसे देश में जहाँ पर विकास की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे करें, इस रूप में हम बात करते हैं।
1: जी सर। सर एक सवाल ये है कि भारत जैसे युवा आबादी वाले देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां और सबसे बड़े अवसर क्या हैं?
2: चुनौतियां तो नहीं मानता मैं, अवसर के रूप में ही देखता हूं मैं, कि मतलब युवा ही सोच होता है और युवा ही समझता है कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं।
1: जी।
2: और जैसे हम सोचते हैं कि युवा गलत दिशा में चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युवा ही मैं विवेकानंद जी का सूत्र को समझता हूँ, मैं APJ अब्दुल कलाम जी को समझता हूँ, उन्होंने कहा युवा शक्ति ही हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए काम करते हैं। तो युवा को हम दिशा देंगे, युवा खुद दिशा प्राप्त करता है, दिशाहीन नहीं है, बस उनको एक छोटा सा डायरेक्शन देने की जरूरत है, वो अपने आप ही सक्षम है।
1: जी सर, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य का संतुलित जनसंख्या विकास में कितना महत्व है?
2: बहुत अच्छी बात आपने कहा कि परिवार नियोजन, शिशु स्वास्थ्य और
1: मातृ स्वास्थ्य
2: हमारे पास क्या संसाधन है और उन संसाधन का कैसे समुचित और अच्छा उपयोग करें, इस संबंध में हमको सबको सोचना पड़ेगा कि परिवार नियोजन की जरूरत क्यों है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इन संसाधन का उपयोग अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन हम मतलब माताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में हम सोचें कि कैसे हम उनको बेहतर सुरक्षा, स्वास्थ्य और दे, और युवाओं के बारे में हम उनको ज्ञान दें और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाएं कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम कैसे अच्छे से हम इस संसाधन का उपयोग करते हुए इस देश के लिए और इस समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए हम काम करें।
1: जी सर, युवाओं में प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण और जागरूकता बढ़ने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि युवाओं को समझना होगा कि हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मतलब कि हो सकता है कि आज के परिवेश में हमको लगता है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा अपने को शरीर के तल में, जब शरीर ठीक होता है तो फिर हम सोचते अच्छा है, हमारा मन ठीक रहता है। जब हमारा मन ठीक रहता है तो हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब विचार अच्छे होते हैं तो हमारे भाव अच्छे होते हैं। तो उस हिसाब से सभी युवाओं के लिए और हमको सभी को समझना होगा कि कैसे हम अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें।
1: जी सर, एक सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जनसंख्या की गुणवत्ता सुधारने के लिए किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं?
2: छत्तीसगढ़ शासन हर प्रकार से केंद्र सरकार के साथ में, जो भी उनकी केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके साथ में शासन काम कर रही है। बस हमको, चूंकि फील्ड लेवल के हम अधिकारी हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो आपने प्रश्न किया है उन प्रश्नों के संबंध में हमको सबको ध्यान देना होगा कि महिला सशक्तिकरण, बच्चों के संबंध में, युवा के संबंध में क्या चीज़ पोषण होता है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा होता है, इसके बारे में बात करते हुए हमको काम करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा शहर दें और उस शहर के माध्यम से हम एक राज्य दें, उस राज्य के माध्यम से एक देश दें, उस देश के माध्यम से विश्व को दें।
1: धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको इस लायक समझा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: तो साथियों, इसी के साथ आज के नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का सफर यहीं पूरा होता है। उम्मीद है आज की सुबह आपको जानकारी भी मिली होगी, विचार भी मिले होंगे और संगीत की मिठास भी महसूस हुई होगी। सुबह का यह एक घंटा आपके दिन की शुरुआत को अगर थोड़ा और सकारात्मक बना पाया हो तो हमारा प्रयास सफल है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका पूरा दिन खुशियों, ऊर्जा और सफलता से भरा रहे, मैं यानी अंकुर शुक्ल आपसे लेता हूं अनुमति। आप लीजिए इस मधुर गीत का आनंद और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान

हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20

0: डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है और शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग का सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी है और हमारे संपूर्ण शरीर को, इसकी आकृति को व्यवस्थित रखने में, हमारे चलने फिरने उठने बैठने में हमारे शरीर की हड्डियों की यानी अस्थियों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कई बार हम अस्थि से संबंधित विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का क्या समाधान है, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल साहब को। आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और अस्थि रोग विभाग एम्स में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अग्रवाल, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम आम तौर पर हड्डियों से

0: संबंधित समस्याओं की बात करें तो आपके पास किस तरह के मरीज अभी ज्यादा आते हैं जिन्हें हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, अगर हम दुर्घटना को अलग कर दें तो?
1: हस्ति रोग विभाग में फ्रैक्चर्स को छोड़ने के बाद आमतौर पर मरीज वात रोगों के आते हैं, हड्डियों के कैंसर के मरीज आते हैं और स्पोर्ट्स इंजुरी लिगामेंट की चोटों के मरीज आते हैं।
0: अगर हम वात रोग की बात करें तो वात रोग क्या है और ये किस उम्र में ज्यादा होता है?
1: कई तरह के वात रोग हैं। जब हमारे

0: फैलती है। मजे की बात यह है कि जब मरीज आता है और दर्द बोलता है तो उसको तो कोई भी डॉक्टर, दवाई की दुकान वाले भी दर्द की गोली यानी एनएसआईडी दे देता है। जैसे ही एनएसआईडी खाता है उसका दर्द चला जाता है, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होती है। अभी तब इधर बीमारी बढ़ रही है और तकलीफ़ नहीं है। मरीज फिर 6 महीने बाद आता है, उसको दूसरी दर्द की दवाई लिख देते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपचार तो दर्द के लिए एनएसआईडी ही है। लेकिन यदि आपके मन में एक सस्पिशन है तो आप एक्सरे कराएंगे, आपको ऐसे जॉइंट के ऊपर असर दिखेगा, आपको हड्डियों का फ्यूज़न दिखेगा। आप यदि CRP, ESR, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएंगे तो ये बढ़े हुए आएंगे, और कुछ मरीजों में आपको HLA-B27 ये जांच भी पॉजिटिव मिलेगी।
1: डॉक्टर अग्रवाल, अगर हम वात रोग के कारणों की बात करें तो इसके कारण क्या होते हैं?
0: तो मैंने आपको यही बताया कि पहला कारण जो था युवाओं में, ये हो गया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके बाद जो दूसरा कारण होता है उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें प्राय मरीजों को प्रातः सुबह जब उठते हैं तो जोड़ों में जकड़न आती है, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, उंगलियों में जकड़न, और ये जकड़न प्राय आधा घंटे से ऊपर ले लेती है। धीरे धीरे जब आप काम करते हैं तो ये जकड़न उतरने लगती है। मुख्य रीज़न रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, महिलाओं को, 40 से 50 साल के बुजुर्गों को, और एक जो जीवन शैली लाइफस्टाइल, आज के दिन में आप देखेंगे कि 80% लोग AC में ही रह रहे हैं। हर कार्यस्थल पे AC लगा हुआ है। जब आप 9 से 5 तक AC में बैठे हुए हैं तो घर पे भी आपने AC लगवा लिया है, क्योंकि आप बार बार गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होता है, और वात रोग प्राय इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम खान पान की बात करें तो हमारे जीवन में नियमित रूप से हम जिन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, क्या उनका भी असर हमारे शरीर पर पड़ता है या वात रोग उसके कारण भी होता है?
0: ये प्राय देखा गया है कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठंडी जगहों पर रहते हैं, जो लोग बड़े तालाबों के बाजू में रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है। इसको आप इम्यून सिस्टम बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन ऐसे मरीजों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा पाई गई है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हमारे 8 जोड़ जो हाथ के अंदर हैं, हमारी कलाइयों के जोड़, हमारे कंधों के जोड़, कोहनियों के जोड़, घुटनों के जोड़, ऐसे करके आप देखेंगे तो सभी जोड़ों में एक के बाद एक दर्द होना चालू होता है। अच्छी बात यह है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को टेस्ट पॉजिटिव आता है RA फैक्टर का, यदि नहीं आया है तो NT-CCP फैक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आता है, और फिर दवाइयां हैं, पहले डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स दिए जाते थे, वो बीमारी को नियंत्रित करके रखती थी। आजकल बायोलॉजिक्स भी आ गए हैं जिसके इंजेक्शन देते हैं, कोई 3 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई साल का इंजेक्शन, और जोड़ों का दर्द जाता है। यहाँ पे ये देखने वाली बात ज़रूरी है कि आप अस्पताल में गए, आपने जांच कराई, आपके वात रोग का निदान हुआ, आपने ठंडे में रहना, आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब छोड़ दिया, पर 2-3 महीने बाद जब आपको अच्छा लगा तो आपने दवाइयाँ भी छोड़ दी। जब आपने वात रोग की दवाइयाँ छोड़ दी तो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं छोड़ते हैं, आप शक्कर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारियाँ नहीं छोड़ते हैं, पर आप वात रोग की बीमारी छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, अगली बार ये दवाइयाँ उतनी कारगर भी नहीं साबित होती हैं, और तब आपको

0: कूल्हे का जोड़ खराब होने लगता है, और इतनी बहुतायत में कूल्हे का जोड़ खराब हो रहा है कि दर्द के कारण उसकी तो जिंदगी खराब हो जाती है, जोड़ में चाल नहीं आती है। यद्यपि ग्रेड वन एंड ग्रेड टू सिकल सेल एवियन, पोस्ट कोविड एवियन या कोई और एवियन के लिए हम लोग स्टेम सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट के इंजेक्शंस देते हैं, कूल्हा बचाते हैं, पर जब कूल्हा घिस ही गया है तो आपको उसको बदलना होगा। पहले ऐसे बोला जाता था कि कूल्हा हम बुजुर्गों का बदलेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल जोड़ भी घिसेगा और मरीज की जिंदगी 15 साल 20 साल 25 साल चलने के बाद यदि और बचती है तो दोबारा जोड़ बदलना पड़ेगा। पहले ये बोलते थे कि जोड़ हम यदि बुजुर्गों का नहीं बदलेंगे और जवानों का बदलेंगे तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, जोड़ जल्दी घिस जाएगा। लेकिन अब जो इम्प्लांट मटेरियल्स आ रहे हैं, जो पॉलीज आ रहे हैं, वो इस ढंग से आ रहे हैं कि 25 साल 30 साल तो जोड़ वैसे भी चलता ही है। घुटने का जोड़ जो अस्थि संधि शोथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण घिसता है तो प्रायः 50 साल 55 साल 60 साल में बदला जा रहा है, और कभी कभी फ्रैक्चर के साथ जो जोड़ टेढ़ा हो गया है, या वात के मरीज की तो बॉडी वैसे ही कमज़ोर हो चुकी है तो 30 साल 35 साल में भी यदि जोड़ खराब है तो जोड़ बदलना उचित होगा, क्योंकि अभी आप सक्षम हैं, अभी आपके वर्किंग डेज हैं। तो अब यदि आपने अभी काम नहीं किया तो बुजुर्ग अवस्था में जाके आपका जोड़ बदल भी दिया तो आपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ तक इन जोड़ों की बात है, चाहे वो घुटनों के जोड़ हों या कूल्हे के जोड़ हों, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि हमारे शरीर का लुब्रिकेंट जब कम हो जाता है तब इसमें घिसावट ज़्यादा होने लगती है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं।
0: प्राइमरी अस्थि संधि शोथ या ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी आदमी को अपने आप तो होता नहीं है, कहीं न कहीं से घुटने में एक चोट लगी है जिससे आर्टिकुलर कार्टिलेज की डैमेज हुई है, और यह डैमेज पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। हाइलिन कार्टिलेज की जगह फाइब्रो कार्टिलेज आती है और अब जो रगड़ होती है उससे जोड़ घिसना चालू होता है। तो यदि घुटनों को हम मांसपेशियों के संतुलन से, नियमित व्यायाम से संतुलित रखेंगे, बॉडी वेट को हम कंट्रोल में रखेंगे तो जोड़ के ऊपर असहज चोट आएगी नहीं, फिर तो फ्रैक्चर ही होगा, तो वो हम सभी जानते हैं। अब जब ये चोट आ गई है, जोड़ घिसने लगा है, ऊबड़ खाबड़ हो गया है, तो बॉडी उसके लिए प्रयास कर रही है, पर ऑफकोर्स लुब्रिकेंट भी कम होता है। अर्ली स्टेजेस में आप लुब्रिकेशन दे के घिसाव कम कर सकते हैं।
1: वो जो आप बता रहे हैं कि लुब्रिकेंट दिया जा सकता है, किस तरह से लुब्रिकेंट दे सकते हैं?
0: तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप डिसीज मॉडिफाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिक ड्रग्स हैं जैसे ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइटिन, डायसरिन, इनको देते हैं, लंबे समय तक दवाई देते हैं तो जोड़ का फ्लूइड वापस आता है। आजकल इंजेक्शंस भी आए हैं हाइलोरोनिक एसिड के, जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस के अंदर जोड़ में लुब्रिकेशन करते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज की डैमेज को ठीक करते हैं, और प्रयास तो इस चीज़ के भी हैं जहाँ पे स्टेम सेल का इंजेक्शन घुटने के अंदर लगाया जा रहा है इस आशा में कि शायद घुटना ठीक हो जाएगा। पर अब देखिए दो चीज़ें, एक जोड़ जल्दी घिसा हुआ है, हम उसको इन चीज़ों से वापस ले आएँ, एक जोड़ टेढ़ा हो चुका है, मैकेनिकल डिरेंजमेंट है, उसको अब चाहे जो भी कर लें, स्टेम सेल या लुब्रिकेंट कैसे काम करेगा, वहाँ तो मैकेनिकल डिफेक्ट है। जब तक मैकेनिकल डिफेक्ट ठीक नहीं होगा, जो कि ऑपरेशन से ठीक होता है, या तो आप ऑस्टियोटोमी करके अलाइनमेंट पर लाएँ या घिसी जोड़ का जोड़ बदल दिया, वही उपचार है।
1: डॉक्टर की सलाह के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल, जो हमें अस्थि रोग से संबंधित जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम आगे आपसे और बातचीत करेंगे। अब मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: बहुत पहले 1980 के दशक में पिक्चर आई थी अवतार
1: जी,
0: उसका एक गाना था, यारों चलो उठो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो, तो और ये एक बहुत अच्छा गीत मुझे पसंद है
1: जी,
0: इसे बजवाइए।
1: बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है इस विषय से जुड़ा हुआ, तो सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।

0: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया। और डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल आज के इस कार्यक्रम में हमें जानकारी दे रहे हैं अस्थि रोग के संबंध में। डॉक्टर साहब, इस गीत से पहले आपने जोड़ों के प्रत्यारोपण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी अपनी दिनचर्या में अगर हमारे उठने बैठने चलने फिरने की हम बात करें तो वो कौन कौन सी गलत विधियां हैं या गलत तरीके हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर की हड्डियों पर पड़ता है।
1: देखिए, बच्चा पैदा होता है और मैक्सिमम बोन मास जो आता है, पीक बोन मास, वो 25 साल की उम्र में आता है। तो हमारा एम होना चाहिए कि हर आदमी के अंदर हड्डियाँ पीक बोन मास लें। मैंने देखा है कि घरों के अंदर माएँ बच्चे को मोबाइल दे देती हैं जिससे कि वो रोए नहीं। बच्चा मोबाइल खेलना स्टार्ट करता है और इसी के साथ क्या देखने में आ रहा है कि जितने भी लोगों का हम डेक्सा स्कैन एम्स में करा रहे हैं, हड्डी की स्ट्रेंथ की जांच कर रहे हैं, तो मोबाइल संस्कृति के में आने के बाद फोर आर्म के अंदर बोन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम आ रही है। जिसकी अपर लिम और लोअर लिम की डेंसिटी नॉर्मल है, उसके भी फोर आर्म की डेंसिटी कम है। तो बच्चों को हमको खेलने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। बचपन से ही लेट के पढ़ना गलत होता है, ये गलत है। आप बैठ के पढ़िए, सही आसन लीजिए। हम स्वयं करके बच्चों को प्राणायाम, उत्तम शारीरिक मुद्राएं, बेसिक योगासन देंगे तो बच्चा उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करेगा और आगे उसको ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। अगला आता है कदम, खान पान। फास्ट फूड का प्रचलन चला हुआ है, खाने में स्वादिष्ट होता है और आदमी खाता भी ज़्यादा है। आप व्हाट्सएप देख रहे हो पर खाना चालू है, आप टीवी देख रहे हो खाना चालू है। हो क्या रहा है कि बच्चा जो एक्टिव होना चाहिए था अब वो मोटा हो रहा है, स्थूल हो रहा है, मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं और ये चीज़ें आगे ज़िंदगी में जा रही हैं। कई लोग बैठते हैं कंप्यूटर के ऊपर, आजकल नौकरियां कंप्यूटर्स की मिल रही हैं, सब लोग इंजीनियर्स जो बन रहे हैं वो हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, एक टक कंप्यूटर पर बैठे हैं, गर्दन की हड्डियाँ अकड़ रही हैं, सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस हो रहा है। आधे लेटे होके देख रहे हैं तो कमर की हड्डी घिस रही है, लंबा डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है और मांसपेशियां तो कमज़ोर हो ही रही हैं। जो बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस की पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ को बताई जाती थी वो आज प्री मेनोपॉजल लेडीज़ में भी और सभी युवाओं को हो रही है। साथ ही साथ हड्डी की कमजोरी तो ठीक है, ऑस्टियोसारकोपेनिया अपने आप में एक बीमारी के रूप में उभरा है जिसमें बुजुर्गों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं। और हमको ध्यान देना है न्यूट्रिशन के ऊपर कि उनको प्रोटीन कम से कम दिन में 3 बार 30-30 ग्राम दें जिससे कि मांसपेशियाँ स्ट्रांग हों और नियमित व्यायाम सिखाए जाए, बैलेंस करके दिया जाए। क्योंकि यदि बुजुर्ग गिरेगा तो हड्डी तो टूटेगी, गिरने ही ना पाए तो बेहतर होगा और उसके प्रयास किए जाएँ।
0: डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के बारे में बताया कि आमतौर पर बच्चे अब देखा जाता है कि मोबाइल को लेकर बैठे रहते हैं और उनका चलना फिरना मोमेंट बहुत कम होता है और मैदानी खेलों से भी वो दूर होते जा रहे हैं, तो मैदानी खेलों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप अभिभावकों को?
1: तो स्पोर्ट्स इस टाइप के हुए, एक हुए इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, एक हुए नॉन इम्पैक्ट स्पोर्ट्स। एक बच्चा बहुत अच्छा है, तैरने जाता है, लेकिन अब सोचिए क्या हो रहा है, पानी के अंदर तो वजन वैसे कम हो जाता है
0: जी,
1: तो चालों आएंगी, जोड़ों में चाल आएंगी, मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो बोन कमज़ोर होगी। और जो हमारे देशी खेल हैं, पिट्ठुल, भागना, रस्सी कूदना, जंप्स, हाई जंप्स, ये इम्पैक्ट स्पोर्ट्स हैं। जब हड्डी पर लोड पड़ता है तो वुल्फ लॉ के अकॉर्डिंगली बोन जहाँ पर लोड पड़ता है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग बनती है, और इसलिए हमें इम्पैक्ट स्पोर्ट्स तो प्रमोट करने चाहिए।
0: तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
1: समय बांध दें, घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, और जब बाहर जाएंगे तभी धूप से विटामिन डी का निर्माण होगा
0: जी।
1: विटामिन डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, हड्डियों को स्ट्रांग करेगा, बच्चे का दिमाग अच्छा करेगा।
0: अब हम बात करें उन घटनाओं की जिन घटनाओं के बारे में ये कह सकते हैं कि ये कभी भी हो सकती हैं, और वो है एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से शरीर का कोई भी अंग फ्रैक्चर हो जाता है, तो आज की तारीख में फ्रैक्चर आमतौर पर आपके पास किस तरह के आते हैं और हमारे अंचल में इसका उपचार अब कितना एडवांस उपलब्ध है?
1: देखिए, यंग लोगों में एडल्ट्स के अंदर फ्रैक्चर का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो फ्रैक्चर होता था, एक एक्सीडेंट के साथ मरीज एक हड्डी तोड़ के आता था, अब कोई भी मरीज एक सिंगल हड्डी तोड़ के नहीं आता है। हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट्स, हाई स्पीड वहीकुलर एक्सीडेंट्स, इनके साथ मरीज की 3-4 हड्डियाँ टूट जाती हैं, और वो हड्डियाँ भी चकनाचूर हो रही हैं। क्यों चकनाचूर हो रही हैं? क्योंकि हमारी हड्डियाँ वैसे कमज़ोर हैं। तो इनके ऊपर आपको मरीज को स्वस्थ रखना है, फिर उसके ऑपरेशन से ही इलाज संभव है। और ऑपरेशन में भी हमको इस चीज़ को देखना है कि बाद में रॉड टूट ना जाए, प्लेट उखड़ के हाथ में ना आ जाए। तो ये एक पैटर्न है। दूसरी जो इंजुरीज आ रही हैं वो बुजुर्गों की आ रही हैं। बुजुर्ग ने गमला ढकेला, फिसल गया, उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई। बुजुर्ग घर में चल रहा था, कालीन बिछा था, कालीन में फंसा, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। कूल्हे की हड्डियाँ बुजुर्गों में बहुत सामान्यतः टूट रही हैं। यदि गोला टूटा है तो आप गोला बदल देते हैं, जोड़ प्रत्यारोपित कर देते हैं। यदि उसके नीचे टूटता है तो आप गोला नहीं बदल सकते। वैसे में एक PFN करके नई नेल आई है, सस्ती नेल है, लेकिन आपको ख्याल होगा कि दुर्योधन की मौत उस समय में भी जांघ की हड्डी तोड़ के हुई थी। पर अब हमारे पास ऐसी रॉड्स आ गई हैं जो ऑपरेशन करने से जांघ की कोई भी हड्डी टूट दिए तो मौत तो बचा लेती है। तीसरे फ्रैक्चर्स आ रहे हैं बच्चों के। बच्चों को सबसे कॉमनली होता है कि बच्चे को हाथ में लिया और झूला जला दिया। अब एम्स में आ रहे हैं, बता रहे हैं कोहनी में दर्द है, हो रहा है कि रेडियल हेड जो है सबलक्सेट हो रहा है, इसको पुल्ड एल्बो बोल रहे हैं। बच्चों को कंधे पर से उठाएं पर कलाई पर पकड़ के झूला ना झूलाएं। फिर जो हड्डियाँ टूटती हैं बच्चों की, तो आजकल फैशन है ऑपरेशन करा लो, लेकिन बच्चों की हड्डियों में यदि आपने ऑपरेशन किया तो हड्डी देर से जुड़ती है, इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चों में कैपेसिटी होती है रीमॉडलिंग की, तो यदि आपने बच्चे की हड्डी का एक्सरे देखा जो ओवरलैप में है तो आप घबराइए नहीं। नेचर इसको सेकेंड इंटेंशन से हील करके फिर बिल्कुल सामान्य जैसा ला देगा, जो कि एडल्ट्स में संभव नहीं है। पर बच्चों को जो ये शक्ति मिली हड्डी जुड़ने की, तो उसका फ़ायदा लीजिए। प्लास्टर्स में आमतौर पर बच्चों के फ्रैक्चर्स जुड़ जाते हैं।
0: जहाँ तक एक्सीडेंट की बात है, दुर्घटना की बात है, तो इसके लिए तो हर रोज़ एक ही संदेश जन जन तक पहुँचाया जाता है कि आप वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन सावधानी से चलाएं। लेकिन कई बार घर के भीतर दुर्घटनाएं घट जाती हैं, खासकर फिसलने की वजह से। पानी होता है घर के अंदर, लोगों के घरों में ज़्यादातर टाइल्स लगी हुई होती हैं और टाइल्स के रंग ऐसे होते हैं कि पानी कई बार दिखाई नहीं देता। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इसके बारे में?
1: तो टाइल्स पे पानी पे फिसलना एक आम समस्या है। बेहतर है कि इतने अच्छी टाइल्स ना लें कि उस पर पानी पड़े तो दिखाई ना दे। मैंने बताया कि जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं वो लोग अंधेरों में नहीं चलते, घर की रोशनियाँ संभाल के रखें, आदमी रोशनी में चलेगा। कालीन घर में सुंदर दिखते हैं लेकिन पैर में फंस के बुजुर्ग यदि गिरता है तो हड्डी को तोड़ता है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना ही होगा। और बाथरूम के अंदर कई बार बेडिंग मैट्स आते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि बेडिंग मैट पे आप नहा रहे हैं तो उसकी सफाई कराते चलें। ये एक फ्लोर क्लीनर्स रखिए ना, नहाने के बाद खुद चलाइए और देखिए कि आपके जाने के बाद जो दूसरे घर में आ रहा है वो फिसल के बाथरूम में ना गिर,
0: बिल्कुल
1: काई ना जमा होने पाए।
0: बाथरूम के टाइल्स में चिकनाई बिल्कुल जमा ना होने दें, और चिकनी टाइल्स तो बाथरूम में कभी लगाना भी नहीं चाहिए।
1: एग्जैक्टली,
0: है ना डॉक्टर साहब? हमने हड्डी के कैंसर के बारे में सुना है, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: हड्डी में बेसिकली दो टाइप के कैंसर होंगे, बुजुर्ग अवस्था में मेटास्टेसिस या सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स कॉमन है, और शरीर में कहीं पर भी कैंसर होगा वो हड्डियों में भी आएगा और फ्रैक्चर करेगा। लेकिन बच्चों में ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा एक प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है, ये जानलेवा कैंसर है। ये प्राय 10 से 20 साल के दशक में होता है, और ईविंग सार्कोमा जो है 10 साल से छोटे बच्चों के एज में होता है। तो होता क्या है कि बच्चा आता है, उसके पैरों में दर्द है, आपने दवाई लिखी और भेज दिया। अब वो आता है गठान लेके, और जब तक वो गठान दिखने लायक होती है तब तक तो शरीर में फैल चुकी रहती है। इसलिए अस्थि कैंसर के मरीजों के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि जैसे ही दर्द हो, यदि एक दिन दो दिन से ऊपर रहा तो एक्सरे जरूर करा लीजिए। यदि दर्द बना रहा तो MRI की सुविधा हो गई है, उसको करा लीजिए। विदुषों के अंदर जहाँ हड्डी के कैंसर प्रारंभिक अवस्था में मिल जाते हैं, हमारे यहाँ इतने बड़े आते हैं कि फिर हमको उनको कैंसर की दवाइयों से देकर नियंत्रित करो, फिर उनको निकाल के जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल जोड़ लगाओ और फिर आगे चलने दो। और फिर आर्टिफिशियल जोड़ बच्चे को लगाया है, उसकी उम्र तो 80 साल जानी है, तो आपको देखना पड़ेगा, एडजुमेंट कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो इतना क्यों करें, समय से एक बच्चे का हम एक्सरे करा पाएँ तो अपने आप में काफ़ी कुछ कैंसर जल्दी पकड़े जा सकेंगे।
0: क्या हमारे अंचल में हड्डी के कैंसर का उपचार संभव है?
1: हड्डियों के कैंसर सारी अस्थि रोगों में से 1% मरीजों को होता है। इसके इलाज के लिए हमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी और फिर ऑपरेशन की सुविधा, ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। हम लकी हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सुविधा प्राप्त है, भटकाव की जरूरत नहीं है। एम्स रायपुर में, मेडिकल कॉलेज में और अन्य जगह ये सुविधा समग्र रूप से है, और ये खर्चीली चीज़ है लेकिन शासन की मदद से समय पर लोगों को उपलब्ध हो रही है।
0: तो डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल जी, आज आपने अस्थि रोग जो विविध प्रकार के होते हैं, इन रोगों का उपचार किस तरह से करवाया जा सकता है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर किस तरह से उपचार करवाया जा सकता है, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बहुत विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम सभी अपने शरीर को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव जागरूक रहेंगे। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप हड्डियों से संबंधित समस्याएं और उपचार विषय पर डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है बातों बातों में। इसमें सुनिए छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ शासन का महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के उत्थान तथा उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हाल ही में बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों का दौरा किया। उन्होंने दुर्गम इलाकों में स्थित गांवों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। मंत्री ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर अनेक दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्रोताओं, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। मंत्री महोदया, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मंत्री महोदया जी, अभी हाल ही में आपने बस्तर संभाग के बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा आदि जिलों का दौरा किया था। इस दौरे के अनुभव आपके कैसे रहे? इस दौरे के दौरान आपने लोगों से मुलाकात भी की, तो उसके बाद आपने वहाँ पे अधिकारियों को क्या विशेष दिशा निर्देश दिए हैं?
2: देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बस्तर संभाग के कुछ जिलों में दौरा का कार्यक्रम बना रहा और खासकर वहां जाने का उद्देश्य ही था कि हमारी विभाग की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचे और इसलिए भी कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से विभागीय बैठकें, लोगों से बातचीत करना, ऐसा मेरा कार्यक्रम बना रहा। जाने के बाद बहुत सारे चीजों से अवगत भी हम हुए। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ पहली बार किसी मंत्री का जाना या गए भी हैं तो बाई रोड नहीं गए हों, तो भय मुक्त बस्तर बना। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी, हमारे विष्णुदेव साय जी के शासन में ये संभव हो पाया कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। तो अब सभी विभागों को मिलके अब वहाँ कैसे आम जनता तक, आम लोगों तक योजनाएं कैसे पहुँचाए, इस दृष्टि से 3 जिले का भ्रमण किया और उसमें बहुत कुछ का अनुभव हमें हुआ। उस अनुभव के आधार पे हम काम करना शुरू करेंगे।
1: मैडम, जैसे भी आपने जब बस्तर का दौरा किया था 3 जिलों का वहाँ पर, तो आपने जैसा बताया कि कई ऐसे गांव में पहुंची जहाँ इसके पहले मंत्री स्तर का कोई पहुंचा ही नहीं था। सड़क से आपने उनकी यात्रा की, कई लोगों से वहाँ पे मुलाकात की। आप प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। जब नक्सली समस्या का उन्मूलन हुआ तो अनेक जो नक्सल महिलाएं हैं, जो नक्सली संगठन में थी, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। या इसके अलावा वहां पे ऐसी महिलाएं भी रहती हैं जो नक्सली हिंसा से पीड़ित रही हैं, दोनों तरह की हैं। एक तो जो नक्सल संगठन से जुड़ी हुई, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, अब उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। ऐसी भी महिलाएं जो नक्सल हिंसा से पीड़ित रही हैं, तो आपका विभाग उनके पुनर्वास में बड़ी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। तो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
2: बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है और जो महिलाएं मुख्य धारा से कटे हुए थे जी, उनको लाके हम मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। वहां प्रवास के दौरान हमने काफी सारी महिलाओं से बातचीत किया और हम डायरेक्ट उनसे संवाद कर रहे थे।

0: हैं, काफी सारी चीज चर्चाएं हुई। तो मुझे एक बात समझ में आया, कभी कभी पीड़ा भी होती थी जब वो बात करते थे, उनके आंखों में आंसू झलकता था और मन दुखी भी होता था कि किसी के परिवार के सदस्य का चला जाना कितना तकलीफ देह होता है। कुछ महिलाओं से चर्चा हुई, किसी ने कहा मेरे बेटे को मार दिए, किसी ने कहा मेरे भाई को मार दिए, किसी ने कहा मेरे बाप को मार दिए, मेरी माता को मार दिए। कुछ ऐसे जगह पे भी हम गए जहाँ नक्सलियों को पुनर्वासित किया गया है,
1: जी
0: उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए या उनके जीवन में आगे वो कैसे बढ़े। अब तो आ गए हैं, सरेंडर हो गए हैं, अब लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, अपने विचार के साथ उनको लाना भी है, कैसे वो समाज के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करे इसके बारे में भी सिखाना है। तो महिला और पुरुष अगर दोनों की बात करूं तो बहुत सारे सरकार की ओर से उनको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं।
1: जी
0: कुछ महिलाएं कार चलाना सीख रही हैं, तो उनसे बात भी हुआ तो मैंने कहा कि कौन कौन कार सीख रहे हो, हाथ खड़ा करो। तो कुछ महिलाएं हाथ उठाई,
1: जी
0: मैं बोलूंगी अभी तो नहीं, अभी आप लोग सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार आती हूँ तो आप लोग कार में बैठा के घुमाओगे ना। तो बोले हाँ मैडम। तो ये बातें भी हुई।
1: जी
0: कुछ महिलाएं सिलाई सीख रही हैं, कुछ महिलाएं राज मिस्त्री का काम सीख रही हैं, मतलब उनकी इच्छा अनुसार,
1: अलग अलग विधाओं में
0: हाँ उनके इंटरेस्ट के आधार पे उनको बहुत सारे चीज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वो वहां से वो जब घर लौटेंगे, हमारी योजनाओं का लाभ हम उनके तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि बस्तर संभाग में हमने एक चीज और स्टार्ट किया है, लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने बस्तर में कार्यक्रम किया और वहाँ लॉन्च किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कुछ महिलाओं को हमने दिया भी है जो आत्मसमर्पण किए, उसमें मिलेट पुरुष सामग्री रहती हैं, वे मार्केट में जाके कहीं पे भी अपना ठेला लगा के, मतलब ठेला के सही दिए हैं, वो कुछ बना के लोकल जो चीज होते हैं, तो काफी इनकम भी हो रहा है। महिलाएं बड़े प्रसन्न होकर ये बात कहती हैं कि मैडम हमको हो रही है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो अच्छा लगता है, मन सुखी होता है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पा रही हूँ।
1: अभी आपने हाल ही में नई दिल्ली का भी दौरा किया था और अपने इस नई दिल्ली प्रवास के दौरान आपने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस दौरान बस्तर संभाग में जो आपके विभाग की योजनाएं हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी चर्चा हुई, इस बारे में हमें विस्तार से बताएं।
0: माननीय केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से बस्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत चर्चा हुई। एक बहुत बड़ा विषय रहा उस क्षेत्र के लिए कि नक्सल गांव-गांव तक काफी सारे योजनाओं से लोगों को वंचित रहे, स्वास्थ्य से वंचित रखे, शिक्षा से वंचित रखे, आंगनबाड़ी केंद्र से वंचित रखे। अब क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा ऐसा है कि जहाँ महिला हों, बालक हों और बुजुर्ग हों, तो उनकी सेवा करना, उनके लिए कार्य करना हमारा उद्देश्य है कि हम इनको कैसे प्राथमिकता दें। इस दृष्टि से वहाँ की क्या क्या अनिवार्यता रही, हम वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिलना हुआ। और इस चीज पे भी कि केंद्रीय मंत्री जी हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, बस्तर तो नहीं कहूंगी लेकिन कांकेर जिले में चुनाव से पहले उनका ड्यूटी भी लगा था, और कुछ दूरस्थ क्षेत्र में ऐसे नक्सल क्षेत्र भी वो आके देखे और उन्हें इस चीज का अनुभव भी था कि वाकई में हमारा बस्तर क्षेत्र कैसा रहा है। तो काफी सारी विस्तृत चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के दौरान जो मांगे रही हमारी, जो प्राथमिकताएं रही, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है क्योंकि कभी नक्सली चाहे ही नहीं कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यहाँ के लोग जागरूक
1: जी
0: हों, ये सब विडम्बनाएं रही हैं। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी इस बात से अवगत होते हुए बोले बस्तर क्षेत्र के लिए विशेष हम फोकस करेंगे और वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र किसी बड़ी कंपनी के जो CSR होता है, DMF होता है, उसके माध्यम से दिलाने का प्रयास करेंगे। मतलब बस्तर के लिए आधा घंटा केंद्रीय मंत्री जी से चर्चाएं हुई,
1: विशेष रूप से उसी को लेकर
0: वहाँ
1: चर्चा।
0: फोकस वहाँ के लिए हुई, उनका भी बात वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा भी हमने क्या देख के आया है,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ गोंडी और हल्बी भाषा में लोग ज्यादा समझते हैं।
1: जी
0: और ये भी अनुभव रहा कि पहली बार लोग देख रहे हैं, कोई मंत्री उनके बीच जा रहे हैं, वैसे सरकार के सभी मंत्री वहां जा रहे हैं,
1: जी
0: तो महिलाओं का उनसे संवाद हो गोंडी और हल्बी भाषा में, क्योंकि हम तो अब हिंदी ही उनसे बोल पाएंगे
1: जी
0: तो एक्सप्लेन करने वाले और रहे हैं,
1: जी
0: तो ये भी समस्या हम अवगत
1: मैं
0: कराए
1: वही,
0: हैं।
1: असल में मेरा अगला
0: जी
1: सवाल ही वही था कि आप मंत्री हैं, एक अनुभव है आपको मंत्री के नाते और आपने बस्तर का दौरा भी किया, तो ये भी आप जानती हैं कि कोई भी जो योजना होती है विभाग तो अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करता है लेकिन

0: योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता की सहभागिता हो उस योजना में, जनता जागरूक हो, और जागरूक होने के लिए जरूरी है कि योजना की जानकारी उन तक पहुंचे, और यदि उन्हीं की अपनी भाषा या बोली में पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। तो हमें पता चला अपने हाल में जब बस्तर संभाग का दौरा किया और उसके अनुभव के आधार पे अपने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि बस्तर संभाग में जो स्थानीय जो आदिवासी हैं उनकी जो बोली है, चाहे वो हल्बी हो या गोंडी हो, उसमें योजनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी बिल्कुल, हमने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि हमारे बस्तर संभाग के लिए एक ऐसा हो कि स्थानीय भाषा में हमारे वहाँ के लोग चुन के आए और स्थानीय ही लोग रहे हैं, ताकि गोंडी है तो गोंडी भाषा में वहाँ के लोगों को समझा पाए, कोई हल्बी भाषा वाले हैं तो हल्बी से समझा पाए। तो जब तक हम उनको समझा नहीं पाएंगे, उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और जो मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा जो प्रयास रहा है, मुख्य धारा से लोग जुड़े भी हैं, तो अब सहभागिता हम सबकी बनती है, हम सबका दायित्व बनता है कि वहाँ के विकास की दृष्टि से हम सबको आगे आना पड़ेगा। प्रशासनिक अपने स्तर से प्रयास कर रही है, शासन अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता भी हमें सहयोग प्रदान करे।
0: एक बात और है मंत्री जी कि योजनाएं खूब अच्छी बन रही हैं, लेकिन आप ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वो योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू हो, जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगे, इसके लिए भी आपने कदम उठाए हैं। और अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या जो सहायिकाएं हैं, जो साड़ी खरीद की राशि है अब सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी। इस निर्णय की वजह क्या है, इसे बताएं।
1: देखिए, कुछ दिन पहले साड़ी को लेके काफी विवादें हुई। विवाद का कारण क्या रहा मुझे नहीं पता, हमने तो निविदा जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत गए, लेकिन कहाँ पे गलतियां हुई इससे अवगत होते हुए हमने ये बड़ा डिसीजन लिया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में जो उसका अमाउंट है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाए, और विभाग से ये निर्देश भी किया जाए कि उनके साड़ी का कोड क्या होना चाहिए, वो हमने तय कर दिया है। अब डायरेक्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी के सहायिका स्वयं से साड़ी खरीद के पहनेगी, जो उनका काम है आंगनबाड़ी केंद्र में, सहायिका का काम है भोजन बनाना, कार्यकर्ता का काम है पढ़ाना, औपचारिक रूप से जो उनके बच्चों को शिक्षा देने का रहता है, खेल खेल में बहुत सारी चीज सिखाने का रहते हैं, संस्कार देने का विषय रहते हैं, वो पूरे मन के साथ कर सके।
0: एक बात और है कि जो महतारी वंदन योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में किस तरह से भूमिका निभा रही है, अब तक इस योजना के कैसे परिणाम मिले हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जैसे ही सरकार बनी, 2 महीने में महतारी वंदन योजना का जो घोषणा था उसको पूरा किया है। आज जनता के आशीर्वाद से जिस महिलाओं को महतारी वंदन योजना मेरे सिग्नेचर से जाता है, लेकिन 1000 का महत्व ये महिला बाल विकास की मंत्री भी जानती है कि क्या होता है उन मिडिल क्लास के महिलाओं के लिए या परिवार के लिए, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, पारिवारिक समस्याएं होती है, उसको दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। और हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो 1000 रुपए जो उनके खाते में जाता है, गांव की महिलाएं आपस में इस 1000 रुपए से एक मंदिर का निर्माण किए हैं जो हमारे आस्था का केंद्र रहता है, और तो इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ हो ही नहीं सकता।
0: एक बात और है मंत्री महोदया कि प्रदेश में हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, आप भी इसको लेकर काफी उत्साहित है, और बस्तर प्रवास के दौरान भी आपने लोगों को, बच्चों को भी इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। तो जो मुनगा है वो किस तरह से कुपोषण की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में बताएं। और साथ ही राज्य सरकार जो है वो जो सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं।
1: इसमें हमने एक बड़ा निर्णय लिया कि सुपोषण छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम बस्तर संभाग के 4 जिले और सरगुजा संभाग के 4 जिले को लिया है, जहां कुपोषण की दर अधिक है। तो ऐसे जिलों को चिन्हांकित करके सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान के तहत अतिरिक्त पोषण आहार उनको दिया जा रहा है। हमने प्रदेश भर में ये आह्वान किया है, निर्देशित भी किया है अधिकारियों को कि सभी घरों में मुनगा का पेड़ अवश्य लगाएं।

0: गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चों, मतलब वो सिर्फ अकेले अपना ही शरीर नहीं संभाल रही है, वे दो जान को संभाल रही है, अपना भी है अपने बच्चे का भी। तो हमने विशेष निवेदन गर्भवती महिलाओं से भी किया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी किया है, सहायिकाओं से भी किया है कि विशेष निगरानी में उनको लेके हर घर मुनगा का ये अभियान चले, ताकि बरसात के सीजन में जब मुनगा एक साल में तैयार होने वाला पौधा होता है ये, तो हमने प्रयास किया है कि इस बरसात में, पिछले बार भी किए थे, इस बार और ज्यादा इसको गति देते हुए हमने ये अभियान चालू किया है कि हर घर में मुनगा पौधा लगाए।
1: बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय, आप, मैं जानता हूँ कि बहुत व्यस्त समय रहता है आपका, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एक बार पुनः हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। धरती फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जय किशन ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रेम पुजारी, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। नीरज के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
2: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आराधना फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।
2: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ,
3: बागों में बाहर है?
2: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
3: गर्मियों की निहार है?
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। आप सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तक सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं भरत लाल हरिंद्र और साथी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भरत लाल हरिंद्र और साथियों को।

लीजिए अब सुनिए भरत लाल हरेंद्र और साथियों के स्वर में ये छत्तीसगढ़ी गीत।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे भरत लाल हरेंद्र और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। और महासमुंद की छात्रा रागिनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। फेरबदल में एक आईजी रेंज, कई डीआईजी, एआईजी और 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। आईपीएस अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक आईजी बनाया गया है। जिलों में भी व्यापक बदलाव करते हुए चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा त्रिलोक बंसल को बेमेतरा, सुनील शर्मा को सारंगढ़ बिलाईगढ़, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम, चौहान किरण गंगाराम को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, राय गौरव राम प्रवेश को बलौदाबाजार भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर, मयंक गुर्जर को सुकमा, संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, भावना पांडेय को धमतरी और हरीश राठौर को कोरिया जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा रॉबिन्सन गुरिया को रायपुर नगर का पुलिस उपायुक्त पश्चिम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर महीने सड़कों का वीडियो आधारित निरीक्षण होगा। एआई तकनीक गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की पहचान करेगी। इसके आधार पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता तय कर मरम्मत की कार्ययोजना बनाई जाएगी। इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट आज से प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा। प्रत्येक जिले में एक एक चुनी गई सड़क का एआई आधारित निरीक्षण शुरू किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले की जांच में अब तक 3,407,77,00,000 रुपए की कथित अपराध आय का पता लगाने का दावा किया है। एजेंसी के अनुसार इस मामले में अब तक 573 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्तियां जब्त या कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी ने बताया कि मामले में अब तक 5 अभियोजन शिकायतें विशेष पीएमएलए अदालत रायपुर में दाखिल की गई हैं और जाँच जारी है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर मुख्य मार्ग पर 2 बाइक आमने सामने से टकरा गईं। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। महासमुंद की छात्रा रागिनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की रागिनी साहू छत्तीसगढ़ से चुनी गई इकलौती छात्रा हैं। देशभर से चुने गए 20 विद्यार्थियों में उन्होंने जगह बनाई है। मिशन के तहत 108 देशों के छात्र चंद्र उपग्रह और रोवर विकसित करेंगे जिन्हें इस वर्ष अक्टूबर में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। रागिनी की इस उपलब्धि पर महासमुंद कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत

0: राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म फितूर से। आवाज़ है अमित त्रिवेदी की। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने।

किस्मत कनेक्शन, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में। गीत लिखा था सईद कादरी ने, संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। एक सूचना सुनिए, आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगी मनीषा खापर्डे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

ऐतराज फिल्म का गीत अभी आपने सुना अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी हिमेश रेशमिया ने। आइए अब सुनते हैं बजरंगी भाईजान का गीत के की आवाज़ में। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

अगला गीत है अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल के युगल स्वर में। मनोज यादव ने गीत लिखा है, चिरंतन भट्ट का संगीत है और फिल्म का नाम है गब्बर इज़ बैक।

दबंग फिल्म का गीत सुनिए सुखविंदर सिंह और वाजिद की आवाज़ में। गीत लिखा है जलीस शेरवानी ने और संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

दबंग फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नई फिल्मों से अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत सचिन देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे,
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

कभी कभी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी खय्याम ने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

अगला गीत फिल्म कश्मीर की कली से, एस एच बिहारी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए शहनाई फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं रवि।
1: न झटको ज़ुल्फ़ से

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। महेंद्र कपूर की आवाज में लीजिए सुनिए वर्मा मलिक का लिखा गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म का नाम है यादगार।

0: करते रहे तो फिर उसके बाद।
1: अरे अरे भाई, अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठा। हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी है।
2: देश द्रोहियों की हम चमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये सब तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में लीजिए अब सुनिए कर्ज फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

जमीन आसमान इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार अनजान, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए तेरी कसम फिल्म का गीत अमित कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, इसमें सुनिए सरला भिड़े का गाया राग भैरवी में दादरा, तबले पर संगत दिया है कन्हैयालाल भट्ट ने।

0: उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सरला भिड़े का गाया राग भैरवी में दादरा सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे कन्हैया लाल भट्ट। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। और बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी इलाके में करंट लगने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 24 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। फेरबदल में 1 आईजी रेंज, कई डीआईजी, एआईजी और 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। आईपीएस अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक आईजी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति की संयुक्त बैठक कल रायपुर में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रकोष्ठों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित और सशक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनसेवा की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर महीने सड़कों का वीडियो आधारित निरीक्षण होगा। एआई तकनीक गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की पहचान करेगी। इसके आधार पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता तय कर मरम्मत की कार्य योजना बनाई जाएगी। इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट आज से प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा। प्रत्येक जिले में एक एक चुनी गई सड़क का एआई आधारित निरीक्षण शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिर्फ पुलिस गवाहों के आधार पर भी सजा हो सकती है, इसके लिए स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र गवाह मिलना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उनकी गवाही विश्वसनीय और सच्ची हो। पुलिस विभाग से होने मात्र से किसी गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह व्यवस्था देते हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े एक नक्सली की अपील को खारिज कर दिया और उसकी 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी वार्ड में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का पोल लगाने के दौरान हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आकर करंट लगने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में 4 पुरुष और 1 महिला है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर मुख्य मार्ग पर 2 बाइक आमने सामने से टकरा गईं। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 1 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से की जाएगी और बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी इलाके में करंट लगने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी संग्रहालय से। इसमें गाथा झरोखों से में आज सुनिए भाग 7। विषय है कर्तव्य परायणता की कहानी, लोक गाथा अहिमन रानी। लेखक हैं डॉक्टर पीसीलाल यादव और प्रस्तुति है मोहन सी रामानी की।
1: प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से।

0: लीजिए सुनिए रूपक कर्तव्य परायणता की कहानी लोक गाथा अहिमन रानी। लेखक डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी।
1: लोक की व्यापकता सर्वत्र है, उसका रंग भी विविधताओं से परिपूर्ण इंद्रधनुष की तरह मनोहारी है। ये अनेक रूपों में श्रुति परंपरा के द्वारा लोक जीवन में रचा बसा है, लोक जीवन को प्रेरित करता है। इसलिए लोक साहित्य लोक जीवन का दर्पण है। इसमें लोक की भावना है और लोक का आचरण है। लोक गीत, लोक कथा और लोक गाथा तो मानो लोक जीवन की सांसें हैं, जिनमें मोहक स्पंदन है, हास्य के साथ करुण क्रंदन है, विचारों के आवेगों का मंथन है।
2: हाँ, लोक गाथा लोक मानस के अतीत का गीत, उसकी व्यथा कथा, इसे ही तो गीत कथा कहते हैं, लोक गाथा कहते हैं। यूं तो छत्तीसगढ़ में अनेकों लोक गाथाएं गाई जाती हैं, परंतु उन सब से हटकर है अहिमन रानी की लोक गाथा। अहिमन रानी की लोक गाथा आज भी लोक को कर्तव्य परायणता का बोध कराती है, नारी के क्षमाशील स्वभाव का शोध कराती है। अहिमन रानी लोक के उज्जवल स्वरूप का बोध भी है और शोध भी। अहिमन रानी राजा वीर सिंह की पत्नी सगरी स्नान के लिए अपनी सास से विनती करती है। सास के मना करने के बाद भी वो चेरियों के साथ सगरी स्नान के लिए चली जाती है।

0: अहमन और उसकी दासियां माटी के घड़ों को तालाब के किनारे रखकर स्नान करती हैं, कंच कपूर का दातून करती हैं, जल क्रीड़ा करती हैं। इस बीच उनके मिट्टी के घड़ों की चोरी हो जाती है। जब अहमन तालाब के किनारे आती है तो वहां घड़ों को न देखकर परेशान होती है। दासियां मिट्टी के घड़ों को ढूंढती हैं, तब पता चलता है कि एक व्यापारी ने उनके घड़ों को छुपा रखा है। अहमन उस व्यापारी से प्रार्थना करती है कि वे उनके घड़ों को वापस कर दे। व्यापारी शर्त रखता है कि अहमन पहले उसके साथ पासा खेले, यदि व्यापारी हार जाएगा तो मिट्टी के घड़ों को वापस कर देगा।
1: मरता क्या न करता, अहमन को तो लोक लाज का डर है। चूंकि वो सास के मना करने के बाद भी सगरी स्नान के लिए आई है, इस पर यह घटना। सास जानेगी, पति जानेगा तो क्या कहेगा, उसे सास के ताने और पति के उलाहने सुनने पड़ेंगे। अहमन पासा खेलने के लिए तैयार हो जाती है। पासा में वो अपने आभूषणों को हार जाती है। व्यापारी पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हारा मायका कहाँ है। अहमन अपना पूरा परिचय देती है और बताती है कि उसका मायका दुर्ग है। तब व्यापारी बताता है कि अरे, तुम्हारा भैया तो मेरा महाप्रसाद यानी मित्र है, तुम तो मेरी बहन हुई।

0: माथे वाला गहना गुटियाला नवा नवा पहिरा करके।
1: कितनी सुघड़ता के साथ यहाँ लोक सम्मतों का प्रतिपालन हुआ है। पासा के खेल में अहिमन के हार जाने और व्यापारी के जीत जाने के बाद भी व्यापारी बड़ी उदारता के साथ अहिमन को बांसपुर लुंगरा अर्थात कीमती साड़ी के साथ नए नए स्वर्ण आभूषण भेंट कर उसे घर के लिए विदा करता है, क्योंकि व्यापारी को ये मालूम हो गया है कि अहिमन उसके मित्र की बहन है। छत्तीसगढ़ में मितान परंपरा आज भी कायम है, जहां मित्र परंपरा की पहचान लहू के रिश्तों की तरह बनी हुई है और उसे मृत्यु पर्यंत निभाई जाती है। क्या लोक की तरह सृष्टि में भी ऐसी कोई परंपरा है?
2: लोक अपनी परंपराओं से संजीवनी पाता है, इसीलिए लोक अजर है, अमर है। लोक का स्वर आज भी मुखर है। अहिमन तो लोक परंपराओं की संवाहिका है। जानी हुई बात ये कि जब अहिमन मिट्टी के घड़े के स्थान पर सोने के घड़े लेकर बांसपुर की बहुमूल्य साड़ी और नए स्वर्णाभूषणों से लदकर घर आती है, तो उसके चरित्र पर वीर सिंह को शंका होती है। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज की कठोरता सामने आती है, फलस्वरूप उसके चरित्र पर लांछन लगता है। बस यहीं नारी असहाय हो जाती है, उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिलता। वो नारी है ना, वह अपमानों का घूंट पीकर रह जाती है। पर कब तक? उसकी भी एक सीमा है। प्रतिकार तो नहीं कर सकती नारी, तो प्रकृति ही उसका न्याय करती है। वीर सिंह अहिमन को मायके ले जाने का लोभ देकर उसकी हत्या कर देता है। पुरुष प्रधान समाज और उसका अहम, इसके सिवा और कर ही क्या सकता है।

पूछा के राजा हम पूछा थे कि बासपुर के लुगड़ा हा कहाँ गया है, कैसे कहना गुड़िया पहरे हा।

धर्म में पड़ गए राजा। और पूछा थे तो बहुल कहा दे दाई हमार ओकर मई के जाबोन। ये दोनों जान जाते ओकर मई के जब ले बिहा हो है तबले नहीं गे हन। और अहिमन कई नला बोटी ला धर के तैयार करवाई सी। आगे आगे अहिमन रेहना चला थी और रेगा थे अहिमन कहना गावले बाहर गी और दूसर कोस गी तीसर कोस गी। अब बेरा सूरता आगे भरम के राजा रीस में गुस्सा गे गुस्सा गे राम।

रानी से रीस में अंगारा धपका, राजा हर रानी के बेनी लघोड़ा के पूछी में बांधी सरागी, औ घिरलावा तादार कोचर ले जाते। हा हा हा हा, कल पत रानी हा चितिया।

0: वीर सिंह की मां समझ जाती है कि वीर सिंह ने बहू की जान ले ली है। इधर व्यापारी अपने बैलों के समूह को लेकर आगे आता है। बैलों का समूह आगे बढ़ता ही नहीं। व्यापारी परेशान होकर आगे आता है। लाश देखकर वह भी सहम जाता है। व्यापारी अहमन को पहचान लेता है। अपनी मित्र बहन की लाश देखकर रोने लगता है वह। उसके साथ उसके सारे बैल चारा पानी छोड़कर आंसू ढारते हैं। यहां पर लोक गाथाकार ने मनुष्य से भी आगे पशुओं में संवेदना और सहानुभूति का भाव दिखाकर आज के मानव को सोचने के लिए विवश कर दिया है। ये लोगों का प्रभाव है।
1: व्यापारी,

मूक पशुओं की संवेदना व रुदन से भगवान का आसन डोलने लगता है। बैकुंठ से महादेव और पार्वती आकर अहिमन के सिर और धड़ को जोड़ देते हैं। अमृत बूंद पड़ने से अहिमन जीवित हो जाती है। प्रायः ऐसी मिथ कथाएं अन्य लोक गाथाओं में भी मिलती हैं, जहां संकट पड़ने की स्थिति में भगवान का आसन या इंद्रासन डोलना सहज स्वाभाविक लगता है। यह लोक का अपना वैशिष्ट्य है। इस तरह की संवेदना और सहानुभूति श्रोता के मन को मर्माहत करती है। कथा उसकी निजता और उसके स्वयं के सुख दुख का एहसास कराती है।

लागे रूप गे दाना पानी पवरायला भुलागे कोने वहां अहिमल मार डारे हावे अब भाई पारी रोवल लागे आहा मोर बहनी के कोन ऐसे गप कर दे।

0: व्यापारी अहमन को साथ रख लेता है। अहमन बहन जो ठहरी, अहमन अपने व्यापारी भाई के लिए जीवन पानी बनाती है। व्यापारी अपने बैलों के समूह को लेकर वीर सिंह के गांव के बाहर मैदान में तंबू तान देता है। एक दिन अहमन सोने की टोकरी में गेहूं लेकर बस्ती में पहुंच जाती है। चक्की ढूंढती हुई संयोग से अहमन अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। चक्की के निकट ही वीर सिंह खाट में सोया हुआ है। अब उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, शायद उसे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। पहले कहां राजा वीर सिंह और अब कहां दीनहीन वीर सिंह, आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है करनी का फल, ये तो शाश्वत सत्य है।
1: किसी पर लांछन लगाकर उसके चरित्र का हनन तो किया जा सकता है, उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन यदि वह निष्कलंक और सत्य पर आरूढ़ है तो उसे डिगाया नहीं जा सकता। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति संघर्षों की आग में तपकर कुंदन की तरह कसौटी पे खड़ा निकलता है। अहमन के साथ भी यही हुआ। भले ही अहमन ने स्वतः आगे आकर वीर सिंह के अत्याचार का विरोध न किया हो, लेकिन उसने बड़ी धैर्यता और सहनशीलता के साथ सारे संतरासों को भोगा। उसकी मर्यादा, उसकी निष्ठा और क्षमाशीलता नारी अस्मिता को गरिमा प्रदान करती है।
2: काला देखता है।

0: दाई टुकुर टुकुर का बात है ते?
1: तोला देखता हूँ बेटी, तोर मोहला तोर सुघरैला।
0: काबर ऐसन का बात है मोर मुहमा?
1: का बताऊं बेटी, जब ले तोला देखे हाँ ना, मोला मोर बहु अहिमन के सुरता आ जाते।
0: अच्छा त तोर बहु मोरे मोहरन रहिस का दाई?
1: हाओ हाओ बेटी, जो छा तोरे कस निचट तोरे च मोहरन रही से, चंदा कस सुघर चेहरा, जोगनी कस आँखी, कुंदरू चानी कस होठ, दरबी दाना कस दांत, धमधम ले बादर कस चुंदी, सुकुआ कस चमकत लीलार, अंग अंग कसे सोला सिंगार। औ जानथस सबले बड़े बात, ओकर कोयली कस मीठ बोली, करेजा मा भिज जाए बेटी, करेजा मा भिज जाए।
0: सिरतोन कई थस दाई?
1: गौकी ईमान ले सिरतोन मा बेटी, तोर करा काला बारी मार हूं, तोला देखा था तो ओकरे सुरता आ जाते, निचट तोरे मोहरन। मोला लगथे तोर अंतस मा, तोर रंग रूप मा मोरेज बहु हा समा गे रे।
0: ता तुर बहुला का हो गे दाई, कहाँ गए हुआ?
1: का बताऊं बेटी, पर के हासी अपन फदिता।
0: तब भोले कुछ गोठिया डर दई, मन हा हरु हो जही।
1: एक दिन के बाद आए बेटी, मोर बहु सगरी नहाए के जिद करिस, गजब बरजे फिर नहीं मानिस, सगरी ले लौटिस त सोन के छैला धरे, सोन सोन के गहना पहिरे, बांस पोर के लुगरा पहिरे। बेटा देखिस त ओला ओखर चाल चलन ऊपर शंका होगे, औ मैके अमराय के ओखी मा निठुर निर्दयी हा ओकर जीव ले डारिस बेटी। बहु के जिंदगी के संगे सन घर के धन दोगानी खेत खार सब कुछ सिरागे, सब कुछ।
0: ले दाई चुपेराओ चुपेरा, विधिक विधान के आगु मा काखरो नी चलेवो, ले चुपेराओ।
1: का चुप रहो बेटी, तोला देखे तब बहु के सुरता आगे, देखना लांगन भूखन गरीबी मा दिन हा बोहावत है।
0: कैसे कर बेदाई, धन दोगानी ओरिया छाव ताई। ले दाई आधा पिसान ला तहूं राख ले, रोटी बोके खा लेबे, मैं जात हूँ, मोर भैया मोला अगोरत होही, जेवन पानी बेरा हो गए है ना?
1: हा हो, ले जा बेटी, मोर करम फूट गिरहिस, जेन सोन कस बहुला कमा डारे।

वीर सिंह व्यापारी की बहन को आते जाते देखकर सम्मोहित हो जाता है। वो व्यापारी के तंबू में जाकर उसकी बहन को बार बार देखता है।

इसने झेंजरी महल देखत रहा राजा वीर सिंह। हा का रूप है का सुंदर मंडोल के रागी झेंजरी महल देखत रहा। एक दिन देखी, दो दिन देखी, तीन दिन देखत रहा है।

0: ଅଫିସର ନିମାଇ ପାରି ଭଡ଼ାଗେ। अरे आधारा तो आखी नहीं दिखे, अपन के मन खेला नहीं चिन्हता है। आहो गए तो आखी लड़े पाई।
1: एक दिन व्यापारी से निवेदन करता है कि वो उसकी बहन से शादी करना चाहता है। उसकी इस बात पर व्यापारी उससे कहता है, अरे अकल के अंधे राजा वीर सिंह, यही तो तुम्हारी पत्नी है अहिमन, और मेरे महाप्रसाद मित्र की बहन जिसे तुमने मार डाला था। इसके चरित्र पर शंका करने से पहले तुम्हें कुछ पूछ लेना तो था। इस तरह व्यापारी ने सारी घटनाओं को वीर सिंह के सामने खोलकर रख दिया। राजा वीर सिंह पश्चाताप में डूब गया। उसने अपने किए की माफी मांगी। तब व्यापारी ने बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी बहन अहिमन को वीर सिंह के साथ विदा कर दिया।
2: लोक गाथा अहिमन एक मुकम्मल दस्तावेज है लोक जीवन में नारी चरित्र के उत्कर्ष का, उसके उज्जवल गौरव गरिमा और उसकी जीजी विशा का, जहां नारी अपना सब कुछ खोकर भी परिवार व समाज के मान मर्यादाओं की रक्षा करती है। अहिमन लोकगाथा कर्तव्य परायणता की एक मिसाल है, जहां एक व्यापारी अपने मित्र की बहन के जीवन के लिए अपनी संवेदना और रुदन से भगवान को भी विवश कर देता है। मूक पशु भी आंसू बहाकर मानवीय गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। यही लोक का आधार है, यही संस्कृति का श्रृंगार है, यही लोक का व्यवहार और जीवन का संस्कार।

कर्तव्य परायणता की कहानी लोक गाथा अहिमन रानी। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव, वाचक स्वर हसन खान और कंचन अहलुवालिया के थे, नाट्य स्वर शीतला शुक्ला और ज्योति ठाकुर के, गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, पुरानिक राम साहू और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक थे सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड, विवेक टांक और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी।

0: ये रूपक आकाशवाणी के रायपुर केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी संग्रहालय से। इसमें गाथा झरोखे से में अभी आपने सुना भाग सात, रूपक था कर्तव्य परायणता की कहानी, लोक गाथा अहिमन रानी। इस रूपक के लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुति थी मोहन सी रामानी की। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत।

श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत लेकर। आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभा अग्रवाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे इन श्रोताओं के द्वारा भेजे गए फरमाइशी ईमेल और पत्रों के माध्यम से। पहले गाने के लिए हमें ईमेल्स भेजे हैं हटौत बाज़ार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, पथरिया भरेवा से चंदूलाल नारायणी, नोमेश नेहा और वान्या सिंह रौल, कोरासी भैंसा से हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज सुष्मिता साहू, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर राकेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजूरिया, बलौदा से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि आनंद, समृद्धि पटेल, राम तेंदु भाटा मगरलोट से उमेद कुमार निषाद, देविका पोषण, नूतन सुरेंद्र निषाद, सहसपुर मेघापारा से हैं छोटकू मोहित राम, लोकेश रामकिशन, दुलीचंद साहू, कांकेर संबलपुर से फागु राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर, लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार जंघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शीला यादव, शुभम और सौरभ रावत। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र मिले हैं भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, शंकरनगर दुर्ग से मानिक सिंह बैस, कावेरी विनीता लल्ली लेखमणि बैस, खैरागढ़ से हैं रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता झरना, प्रेरणा दीक्षा और शिक्षा अग्रवाल, बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, मगरलोट से हैं पुनुराम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू, भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद, धमनी राजीम से समेलाल धीवर, युवांश कुणाल और गोविंद धीवर, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गीत। संगीत श्रेयस पुराणिक का है और फिल्म का नाम है एनिमल।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजे हैं। बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार और हैप्पी रॉय ने। बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। भंवरपुर से हैं राधेश्याम, चंपा, जगदीश और राजू देवांगन। सिर्री गातापार से घनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली और भूमिका साहू। रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा। धरसीवा से छेदुलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। बेमेतरा से हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की और भगवान सिंह राजपूत। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार और संध्या। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। कुल्हाड़ीकोट पांडुका से नरोत्तम और नीतू कश्यप। भाटापारा से हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल। लोरमी ग्राम तिलकपुर से हैं चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार, मालती, मयंक मरावी। ग्राम पीपरलोड सरगांव से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। बीजेतला जालबांधा से ओम प्रकाश, कुमारीबाई और भिनेश्वरी देवांगन। ग्राम बोईनापार लाटाबोड़ से हैं देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, उमाबाई और गंगाराम साहू। और ग्राम पुतकी कला से राधेश्याम, वीणा, विनय शंकर पांडे। आप सब सुनना चाहते हैं अभेंद्र कुमार उपाध्याय का लिखा गीत सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में। संगीत अंकित तिवारी का है और फिल्म का नाम है काशी।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आवाजें हैं सनमपुरी और नीति मोहन की। गीत लिखा है अन्विता दत्त गुप्ता ने, संगीत विशाल शेखर का है और फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की। सौंगा मगरलोड से मोहित कुमार चंदन, देवी करानी और गजेंद्र कुमार चंदन। ग्राम गेंदा टोला से बीरेंद्र कुमार और गजेंद्र गुप्ता, यहीं से हैं अंजलि और योगिता गुप्ता। गंडई पंडरिया से पप्पू छोटू, लता और पूजा सेन। सरसेनी से तेजराम और जानकी सेन। हथबंद करेली से हैं भाई रामा धरध्रुव और संजय ध्रुव। लच्छनपुर से खिलेश्वर साहू, नमन और कंचन साहू। हथखोजपारा उतई से अश्विन, अजहर ठाकुर, नयन ठाकुर। बाबा कुटी उफरापाटन से तुलसी, गोपी साहू और यमुना और हेमलता साहू। अनूपपुर से ऋषभ केवट, लक्ष्मी केवट। भीमखोज तरपोंगी से संतोष, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता। नादिया गंडई से मूलचंद पटेल, आशीष पटेल, मोनिका, सीमा पटेल। बकरकट्टा सालेवारा से हैं महेश, लोचन पटेल, मंजू और दीप्ति पटेल। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता दिवाकर। ग्राम सिरमुंदा से हैं सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई, राजेंद्र कुमार दामले। पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास, खुशी, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति, ऋचा, गायत्री वैष्णव। पटपर डोंगरगढ़ से हैं रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार, कविता और जयंती ध्रुव। ग्राम खट्टी से हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी और ओंकार शर्मा। अरमरी खुर्द दुर्ग से चुरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे। और करही भदर से हैं हिमांशु सिंघानिया, गीतू, मोहनीश भवानी और पुष्पा। आप सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ये गाना।

आपके मीत ये गीत फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की। कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, पहंदा कोरबा से समीलाल कुर्रे, सावित्री देवी कुर्रे, सरकबुंदिया से गब्बर साहू, निर्मला देवी साहू, बेमेतरा से हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी ओजल वर्मा, डोंडी लोहारा बालोद से प्रभा देवी तामुरिया, देवशंकर तामुरिया, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, भैंसमुंडी मगरलोड से भगवत राम साहू, तुलेंद्र कुमार साहू, ग्राम देहान बांधा बाजार राजनांदगांव से मानवेंद्र साहू, कुमारी देवी हरिओम पूर्णिमा साहू, राजनांदगांव से ही हैं ज्योति रानी सृष्टि साहू, ग्राम चांदो डोंगरगांव से छन्नूलाल और मधु साहू, कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई धुर्वे, ग्राम देहान से कोमेन हिरेन साहू, परमानंद और पार्वती देवी साहू, बिलाईगढ़ से नरेंद्र देवांगन, अरविंद देवांगन, देवरी भाटापारा से हैं मुकेश कुमार रजक, हाव्या रजक, युवान और तन्नु रजक, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन साहू और श्रीमती कुमारी साहू, बठेना पाटन से परमेश्वर और राजबती साहू। आप सब सुनना चाहते हैं असीस कौर और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में तनिष्क बागची का लिखा और स्वरबद्ध किया फिल्म शेर शाह का ये गीत।

कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गांव परसाटोला से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद और तुषारणी मसिया, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े, सिवनी खुर्द रेंगाखार से हैं मंशाराम पटेल, बुधियाबाई भानुप्रताप और पायल पटेल, चोलाना मध्य प्रदेश से रोहित जयमंत्री और ऋषभ जयमंत्री, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, राज अंसारी और शमसूल कमर, दानापुर पटना से तुलसीदास दुबे, क्षमा दुबे, निखिल कौशल्या और नितिन दुबे, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, बिरनपुर कला दनिया गंडई से हैं सुरेश कुमार साहू, मास्टर तन्मय साहू और जंत्रीबाई साहू, पलारी रोहासी से श्यामलाल साहू और युवराज बिंदु, राजेंद्र नगर रायपुर से सोनम शर्मा, आदिबा शर्मा, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नेत्राम और भूपेंद्र साहू, और ग्राम लेवई उतई से हैं विकी देवांगन और उर्वशी देवांगन। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं सुमेधा कर्महे और साथियों के स्वरों में अलौकिक राही का लिखा गीत। संगीत अमजद नदीम का है और फिल्म का नाम है थ्री स्टोरीज।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम को आपके लिए संजोया अनुभा अग्रवाल ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं हिंदी समाचार, अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश

0: मंत्रालय में पूर्व विदेशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

स्वामी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत अमित खन्ना का था, संगीत था राजेश रोशन का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की ही आवाज़ में। गुलजार के लिखे इस गीत के लिए संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है घर।

खुशबू फिल्म का ये गीत था आशा भोसले की आवाज़ में, गीत गुलजार का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का ही है और फिल्म का नाम है बुलंदी।

फिल्म बुलंदी के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसी कार्यक्रम में कुछ और फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में वीणा वादन सुनिएगा डॉक्टर माधुरी देवी से रात 10 बजे। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन होगा अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर। इसमें आज के गोठ का विषय रहेगा विश्व जनसंख्या दिवस। साथ ही श्रीमती वैशाली वर्मा की वार्ता होगी आर्थिक स्वावलंबन पर स्वरोजगार, और होंगे गीत और चर्चा।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ होगा शाम 5 बजे और युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर अपन गोठ में आज विश्व जनसंख्या दिवस पर विषय रहेगा बाढ़त जनसंख्या के परिणाम। साथी होंगे क्रमापन की चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे गौतम चंद जैन और साथी, और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे भरत लाल हरिंद्र और साथियों को।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा मानसून मौसमी बदलाव के खेती ऊपर प्रभाव, और किसान वाणी में आज की सलाह में गोबर एवं गौमूत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर आशुतोष दुबे, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनैया सबो बहनी मल्ला आशा के राम राम। बहनी हो जिंदगी मा सुघरई ना सिर्फ बाढ़े मा नहीं होए बल्कुन संतुलन मा होते। ये नवा पाठ प्रकृति हमला रोजे सिखाते। अभी देखो ना अगबकोल हो गिरी से सबके जीव पानी नहीं गिरे ले और अब सबके जीव जुड़ाया सन लागत है और कोनो भी जिनिस के ना अति बने होवे न कमती। ऐसने हमला हमर जनसंख्या बर तो को सोचे बर लागे काबर के बहुत जन मन ऐसे सोचते हैं कि ज्यादा जनसंख्या माने ज्यादा ताकत और ज्यादा कमाई। फिर बात ये हरे कि ताकत सिर्फ गिनती ले नहीं बने। ताकत तब बनते जब हर मन के पढ़े लिखे रही स्वस्थ रही और अपन जिम्मेवारी ला समझी। देख रही थी आज माने 11 जुलाई के दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते जेकर ले हम सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कुन जनशक्ति के निर्माण की बात करथन। आज समय बदल गए है। गांव बड़े हो थे शहर फैला थे जनसंख्या बढ़ा थे खेती की जमीन कमती आते ज्यादा बोरे के सेती पानी के स्रोत अलग सुखावत है और जंगल तको कमती आते और रोजगार के संसो फिकर तो बाढ़वे करते तो अवैया बेरा माँ परेशानी तो बाढ़वे करी बहनी हो। और जतके चद्दर ओतके गोड़ लमाए के जब बात करे जाते ना तो यहाँ सिर्फ खर्चा के बात नहीं हुए बल्कि जम्मो जिंदगी के फैसला करे के बात होती। परिवार तो को उतके बढ़ाना चाहिए जतका के हम मान सम्मान कर सकन शिक्षा और स्वास्थ्य और सुखुनला दे पावन। भाई छोटे परिवार रही तो हमन अपन लोग लैका मनला तको बने पढ़ा लिखा सकथन उमनला समय दे सकथन सबके स्वास्थ्य बढ़िया रही और आर्थिक बोझा तो कम होबे करही और घर में खुशहाली तको बने रही। और बेटा पढ़ी बेटी पढ़ी जिन घर के बेटी पढ़ते वो घर के सोच बदल जाते बहनी हो और महिला सशक्त होते ना तो समाज तको आगू बढ़ते और एक महतारी स्वस्थ है तो ही स्वस्थ समाज ल बनाते। कहे के माने आज ये जनसंख्या दिवस में हम ये परण करन कि बेटा बेटी में भेद झन करन परिवार नियोजन ला अपन जिम्मेवारी समझन जल जंगल जमीन ल बचावन हर बेटी ल पढ़े के मौका देवन और अवैया पीढ़ी ला एक सुघर स्वस्थ और समृद्ध समाज देवन। काबर की बहनी हो हमर असली ताकत हमर असली धन संख्या नहीं संस्कार हरे और घर के असली खुशी भीड़ बढ़ाए में नहीं मया बढ़ाए में हवे और समाज के असली ताकत बाढ़े जनसंख्या नहीं बल्कुन चेतलक जनशक्ति आए तभी तो छोटे परिवार सुखी परिवार।

0: बनी हूँ आज क्रम एक ही कलाकार के गीत मा हम आप मल्ला सुनवाथन सुनवाए हन ये पहला गीत पद्मा देवार के स्वर मा हमार संग कार्यक्रम मा जुड़े रहो पद्मा देवार के गाये सुघर गीत आप मल्ला और सुने पर मिली। और बनी हो जब हम आर्थिक स्वावलंबन की बात करथन ना तो एकर माने सिर्फ धन कमाना नहीं हुए बल्कुन अपन मेहनत अपन कला और आत्मविश्वास के बल मा जिंदगी जीना होते और रोजगार के माने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हुए खेती है पशुपालन है महिला स्व सहायता समूह जैसन उदिम है जोनमन रोजगार के नवा रद्दा खोला थे। जरूरत सिर्फ मौका ला चिन्हे के और अपन कौशल ला बढ़ाए के है। तो आवो इस संबंध में हम आप मल्ला अपन क्रम वार्ता में सुनवाथन वार्ताकार श्रीमती वैशाली वर्मा ले ये वार्ता जिकर विषय हवे आर्थिक स्वावलंबन बर रोजगार।
1: छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये कहावत हमर मेहनत हमर ईमानदारी और हमर संस्कृति बर कहे जाते। आज हमर चर्चा के विषय बहुत खास है जेकर ले हमर घर हमर परिवार और हमर पूरा समाज के तरक्की जुड़े है। विषय है आर्थिक स्वावलंबन पर स्वरोजगार। संगवारी हो स्वावलंबन के सीधा मतलब होते अपन पैर में खड़ा होना और स्वरोजगार के मतलब होते अपन हुनर ले खुद के काम धंधा शुरू करना। कहावत है ना उद्यम बिना उज्जर नहीं है। आज के समय में सिर्फ नौकरी के भरोसा बैठे ले काम नहीं चले। जब तक हम अपन खुद के काम शुरू नहीं करबो आर्थिक रूप ले मजबूत होना कठिन हो गए है। हमार छत्तीसगढ़ माटी तक खुद मेहनत और हुनर के प्रतीक है। तो आर्थिक स्वावलंबन के मतलब है अपन खुद के काम शुरू करके दूसर मनला घलो रोजगार देना और समाज में आत्मनिर्भर पहचान बनाना। अपन वार्ता ला आगे बढ़ाए के पहली स्वरोजगार के महत्व ला बताती ये सुंदर पंक्ति सुनाओ। उठ जाग संगी अब कमर लकस ले नौकरी के पाछू झन भटक अपन रद्दा खुद रच ले। तोरे हाथ में हुनर है तोरे माटी में है सोना। स्वरोजगार ल अपना के सुघर बना ले कोना कोना। तो संगवारी हो मनखे के सबले बड़े संपत्ति ओकर आत्मविश्वास मेहनत और हुनर होते। जब ये तीनों के सहारा ले कोनो व्यक्ति अपन रोजगार खुद बनाते तब वह आत्म स्वावलंबन के दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते। आज महंगाई के जमाना में आत्म स्वावलंबन हर व्यक्ति के जरूरत बन गए है। सिर्फ नौकरी के सहारा में जीवन के गाड़ी ल चलाना कठिन होवत जाते। ऐसने परिस्थिति में स्वरोजगार ह आत्मनिर्भरता के एक सशक्त माध्यम बन के उभरी से। स्वरोजगार ले व्यक्ति अपन योग्यता और कौशल के उपयोग करके आर्थिक रूप ले मजबूत बनते और अपन भविष्य के निर्माण खुद करते। एखर ले न केवल ओकर आय बढ़ते बल्कि समाज में सम्मान और आत्मविश्वास घलो बढ़ते। बहनी हो एक जमाना रहीस जब लोगन मन पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी या प्राइवेट नौकरी खोजत रहीन। उहू में घलो कोनो एक जन कमावे और पूरा परिवार ओकर भरोसा रहे। पर आज समय हा बदल गए है। आज के महंगाई और जरूरत के जमाना में परिवार के हर हाथ ला काम मिलना जरूरी हो गए है। कहावत है ना बैठ

0: ठेले बेगारी भली, मतलब खाली बैठेले बढ़िया है कि कुछ न कुछ काम करे जाए। स्वरोजगार कोनो छोटे या बड़े नहीं होवे मोर बहनी हो, खुद के काम शुरू करे मा जे अडिग भरोसा और मान सम्मान मिलते ना, ओह ककरो गुलामी करे में नहीं मिले। हमर छत्तीसगढ़ के माटी मा अगाध संपदा भरे है। हमर राज्य मा आज गांव ले लेके शहर तक स्वरोजगार के नवा क्रांति चलत है। हमर मन करा हुनर के कोनो कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाए के, एक पक्का संकल्प करे के। आज के समय मा हमर सरकार ह छत्तीसगढ़ शासन रोजगार विभाग के माध्यम से हमर बहनी मन ला आगे बढ़ाए बर कई अकन सुघर योजना चलावत है। जैसे कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग और व्यापार शुरू करे बर लोन और अनुदान मिलत है। एकर अलावा मिनी माता स्वालंबन योजना संगवारी मन ला आर्थिक रूप से मजबूत बनावत है। आज के नवा छत्तीसगढ़ में हमर बहिनी मन ककरो ले पाछू नहीं है। घर के चूल्हा चौका संभाले के साथ साथ आज ओमन घर के आर्थिक रीढ़ घलो बनत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलत बिहान योजना ह आज गांव गांव के तकदीर ल बदलत है। हमर दीदी मन 10 से 15 झन मिल के महिला स्व सहायता समूह बनावत है। ये समूह मन ला सरकार डहर ले आसान लोन मिलत है। आज छत्तीसगढ़ के कोना कोना मा ये महिला समूह मन ह बहुत अच्छा काम करत है। कोनो समूह ह वर्मी कंपोस्ट खाद बनावत है, तो कोनो ह अचार पापड़ बड़ी बिजौरी मसाला महुआ के लड्डू रेडी टू ईट कोदो कुटकी के आइटम दरी चटाई धूप दीप अगरबत्ती, तो कोनो हाँ मछली पालन मुर्गी पालन डेयरी व्यवसाय हस्तशिल्प के सामान तैयार करत है। अतके नई बहनी हो, कई ठन गांव मा हमर दीदी मन टेंट हाउस के सामान बर्तन बैंक और राशन दुकान कपड़ा दुकान फैंसी सामान के दुकान के घलो सुघर संचालन करत है। जैसे हमर धमतरी और बिलासपुर जिला के आकांक्षा और गायत्री महिला स्व सहायता समूह के गोठला लेवन, यहाँ के दीदी मन हा बैंक के मदद लेके और कड़ा मेहनत करके आज सालाना लाखों रुपया कमावत है। ओ मन हा आज लखपति दीदी बन के अपन लइका मन के बढ़िया पढ़ाई लिखाई सेहत और पूरा परिवार के भलाई बर खर्च करत है। आज बैंक मन घलो महिला मन ला बहुत कम ब्याज मा और बिना कोनो गारंटी के मुद्रा लोन और दूसर लोन तको देवत है। बस जरूरत है तो हिम्मत करके आगे आए के मोर बहनी हो। ऐसने ही एक और कहानी आज मैं आप मन ला हमर रायपुर जिला के धरसींवा विकास खंड के उम्मीद महिला स्व सहायता समूह के सुनावत हूँ। ये समूह के दीदी मन हा कुछ बछर पहली एकजुट होके काम शुरू करीन। आर्थिक तंगी ले परेशान होके फिर ओमन बिहान योजना ले जुड़ीन और बैंक ले सुलभ लोन पाके हर्बल गुलाल दिया वर्मी कंपोस्ट खाद और छत्तीसगढ़ी व्यंजन जैसे चीला फरा ठेठरी खुरमी अनरसा बनाए के काम शुरू करीन। शुरुआत में छोटे पैमाना में शुरू हुए व्यापार ह आज अतका बढ़ गए है कि रायपुर के स्थानीय बाजार मन में ओकरो सामान मन के भारी मांग है। हमर छत्तीसगढ़ ह कृषि प्रधान राज्य है, किसानी में अब नवा तकनीक आ गए है। दूध के व्यापार पोल्ट्री फार्म मछली पालन आज एक बड़े उद्योग के रूप में उभरत है। एकर बर सरकार डहर ले सब्सिडी घलो मिलते। हमर राज्य मा वनोपज मा महुआ चार चिरौंजी हर्रा बहेड़ा के भरमार है। आप मन एकर प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकत हो। हमर कतका बहिनी मन पढ़े लिखे है लेकिन समय ऐसा नाजत है कि बाहर जाके काम करत नहीं बने। ऐसने हमर बहिनी मन हा गांव मा घलो बैठ के चॉइस सेंटर खोल सकत है। आजकल सब्बे काम हा ऑनलाइन हो गए है, तो ओमन हा ऑनलाइन सर्विस दे सकत है। या ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसन नवा काम शुरू कर सकत हे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसन योजना मन के तहत 25 लाख रुपया के लोन और ओमा सब्सिडी तको मिलते। जिला के व्यापार और उद्योग केंद्र में जाके आप मन एकर जानकारी ले सकत हो। तब बहनी हो, स्वरोजगार शुरू करना कोनो जादू के खेल नो है। एकर बर धीरज, कड़ा मेहनत और योजनाबद्ध काम के जरूरत होते। कोनो घलो नवा काम शुरू करे पहली ये 3 ठन गोठ ला हमेशा सुरता रखू। पहला है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। बिना सीखे कोनो नवा काम झन करो। सरकार ढहले RCT और RTI में मुफ्त में काम सिखाए जाते। पहली काम ला बढ़िया ले सीख लेव। दूसरा है बाजार के ज्ञान। अब जे भी सामान बनावत हो या सर्विस देवत हो, ओकर बाजार में का मांग है एला पहली जान समझ लो। तीसरा है गुणवत्ता, क्वालिटी। आप मन के काम और सामान के क्वालिटी ऐसन होना चाहिए कि गाहक अपन आप खींचे चले आवे। शुरू में कतको अड़चन आही बहनी हो, कतको झन हासी घलो, पर घबराना नहीं है। वो कही थे ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथ है। मतलब मेहनत करे ले ही काम पूरा होते, सिर्फ मन में सोचे ले नहीं। तो आवो, आज हम सब बहनी मन मिलके ये संकल्प करन कि हमन आत्मनिर्भर बनबो। नौकरी मांगे वाला नहीं, बल्कि नौकरी देवे वाला बनबो। जब हमर घर के सियान और नोनी बाबू मन अपन हुनर के दिया बारही, तब हमर पूरा छत्तीसगढ़ उज्जर हो जही। अपन हुनर ला पहचानो संगी, सरकार के योजना मन के लाभ उठाओ और स्वावलंबन के रद्दा मा आगु बढ़ाओ। आखिर मा बस अतके कही हूँ कि जेखर हाथ में है हुनर, ओला काकर डर, खुद के मढ़िया घलो आए महल बरोबर। तो संगवारी हो, आप सबके सुघर भविष्य बर गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना। बढ़त रहाओ, कमात रहाओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
1: आर्थिक स्वालंबन बर रोजगार। वार्ताकार श्रीमती वैशाली वर्मा ले अभी सुनेन ये वार्ता। और ये उपयोगी और सुघर वार्ता सुने के बाद आवा सुनथन पद्मा देवार के गाए ये गीत ला।

बनी हूँ पद्मा देवार और बासंती देवार के स्वर में अभी आप मन सुने हुए गीत ला। और हम ये कही बनी हूँ कि जिंदगी में ना एक ही रंग नहीं हुए, कभू घाम तो कभू छाँव, कभू सफलता के झंडा फहराथन तो बेरा पड़े माँ असफलता के स्वाद तक चिखे भर मिलते। फिर प्रकृति हमला ये जरूर सिखाते कि रात के बाद बिहान जरूर होते, और निराशा माँ जिंदगी सिरावे नहीं बल्कुन नवा शुरुआत के द्वारी खोलते। जैसे तपत घाम के बाद असाड़ के अगोरा करे ना तो जीव जुड़ेस ना तो रुकना नहीं है, बने बेरा की अगोरा करना है। औ निराशा काकर जिंदगी में नहीं आवे, फिर उही मन के सफल होते जे निराशा ला निशेनी बना लेते और टूट के फिर जुड़ जाते। उही असली हिम्मत आए तभी तो कहे जाते ना कि निराशा में तको आशा लुकाए हवे, बस ओला देखे भर धीरज और भरोसा चाहिए। और भी नहीं हो भगवान ना हम सब ला कुछ न कुछ विशेष गुण जरूर दे रहे थे। काकरो बोली में मिठास होते तो काकरो हाथ में हुनर रही थे, तो कोनो के मन में कला रही थे, तो कोनो के सोच में नवा दुनिया बनाए की ताकत रही थे। जरूरत सिर्फ अपन हुनर ला पहचाने के अवला पंख दे के रही थे, और एक बार मेहनत और आत्मविश्वास के तको जरूरत पड़ते। हमर में से कतकुन बहनी मन सिर्फ ये सोच के अपन सपना ला छोड़ देते कि हमर ले नहीं हुए, ये गलत बात है। जिन मन अपन ऊपर भरोसा रखते उमन अपन नाम दुनिया में जरूर कमाते। आज के बेरा में कतकुन बहनी मन स्व सहायता समूह ले जुड़ के अपन हुनर ला पंख देवत हैं और अपन आत्मसम्मान ला बना के रखते हैं। अभी चर्चा के बाद आवा सुनन पद्मा देवार के स्वर में ये गीत ला।

ये था महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

0: ये गुलिस्तां हमारा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है दो चोर।

हीरा पन्ना फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था राहुल देव बर्मन का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री

0: स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
4: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
5: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

धरती कहे पुकार के। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया गीत। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और सुरों से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभिनेत्री फिल्म का ये गीत था मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ। लता मंगेशकर के गाए इस गीत के लिए संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है बेमिसाल।

0: शागिर्द फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वो ऐसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ में ना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बढ़ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगलो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीति साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान

0: लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा संकल्पों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित ये दो दिन की बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region. Hailing the Free Trade Agreement FTA between the two countries, Mr. Modi appreciated New Zealand's efforts in concluding the FTA process in a short period and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership.
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
2: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister announced that India and New Zealand

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवन भी। विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा, इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा की गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
3: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
3: सर आप नुआपड़ा जिले की सिनापाली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
4: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापाली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर जैसा लगा, इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे, जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारनबा नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ सामीप्य है और जो संपर्क है उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के तरफ मेरा रुझान बढ़ गया।
3: जी सर।
4: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
3: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारे, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को हो, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ओडिशा के सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओडिशा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
4: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं। एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक ओडिशा का उपकल जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का आहा जंगल है और पहाड़ पर्वत है जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा से उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुल प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा

0: जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
1: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है, एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वो कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
0: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहड़ को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिल के ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है, तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
1: आप वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
0: कहीं जा

0: दीपदवने, इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है। ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का, वो मंत्र ऐसे गाते थे कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। तो ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नई संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और स्मृति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है, वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था, उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है। और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो, बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत। और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है।

0: भविष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है, उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुंचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन एकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर एकेडमी करता है और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु संन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए, बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं, वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

3:25। स्वागत आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम मन भवन में। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 रेडियो स्टेशन के साथ। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक जी. जिस तरह मुझे अभी बहुत समय के बाद एक एहसास हुआ कि मुझे ये गीत सुनना चाहिए और अपने अपनों को सुनाना चाहिए, तो पहला गीत मैंने आपकी नज़र कर दिया है. इसी तरह अगर आपके मन में भी कोई थॉट आ रहा है, कोई गीत ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आज सुनना बनता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं fmgoldaiadelhi@gmail.com. एक बार दोबारा सुन लें आप fmgoldaiadelhi@gmail.com. और यहाँ से अब आपके जो मैसेजेस हैं उनका सिलसिला शुरू होता है. तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, आप खुश हैं, तो भी हमें मैसेज कीजिए. अगर आप आज बहुत उदास हैं, कुछ है दिल में हलचल, कुछ जहन में फितूर आ रहा है, कुछ भी है, आप अकेला रहना चाहते हैं, कोई गीत सुनना चाहते हैं, तो भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं fmgoldaiadelhi@gmail.com. और अब जो गीत हमने आप तक पहुंचाना है, आप सब तक पहुंचाना है, वो तो आप तक पहुंचेगा ही, लेकिन किसी खास के लिए भी है. आज किसी का जन्मदिन है जिनका नाम मैं भी लूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत सा शेर उनके लिए कहूँगी कि हंसी थमी है इन आँखों में यूँ नमी की तरह, हंसी थमी है इन आँखों में यूं नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह. आँखों की बात की है, रोशनी की बात की है, क्योंकि आज डॉक्टर यशोदा लोहिया जी का जन्मदिन है. वो एक अस्पताल में बतौर आई सर्जन कार्यरत हैं, और आज उनके बेटे डॉक्टर दीप और उनकी बेटी शिखा और उनकी दो प्यारी प्यारी बच्चियों और उनकी मुंह बोली बहन सीमा की ओर से उनको जन्मदिन की, बर्थडे की बहुत बहुत बधाई है. आप बहुत प्यारा कार्य कर रही हैं, आप लोगों को रोशनी जो है उसे मेंटेन करना भी बताती हैं, क्योंकि अब ये बरसात का मौसम आ गया है, तो सभी डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशली आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आँखों को बचा कर रखिए, क्योंकि बारिश में भी आँखों पर असर पड़ता है, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ आँखों की होती हैं, मौसम के हिसाब से होती हैं. तो बहरहाल हम बीमारी की बात नहीं करते हैं, आज हम FM गोल्ड की तरफ से डॉक्टर यशोदा लोहिया को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, और उनके दोनों बच्चों ने हम तक ये संदेशा पहुँचाया है कि उन्हें एक गीत बहुत बहुत पसंद है, यानी उनका पर्सनल फेवरेट है. तो आइए सुनते हैं उनका पर्सनल फेवरेट भी, हमारा फेवरेट भी, आप सबकी पसंद भी. हैप्पी बर्थडे डॉक्टर यशोदा लोहिया.

और आइए अब आपके संदेशों को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास स्वर्ण सिंह जी का ये संदेश आया है, लोहागढ़ से आया है, गांव लोहागढ़ से। स्वर्ण सिंह गिल हैं, दलजीत सिंह जी हैं, राजदीप सिंह हैं, इनके साथ गुरनूर हैं, गुरलाल हैं, अब थोड़े टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स हो जाते हैं ना, और अविराज सिंह जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और इसी तरह भारत भूषण जी, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण और संस्कृति और पौरुष हैं, इन्होंने बेंगलुरु से हमें संदेशा भेजा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत संदेशे के लिए। यहाँ पर सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से हमें मैसेज करते हैं, इनके साथ बिमला अनेजा हैं और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है, गाना बहुत प्यारा है आपका, देखें चला पाते हैं कि नहीं। कोल्हापुर से संभाजी सुतार हैं, चेतन हैं इनके साथ और सारिका सुतार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। यहाँ पर प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ पलारी से हमें संदेशा भेजा है। इसी तरह कुमकुम जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपका भी संदेशा आया है। विजय सुरलकर हैं, साथ में रत्नमाला हैं, कुमकुम हैं और मोताला महाराष्ट्र से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है। मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी तरह आप हमें मैसेज करते रहिए, आपके मैसेज हमें ऊर्जा देते हैं। और इसके साथ साथ संभाजी हैं, चेतन हैं और सारिका सुतार हैं, इन्होंने कोल्हापुर से हमें संदेशा भेजा है। आप अपना जो संदेशा है इसी तरह हमें मैसेज करते रहिए। मैसेज करने के लिए आपको जो पता है वो मैं बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और अब बारी है एक और खूबसूरत गीत की। 1973 में ये फिल्म आई और जो गीत है वो कुछ यूं है, देखिए कितनी खूबसूरत बांसुरी बजाई गई है।

0: अभिमान फिल्म के इस गीत के बाद मेरी नज़र आपके मैसेजेस पर है, पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ आज शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा, और हमारे दरमियान जो कार्यक्रम है उसका नाम है मन भावन, और उस तक पहुंचने का जो पता है आप भली भांति जानते हैं, फिर भी जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया उन्हें बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com आप अपना जो संदेशा है, अपनी फरमाइश है, आप हमें इसमें भेज सकते हैं। कोई दिलचस्प किस्सा जुड़ा है तो वो भी हमें बताइएगा, मज़ा आएगा सुनने में। जमशेदपुर से हमारे पास हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का ये संदेशा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और पंजाब से हमारे पास परमिंदर सिंह रंधावा और इनके साथ लखनपाल जी हैं और सुरेंद्र कौर रंधावा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बोधराज खोरवाल जी, बहुत बहुत नमस्कार, उत्तम नगर दिल्ली से आपने संदेशा भेजा है, और आपके साथ कमला रानी हैं, गीतिका हैं और भानु प्रकाश हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने संदेशे fmgoldairdelhi@gmail.com पर हमें भेज

करते हैं भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से। ये मैं आपका, देखिए दोबारा आपने जो भेजा है ना, अभी मुझे एकदम से याद आ गया कि मैंने अभी तो आपका ये लिया। अब ये पैराग्राफ में जब आप लिखते हैं तो मैं आपके नाम ही खोजती रह जाती हूँ, इसीलिए आपसे मैं निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप ना एक के नीचे एक अगर नाम आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पैराग्राफ में ढूंढना पड़ता है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान है, ये इन्होंने संदेशा भेजा। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार आप अपना संदेशा एक के नीचे एक नाम लिखकर भेजेंगे। मोहम्मद यासीन हाशमी साहब हैं, ये हैं नजमा बेगम हाशमी हैं, मोहम्मद तौसीफ हैं और मोहम्मद कलीम अंसारी हैं। इन्होंने हमें कहाँ से भेजा है, गुंज डुंडवारा से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है, और आपके संदेशे हमें मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। जिन्होंने अपना संदेशा भेज दिया है, मैंने जिनका संदेशा पढ़ लिया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप दोबारा ना भेजें, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें। क्यों आप नहीं चाहते? यहाँ पर कमलकांत गुप्ता जी का भी संदेशा आया है, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी हैं और दीपा रिमझिम गुप्ता हैं इनके साथ। और आपसे एक और मैं बात कहूँ, आप अपने दोस्तों को और जो आपके अपने हैं उनको बोलिए ना कि आप भी इसमें आप मैसेज कीजिए, तो एक मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप अपने किसी साथी का नाम लिखकर भेज रहे हैं और वो साथी ने आपका सुना ही नहीं है, मैसेज ही नहीं सुना है, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशानी छिम्पा और पूजा परिहार हैं, इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा। मुझे लगता है अब काफ़ी सारे मैंने नाम जो हैं वो पढ़ लिए हैं, और अब एक बहुत बेहतरीन गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में आइए सुनते हैं।

कई बार ऐसे होते हैं साथियों कि जब हम कोई गीत सुनते हैं ना, तो कुछ गीत ऐसे हैं जिसमें थर्ड स्टैंजा में फीमेल सिंगर आती हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये रफ़ी साहब का सोलो है, लेकिन तीसरे अंतरे में तो आशा जी ने आके कमाल ही कर दिया। चलिए, इसी तरह आप के संदेशे हमें मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे समय अब ज़्यादा नहीं है, फिर भी fmgold@delhi.com इस पर आप हमें संदेशा भेज सकते हैं। यहाँ पर सीमा जी नमस्कार, किसने भेजा है? छत्तीसगढ़ से हमारे पास कौशल्या देवकुंजी और रोशन लाल देवकुंजी का संदेशा है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हेमलता है साथ में और डिम्पल देवगन है, और आपने एक गीत की फरमाइश की है। जी हाँ, मानसून तो आ ही गया है, सावन का महीना भी बस बिल्कुल सामने ही है, तो कई बार मौसम के हिसाब से जो गीत होते हैं वो सुनने का बड़ा मन करता है। आदाब किसने हमें लिखकर भेजा है? नसीर शेख साहब हैं, आपने आदाब हमें लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा है कोई भी गीत सुना दें, फातिमा कॉलोनी यहाँ महाराष्ट्र से आपने लिखा है। नासिर शेख हैं इनके साथ, नाजिया इनके साथ हैं, साजिद इनके साथ हैं, और इसके साथ साथ अगले मैसेज की तरफ मेरी नज़र जा रही है तो मैं देख रही हूँ कि कृष्ण मेहरा हैं, कोमल हैं इनके साथ, किरण मेहरा हैं, कपिल हैं और कुणाल मेहरा हैं। उन्होंने हमें नमस्ते भेजा है और भिवानी से इन्होंने हमें लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए भी। बबलू ठेकेदार जी हैं, शेख सगीर हैं, शेख वज़ीर हैं और शेख सुहेल साहब हैं, अदनान हैं इनके साथ, विजू भाई हैं इनके साथ, और इन्होंने भी बाजार मोताला से हमें ये संदेशा भेजा है। तो अब क्या कहते हैं कि अब एक गीत सुन लेते हैं। हिमलता जी, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, आपने राजस्थान से हमें संदेशा भेजा है। जब भी गीत की बात करती हूँ एक नया सा मैसेज आ जाता है, तो चलिए जो पहला हमने जो मैसेज पढ़ा था उनकी फरमाइश है, हम सब की फरमाइश है, क्योंकि आप जानते हैं मौसम तो आ ही गया है, मानसून आ

0: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
1: ध्यान रखना बेटा।
2: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
3: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
2: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
3: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
2: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।

स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन। वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, चलते चलते होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी हैं, सचिन खोरवाल, अमन है, दीपांशु हैं, और इन्होंने एक फिल्म के गीत की फरमाइश की है, लेकिन अब आगे बढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही है। एक गीत आपकी नज़र कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा ही सुनते हैं। आइए आपसे इजाज़त तो ले लूँ, सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुदेंद्र टंडन ने कहा कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन तक और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का अपना ऐतिहासिक 2 दिन की यात्रा पूरी करके भारत के लिए रवाना

रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन, जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्वकप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। भारत ने कल पहली पारी में 285 रन बनाए थे। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। फुटबॉल फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

4:11 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1। और साथियों, आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत, अपने ज़माने के मशहूर गीत जिन्होंने उस वक्त तो हमारे दिलो दिमाग पर असर किया ही, हमारे दिलों में घर किया ही, लेकिन आज भी जब हम उन्हें सुनते हैं

अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक बार फिर आपकी दोस्त सीमा वर्मा स्वागत करती है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी हमने गीत सुना, या करूं मैं क्या सुकू सुकू, जंगली फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब की मखमली आवाज़। और आइए अब एक और गीत आपकी नज़र करते हैं, 1959 की फिल्म सुजाता का ये गीत है। और जिन्होंने ये गीत गाया है उनकी आवाज़ की यही खासियत थी कि एक हल्की सी कंपन जो दिल में बहुत प्यारा मीठा सा असर कर जाया करती थी। ये गीत आप की नज़र करते हुए आपको ये भी बता दूं कि इस गीत के उस पार 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार।

0: The Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, an institution of national importance under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, has invited applications from eligible Indian nationals for contractual appointments to temporary positions. The vacancies include two training and placement officers, maximum age 45 years, with a consolidated remuneration of 2 lakhs per month, and one superintendent, grade 1 accounts, with a consolidated salary of 50 to 60,000 rupees per month, and the age limit is 35 years. Interested candidates can view the eligibility criteria and submit their applications through the recruitment portal. The last date for submission of applications is 15th July 2026. For details, do look up the website at www.rgipt.ac.in. I repeat, it is www.rgipt.ac.in. The Indian Council of Medical Research, ICMR, has invited online applications for the post of a director at the level of Scientist H for the ICMR National Institute of One Health, Nagpur. The post is on a regular basis through direct recruitment and carries pay matrix level 15, along with admissible allowances. The last date for submitting of online applications is 20th July 2026. Detailed eligibility criteria and the online application link is available on the website, that is at www.icmr.gov.in, or you could also go on to www.recruitment.icmr.org.in. SES Baba Nebraj Senior Secondary School, Lajpat Nagar 4, New Delhi, a linguistic minority managed, aided and recognized school, has invited applications for permanent teaching and non-teaching posts. Vacancies include 1 TGT Sindhi, 6 assistant teachers and 2 laboratory assistants, all in unreserved category. Pay, qualifications, age limit and recruitment rules will be as per the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi norms. Applications in the prescribed format should be submitted within 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Applications may be sent by registered post or in person. Preference will be given to Sindhi candidates. The application form is available at the school and further details can be accessed through the Directorate of Education website, that is at www.edudel.nic.in. I repeat, it is www.edudel.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित SES बाबा नेभराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। TGT सिंधी 1 रिक्ति, असिस्टेंट टीचर 6 रिक्तियां, लैब असिस्टेंट 2 रिक्तियां। ये सभी पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हैं। भर्ती के नियम, वेतन, योग्यता और आयु संबंधी शर्तों के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के नियम लागू होंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.edudel.nic.in। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट NSU

0: www.ac.in. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स आमंत्रित कर रहा है विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन. उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री धारी होना चाहिए. कंसल्टेंट को कार्य दिवसों में प्रतिदिन 2 घंटे के लिए मेहरौली नई दिल्ली स्थित C. परिसर में उपस्थित होना होगा. ये अनुबंध प्रारंभ में 2 वर्षों के लिए होगा जिसे संतोषजनक प्रदर्शन एवं पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है. दिल्ली NCR के प्रतिष्ठित अस्पतालों क्लिनिकों से जुड़े डॉक्टरों को वरीयता दी जाएगी. इच्छुक डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे अपना बायोडाटा तथा MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री प्रमाण पत्रों की प्रतियां ईमेल से इस ID पर प्रेषित करें admin.del@c.in. केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अपर डिवीजन क्लर्क के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं और प्रतिस्थापन का स्थान रहेगा केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार सुन रहे थे। और साथियों, अब वक्त हो चला है आपके अपने कार्यक्रम परिक्रमा का, कुछ ही देर में।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कराते हैं देश की परिक्रमा और साथ ही याद करते हैं कुछ खास हस्तियों को भी। ऐसी ही एक खास हस्ती भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है, जो कहते थे कि मनुष्य का मन अपने अंदर से ही त्राण पाता है और अपने अंदर से ही असहाय क्लेश भी, यानी मन की गहराई से ही शांति और असहनीय पीड़ा दोनों उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब मन विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तो ये स्वयं को हील करने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने अंतर्मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के संकल्प के साथ करें। मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना।
3: हेलो सर फिरोजी, नमस्कार एंड गुड डे एवरीवन। यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड सर फिरोजी ऑलरेडी हैज इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस। India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का अहम हिस्सा।
3: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन्स इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी, सेज इंडिया बिल्डिंग अ स्ट्रांग सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्स।
2: परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया।
3: टाइफून बावी फोर्सेस फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड स्कूल क्लोजर्स इन जापान एंड ताइवान।
2: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा।
3: एंड इन फीफा वर्ल्ड कप, नॉर्वे टू टेक ऑन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना टू फेस स्विट्जरलैंड इन

0: अपनाया गया।
1: टाइफून बावी फोर्सेस फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड स्कूल क्लोजर्स इन जापान एंड ताइवान।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में

0: और रेलवे स्टेशन तो हम कुछ दिनों में यू नो विजिट करते हैं, महीने में या कई बार साल में, लेकिन मेट्रो स्टेशन ज़रूर रोज़ विजिट करते हैं। और बात कर रही हैं आप पॉपुलेशन के चैलेंज की, तो बढ़ती आबादी की जो चुनौती है उसे थोड़ा अगर हल्के फुल्के अंदाज में समझने की कोशिश करें तो ऐसा मान लीजिए एक म्यूज़िकल चेयर का खेल है जिसमें जो चेयर है यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो सीमित है, लेकिन जो उस खेल के खिलाड़ी हैं वो हर सेकेंड बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक म्यूज़िक बजता है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन फिर जब म्यूजिक रुकता है तो एक ही सीट के लिए 10 लोग दावेदार हो जाते हैं। आप हम लोग जैसे मेट्रो में आते हैं, जब ऑफिस आते हैं तो स्टेशन पर जब रुकती है मेट्रो, उससे पहले ही कि कोई निकले बाहर, चढ़ने वालों की इतनी हो जाती है भीड़ कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं बचती। तो इस तरह की चुनौतियां हम रोज देख रहे हैं आबादी से जुड़ी हुई।
1: दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई 11th ऑफ जुलाई दैट इज टुडे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अ डे दैट आस्क्स अस एन इंपॉर्टेंट question: is population simply about numbers, or is it about creating a better life for each and every person?

0: तन्वी पॉपुलेशन डे की बात कर रहे हैं जो आज मनाया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे दिमाग में ये बात आई कि आज ही की जो तारीख है इसे क्यों चुना गया पॉपुलेशन डे मनाने के लिए? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम वापस जाएंगे साल 1987 में, जब 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी के 5 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
1: The day became famous as the day of 5 billion. That's a huge number. And it wasn't a celebration of a number. It was actually a wake-up call. A thought echoed across the globe. And can our planet continue to provide enough food, education, healthcare, jobs and even natural resources for each and everyone?
0: बिल्कुल तन्वी, और इसी सोच ने दुनिया भर में एक बहस छेड़ दी, और फिर 2 साल बाद 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की, और 1990 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे हर साल मनाने को औपचारिक रूप से मंजूरी भी दे दी।
1: So here's a myth that I would like to bust. Population concern doesn't always include more people. Sometimes it means fewer young people. Our listeners might be surprised. So look at Japan and Italy, for instance. Their biggest concern isn't rapid population growth, but an aging population. A large share of their citizens is above 65 years of age, a trend often called the silver tsunami.
0: यानी इसका मतलब ये है तन्वी कि कहीं ना कहीं हम शुरू से गलत सवाल पूछ रहे हैं। क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किसी देश में लोगों की आबादी कितनी है, बल्कि शायद ये पूछना चाहिए कि कितनी ऐसी आबादी है जो पूरी तरह हेल्दी है, कितनी ऐसी आबादी है जो पढ़ी लिखी है, और क्या उस आबादी में से जो यंग लोग हैं उनके पास आगे बढ़ने के मौके हैं।
1: That's precisely the message behind this year's World Population Day theme is realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future. Every child is born with dreams, but the real question arises here is will they get the opportunity to fulfill them?
0: बिल्कुल सही कहा तन्वी, जब युवाओं को अच्छी शिक्षा, सही स्वास्थ्य सेवाएं, समान अवसर और बिना डरे सपने देखने की आजादी मिलती है तो वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाते बल्कि मजबूत परिवार और मजबूत देश का भी निर्माण करते हैं।
1: Absolutely.

0: सबसे युवा देशों में भी शामिल किया गया है और इस नाते हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलता है। देश में युवा भारतीय स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तन्वी,
1: That's correct. And they are even making scientific breakthroughs, serving with pride in the armed forces and creating solutions that inspire the world. And that is why education remains one of the greatest investments any society can make.
0: बिल्कुल तन्वी, और विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है कि जो इंसान स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जेल का दरवाजा बंद करता है। यानी शिक्षा अपराध और अज्ञानता को दूर करने का सबसे ताकतवर हथियार है और जब हम युवाओं की शिक्षा और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम उसी आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहे हैं।

लोगों ने भी कहा है कि जो इंसान स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जेल का दरवाजा बंद करता है, यानी शिक्षा अपराध और अज्ञानता को दूर करने का सबसे ताकतवर हथियार है। और जब हम युवाओं की शिक्षा और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम उसी आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहे होते हैं।

0: और अब बात करते हैं कि कैसे आज का जो दिन है पॉपुलेशन डे वो किस तरह दुनिया भर में मनाया जाता है। आज के दिन दुनिया भर में जागरूकता अभियान आयोजित होते हैं, स्वास्थ्य शिविर और परिवार नियोजन से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
1: एंड इवन पब्लिक डिस्कशंस, यूथ प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स आर आल्सो प्लान्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो डियर लिसनर्स, प्लीज बिफोर वी रैप अप आवर टुडेज़ डिस्कशन, आई वुड लाइक आवर लिसनर्स टू कैरी वन क्वेश्चन with them. Can just a single day spark a global movement?
0: बिल्कुल तन्वी, और हमारे श्रोताओं के पास समय है इस सवाल का जवाब खोजने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि बड़े बदलाव और जो सफलता है वो रातों रात नहीं मिलते। ये रोज की छोटी आदतें, सब्र और निरंतर प्रयासों का परिणाम होते हैं। जैसे कि एक मजबूत इमारत की जो नींव है वो तुरंत नहीं बनती, वैसे ही अगर हमें जीवन में कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत होती है। हालांकि जो लोग बदलाव को जल्दी अपनाते हैं वो अवसरों का सबसे पहले लाभ उठा सकते हैं।
1: I couldn't agree more. When future generations look back at us, they will remember us. Will they remember how many people lived on earth? Or rather, how well we cared for one another? Because World Population Day is obviously not just about counting people, it's actually about valuing people, isn't it?
0: बिल्कुल तन्वी, इसका मकसद है हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत देना, हर युवा को बराबरी के अवसर देना, हर महिला को समान अवसर देना और हर

0: Tribe, one of the most important social research institutes of the government of Kerala. Kirthats has various departments including research studies, development studies, training programs, evaluation studies, support for doctoral research, language studies, statistical analysis, cartography, and a tribal heritage museum. Kirthats has a rich collection of books in the field of social sciences. An extensive library is one of the main features of the institute. Kirthats also has a museum and an open-air theater. Adjacent to this, the Tribal Studies Museum has an exhibition of weapons and tools used by tribals in ancient times and a wide range of books and other materials written in anthropology and social sciences. Kirthats provides training through the Adikala Kendra to bring tribal arts and traditional dances to the new generation. Kirthats director, Dr. Bindu S. received the national recognition from Ranjana Chopra, Secretary, Ministry of Tribal Affairs at the National Tribal Research Center's workshop in Bhubaneswar, Odisha. The Union Ministry, assessing that the activities being carried out by Kirthats in Kerala can serve as a model for other tribal research centers in the country, has declared Kerala as a Mentor Tribal Research Center. This achievement is proof that Kerala's academic excellence, research capacity, and commitment to tribal development have been once again recognized at the national level. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
1: तन्वी, जब हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा परिक्रमा, तो उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा, क्या आपको पता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है?
2: नो, फिल मी अप.
1: ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही वाइब्रेंट फेस्टिवल आयोजित हो रहा है नई दिल्ली के दिल्ली हाट में, जिसका नाम है मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट 2026. इसका आप हिस्सा बन सकती हैं और साथ में हमारे श्रोता भी इसे विजिट कर सकते हैं. थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में.
3: The annual festival has become the state's flagship platform for connecting pineapple growers with consumers, retailers, food businesses, and export markets. Talking about the festival, Mr. Sindhia said that the festival reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of local for global and local to global, adding that it will help promote Meghalaya's farmers and expand their access to global markets. He said such programs promote trade and provide new impetus to the capabilities of farmers at the global level.
4: Fourth edition of the pineapple festival has been remarkable. It will be historic. Pineapple has gone to multiple countries across the world. We are looking at putting in place processing centers that will enhance the value addition to the pineapple product. We have seen a lot of that value addition in these stalls, and that is what's going to enhance the capability of our organic farmers to be able to grow beyond the shores of India to far-reaching international shores.
3: Meanwhile, Chief Minister Conrad Sangma said that the center's continued focus on the Northeast is accelerating the region's economic development and providing new opportunities for local farmers. He expressed happiness that programs like Meghalaya Pineapple Fest are providing a platform to the farmers of the state to showcase their product. With Arzu, Soumya Sharan for Parikrama.
1: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि ये महोत्सव जो है वो शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित हो रहा है और इसके लिए आपको टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है.
2: एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्लीज फेस्ट्स एंड इनिशिएटिव्स. द नेक्स्ट इनिशिएटिव इन द लिस्ट इज दिल्ली PMML स्कूल इनिशिएटिव. टू हेल्प यंग पीपल बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी PMML टुडे लॉन्च्ड अ न्यू म्यूजियम बेस्ड Learning Initiative, Jan Se Gan Tak in New Delhi. A report on this.
5: The newly launched Jan Se Gan Tak Initiative is an immersive museum-based program to familiarize higher secondary students with India's constitution, democratic traditions, and civic values. The initiative includes a scholar-led walkthrough of the museum's constitution galleries, followed by interactive discussions on justice, liberty, equality, fraternity, citizenship, and public participation. The program will be held every Friday for students nominated by participating schools, with the aim of encouraging young learners to view the Indian Constitution not just as a legal text but as a living expression of India's aspirations and responsibilities. Schools that wish to nominate students or join future sessions can contact Pradhan Mantri Sangrahalay through the official email IDs on its website. With Arzu and Saklin Akhtar, Harshita Ojha for Parikrama.
1: Shrotas, श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान में और वहां की हलचल आपको देंगे। तो इस समय दुनिया भर में जिस एक खेल का बहुत ज्यादा चर्चा है तन्वी, वो है फीफा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से और फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था।
2: So apart from FIFA, we cannot forget cricket.
1: जी.
2: India will face host England in the 5th and final T20 international of the series today at the Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series.
1: श्रोताओं, अब हम याद करेंगे उन कुछ खास हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। जिस एक शख्सियत का हमने शुरू में ही जिक्र किया था तन्वी, भीष्म साहनी को, तो आज सबसे पहले उन्हें ही याद कर लेते हैं। भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे। रावलपिंडी में जन्मे साहनी ने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की और समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। तन्वी, जब हम अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं किसी शख्सियत की, तो इस तरह तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन जब एक शख्सियत अपने सफर के बारे में खुद बताता है तो कहीं ना कहीं उनसे अटैच हो जाते हैं। तो एक भीष्म साहनी के इंटरव्यू का एक चंक है जो हम अपने श्रोताओं को सुना दे, तो उन्हें पता चलेगा कैसे कितना लंबा सफर भीष्म साहनी ने तय किया।
2: जी,
6: मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था जब मैंने एक कहानी लिखी, तो इंटरमीडिएट कॉलेज था, उसकी पत्रिका में वो छप गई, मैं बड़ा खुश। फिर उसके बाद जब मैं लाहौर पढ़ने गया तो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की एक पत्रिका थी रावी नाम से, उसमें फिर दी, कुछ एक और भी थी, चलती रही, वो अबला नाम से था, अबला। और शायद हर हिंदी का लेखक पहले अबला से ही शुरू करता है। उर्दू के लेखक तो कुछ एक थे और गाहे गाहे मिलते भी थे, उनके साथ उठना बैठना भी था, लेकिन हिंदी लेखन में कोई नहीं था, ज्यादा नहीं थे। लेकिन दिल्ली में मेरी फुफेरी बहन रहती थी, उसे लिखने का शौक था और उसके साथ मेरा संपर्क था। और फिर मैं जब बिजनेस करने लगा अपने पिताजी के साथ, तो मैं अक्सर दिल्ली जाया करता था।
2: So what amazing writing he has done, and we cannot forget to mention Tamas here, the work he has written, and even today we do research on it, we act on it, and this new generation, they can't help but be inspired by it.
1: बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे श्रोता भी ये जानते होंगे कि इनकी इसी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तन्वी, और इसी रचना पर इनकी एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी विभूषित किया था।
2: And now that we are talking about writers, another writer in the list is Amitav Ghosh. Today is his birthday. An American writer, he won the 54th Gyanpith Award in 2018, India's highest literary honor. His ambitious novels use complex narrative strategies to probe the nature of national and personal identity, particularly of the people of India and South Asia. He has written historical fiction and non-fiction works discussing topics such as colonization and climate change. And he worked at the Indian Express newspaper in New Delhi and several academic institutions. His first novel, The Circle of Reason, was published in 1986. And apart from that, his other successful works are The Shadow Lines, The Glass Palace, and many more. The In an Antique Land, the book that came in 1992, and the one, The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable, that came in 2016. Both are amazing works. So let's hear a short interview of his and understand his point of view.
7: Yeah, I mean, I think, you know, if we go back 100 years and we think of, let's say, Mahatma Gandhi, he articulated a very powerful challenge, you know, to this this kind of Western modernity. In fact, he said, if At that point, there were only 300 million Indians. And he said, if 300 million Indians start living like Westerners, we'll consume the world like locusts. So even back then, he could see clearly that it's not necessarily anything to do with... He didn't know about the science of climate change or whatever. It was just common sense. If you overuse resources, at some point, you will have to pay for it. And that's exactly where we are.
1: और तन्वी आज ही जयंती है टुन टुन की भी जिनका नाम हम सभी ने सुन रखा है। ये भारतीय पार्श्व गायिका और हास्य अभिनेत्री थी। इनका असली नाम था उमा देवी खन्नी और इन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ये फिल्मों में गाने गाती थी उमा देवी के नाम से। और अपने श्रोताओं को एक ट्रिविया भी दे देते हैं कि टुन टुन का जो प्रसिद्ध नाम पड़ा ये नाम इन्हें अभिनेता दिलीप कुमार ने दिया था। इन्होंने गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों आर पार, मिस्टर एंड मिसेज पचपन और प्यासा में यादगार रोल किए जो आज भी लोगों को याद हैं। इस अवसर पर आइए सुन लेते हैं टुन टुन क्या और अभिनेता महमूद के बीच एक कॉमेडी सीन।
8: वही बचपना, वही शरारत
9: है। क्या बचपन में हमने आपसे कोई शरारत की थी?
8: जी नहीं।
9: लेकिन मैडम आपकी तारीफ।
8: मलका फिक्टोरिया।
9: मलका फिक्टोरिया
8: याद है बचपन में मैंने आपसे शादी की बात की थी।
9: आपने हमसे शादी की बात की थी? उसके बाद हम क्या बेहोश हो गए थे?
8: जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
9: लेकिन मैडम फिटोरिया अब तो आपकी उम्र उम्रा हो चुकी है। हमारी शादी आपसे।
10: एक्सक्यूज मी, वो शादी की बात मम्मी की नहीं हमारी हुई थी।
9: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बाबा तो काफी परेशान हो चुका है।
8: ये बाबा नहीं है, ये तो बेबी चमेली है।
9: अच्छा, तो क्या इनकी शादी हो गई?
8: जी नहीं, बस आप ही की राह देख रहे थे। देखिए ना राजकुमार साहब, अब आप अपने घर में किसी भी औरत को ले आइए।
9: मलका फटोरिया, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम किसकी औरत को अपने घर ले आए।
2: That's a wonderful comic timing by Tun Tun, the yesteryear actress. And today we are also remembering Giorgio Armani. Today is his birth anniversary, an Italian fashion designer and founder of the Armani luxury fashion house, widely regarded as among the most influential designers in contemporary fashion. Apart from this, today is also the birthday of Jhumpa Lahiri, a British-American author known for her short stories, novels, essays in English, and more recently in Italian as well. And it's also the birthday of Kumar Gaurav, an Indian actor who worked in Hindi cinema. He has done amazing movies and let's hear a beautiful song picturized on him alongside Poonam Dhillon.

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने का जिराज
1: हमारी धरती मेरी हमारी तो हमारी धरती मेरी हमारी तो।
2: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडीह, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनकपुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण

0: रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडीह, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये धूरी अम्बा, करडेगा, केंदापानी, मधुटोली, खड़ामाचा, हरदीझरिया, पीठा आमा, महेशपुर, चेटबा, मड़ियाझरिया, सोनाजोरी, झिक्की, परसाडाण, कुरडेग, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछा, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागरपाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वनमंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 47 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा, बोडापाला, जारनडीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए हम आपको बताएं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती आप सुनेंगे रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 सुनिएगा डॉक्टर माधुरी देवी का वीणा वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आज की युववाणी होगी छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोठ में चर्चा का विषय है बाढ़त जनसंख्या के परिणाम। साथ ही सुनेंगे क्रम आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे गौतम चंद जैन और साथी। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे भरत लाल हरिंद्र और साथियों को। 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आप सुनेंगे आज की बात, मानसून मौसमी बदलाव के खेती ऊपर प्रभाव। किसान वाणी में आप सुनेंगे आज की सलाह, गोबर एवं गौमूत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन। सलाह देंगे डॉक्टर आशुतोष दुबे। इसके अलावा होगा आज का प्रश्न और छत्तीसगढ़ी गीत। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। कल रात 8:15 पर होगा कार्यक्रम स्वर धरोहर।

कुमार मर्दूर का गायन, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। जिले की चिट्ठी में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे बस्तर जिले की चिट्ठी, कानून की बात। इस कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे स्थायी लोक अदालत के प्रभावी संचालन।

खेल संसार में आप सुनेंगे भारतीय काइकिंग और केनोइंग एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में सह सचिव श्री प्रशांत रघुवंशी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे

0: धरती माई के कोरा मास समय कत्ता भार सोच समझ के बढ़ावव अपन कुल परिवार
1: जनसंख्या ला रोको बनावो देश के रखवार तभे मिली नवा छत्तीसगढ़ ला सुघर आधार नता के पत्री मा माया के कलवा ल परोसत आप जम्मो के अंतस ल गुदगुदाय बर आज आगे आपके दो संगवारी मैं दामनी सेन
0: और संग मा महुआ हबो आपके मयारो संगी अदिति साहू तझो को हमर दोनों झन के माया भरे
1: राम राम जय जोहार। अदिति
0: हाँ
1: बड़ दिन बाद तोले भेंट हुआ था वे सब बने बने है ना संगी।
0: हाँ मैं तो बने बने हूँ
1: हाँ?
0: लेकिन तेहा मोला बने नहीं दिखा था बस।
1: वो कैसे अदिति
0: जब ले ते आकाशवाणी आहस
1: हाँ?
0: आज देखा तो
1: हाँ?
0: तब ले ते एकदम टेंशन में दिखा था बस।
1: काला बताओ संगी मैं यहाँ आवत रही हूँ ना तो रद्दा मा अतका ट्रैफिक अतका भीड़ हो गई रही से कि मोला आज ऐसे लागत रही से कि आज मैं यहाँ बेरा में पहुँच पाऊँ कि नहीं पहुँच पाऊँगी।
0: अच्छा तो ये बात है
1: हाँ
0: तो संगी भीड़ तो होबेज करी।
1: हाँ
0: रद्दा मा ट्रैफिक के जाम तो होबेज करी
1: सिर तो
0: काबर की दिनों ब दिन जनसंख्या बढ़त है।
1: हाँ
0: और रही बात बढ़त जनसंख्या कारण
1: हाँ?
0: हमारे

0: संग घलो हुआ थे ना।
1: हाँ संगीते तो सही बोले से हाँ। बातला तेकरे सती इंद्रदेव हा सही बेरा मा पानी नहीं गिरावत है।
0: तहु हो बने गोट कर था सदिती संगवारी हो, बाढ़ा जनसंख्या के नियंत्रण केवल सरकार के जिम्मेवारी नो हरे, बल्कि हमरो जिम्मेदारी होते है कि हमन मनखे हरंत हमार प्रति हमार जिम्मेदारी होते है कि हमन कम ले कम अपन जितना भी जिम्मेदारी ओला बराबर धले उठावन करन।
1: तो संगवारी हो सबसे पहली कदम है शिक्षा, खासकर बालिका मन के शिक्षा। जब महिला मन ह शिक्षित होही तब हाँ। ओ मन ह अपन परिवार और भविष्य के बारे में सुघर निर्णय ले पाही।
0: सिर्तोन में संगी सिर्तोन में केस और दूसरिया ये हरे कि परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवा मन के आसानी ले पहुंच से निश्चित करेल पड़ी ना।
1: सिर्तोन में संगवारी औ तीसरा कदम आए कि समाज में ये सोच विकसित करेल पड़ी कि बेटा उ बेटी दोनों एक समान आए। जब ये मानसिकता हाँ बदल ही तब परिवार में अनावश्यक विस्तार के प्रवृत्ति हाँ कम हो ही।
0: सेतुन खाद सदिति हर युवा मनखे घलो यही भूमिका और युवा मनखे में जागरूक रही तो दूसर तको घलो जागरूक रही और जिम्मेदार नागरिक हो के परिचय दी।
1: और यदि हम शिक्षा जागरूकता और जिम्मेदारी के संग आगू बढ़बो तो निश्चित रूप ले एक संतुलित समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण ला घलो करबो।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर कन माटी के गीत ला, जिन ला स्वर दे रहीन जवाहरलाल बघेल और साथी मन हा।
1: अब सुने पर चारे समर ए संगवारी मन है, रोहासी पलारी ले डगेश्वर साहू, अलका जानवी गौरव घनश्याम नूतन साहू मने, बिलई गले हावे रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन बने, भरदल हावे रामधर साहू, राजकुमारी साहू, ग्राम पलोद टिकारी हावे

0: अदिति,
1: हाँ?
0: तोर हाथ में बिकट अकन पियर पियर पाती है दिखा थे, तो कौन संगवारी है, कहाँ ले भेजे है, झटकुन बता डर।
1: हाँ संगी, तो 4 जुलाई खरे है, हाँ? चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले,
0: हाँ?
1: पवन कुमार सेन, प्रमा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और राधिका सेन मन है।
0: संगवारी मन कहा थे?
1: तो संगवारी मन कहा थे संगी कि सुघर लागते जब बरसात के मौसम आषाढ़ के महीना में खेती खार में किसान संगवारी के ट्रैक्टर और नांगर जैसे खेत के जोताई कराते,
0: हाँ?
1: और दीदी बहनी मन है सुबह ददरिया गाते, रोपा
0: हाँ?
1: लगात लगात और सुघर अगन गाना गाते,
0: हाँ?
1: और ऐसने कहू संझौती बेरा में आकाशवाणी रायपुर ले युवानी के कार्यक्रम सुने पर मिलते,
0: हाँ?
1: ता ऐसे लगते हो मल्ला जिसे ओकर मन के मन गदगद आ जाते।
0: हाँ हाँ
1: ता औ इही रिकीम ले 4 जुलाई दिन सनिचर के संझौती बेरा मा हमर मयारुक संगवारी दामिनी सेन औ अमित साहू हासत खिलखिलावत मया भरे बोली संग मा युवानी कार्यक्रम सुने बर मिलिस, जेमा हमन हमन सहकारिता दिवस ऊपर ज्ञानवर्धन गोट सुनेन, औ संग मा आप मन के चिट्ठी कार्यक्रम औ माटी के गीत ला सुने के बड़ा सुघर लागे।
0: हाँ
1: ए दिन के अत्येक सुघर प्रस्तुति बर दामिनी सेन औ अमित साहूला अंतस ले बधाई देवत हन।
0: संगवारी हो, बरसात के मौसम आषाढ़ के महीना खेती खार पर बने रहते, जेमा चारों कोती हरियर हरियर और सुघर हवा चला देते, जेला देख के अंतसरा खुशी ले भर जाते। संगी हो, अपन कारज के प्रति हमला लगन और विश्वास घलो होना चाहिए, काबर की जेन मनखे है अपन जम्मो कारज बेरा में करते तेन मनखे ला सफल होए बर कोनो हा नहीं रोक सके। सहकारिता हा हमला ही सिखाते, अपन माटी महतारी ला छोड़ के हमला कबू नहीं जाना चाहिए, जेना हमला अपन संस्कृति परंपरा ला बांधे रखते। तो ए दिन के अतेक सुघर प्रस्तुति पर दामिनी सेन ला और अमित साहू ला अंतस ले बधाई देवत है। तो आप मन जो अंतस के बधाई ला दे हव तेला मैं यही मर झोंकत हूँ, और अमित साहू ला रेडियो के माध्यम ले बधाई पठवत हो, आगू घले आपके पात्र के अगोरा रही। अदिति,
1: हाँ
0: दूसरिया पाती कौन संगवारी कहाँ ले भेजे हवे?
1: हाँ तो ये सवाल हरे 7 जुलाई के साले भाठा महासमुंद ले हरे।
0: हाँ
1: जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी, खेमू ध्रुव मन हा भेजे हवे।
0: हाँ हाँ का कहा थे संगी मन?
1: तो संगवारी मन कहा थे 7 जुलाई के दिन हरे मंगलवार के संझा के बेरा मा युवानी के बग्याला ला सजाए ले रही सबे हमर दू मयारू संगवारी दामिनी सेन औ उत्कर्ष सोनबोई।
0: हाँ?
1: अपन चिट्ठी में बोली के संग मा कार्यक्रम ला शुरुआत करी से औ अनुशासन के शुरुआत खुद ले शुरू करे के ऊपर बड़े सुघर गोट करीन, और संग मा क्रम सवाल जवाब 237 के उत्तर ला सुने बर मिली से।
0: हाँ?
1: हमर श्रोता संगवारी मन हा भेजे रही से प्रश्न के उत्तर और श्रोता मन के ईमेल पत्र ला ज्यादा ले ज्यादा शामिल करी से।
0: हाँ?
1: संग माँ सुघर सुघर माटी के गीत सुने पर मिली से।
0: हाँ?
1: ओ सुन के हमर मन हा गदगद आगे।
0: हाँ?
1: अतेक सुघर प्रस्तुति पर दामिनी सेन और उत्कर्ष सुनबोई ला बधाई देवत हन।
0: संगी हो, अनुशासन हमर जिंदगी में कतका जरूरी है तो सबो जन जानते, एकर पालन करना हमर जिंदगी के एक ठन हिस्सा है। जैसे स्कूल में देखथन कि लड़का मन ला अनुशासित रहे बर सिखाया जाते, स्कूल तो स्कूल संगी हो, हमर घर में घलो अनुशासित रहे बर हमर सियान बाबा दाई बाबू घलो तको बताते कि बिहनिया ले अपन बेरा में उठना चाहिए, अपन जम्मो बूता ला बेरा में करना चाहिए, यहू एक ठन अनुशासित रहे के चिन्हारी है। तो संगवारी हो, अनुशासन हमारा जिंदगी के सफलता के आधार है, इकल हमला केवल बेरा के महत्व ही नहीं बल्कि जिम्मेदार मनखे बने की घलो सीख देते और सही रद्दा के मार्ग घलो कराते। तो सुघर प्रस्तुति पर दामिनी सेन ला बधाई देवत है, तो मैं अपन बधाई ला ही मेले झोंकत हाँ वो, और उत्कर्ष सोन बैखला रेडियो के माध्यम से बधाई पठवत हो, अतिक सुघर पाती पर अंतस्ते धन्यवाद, आगू घलो आपके पाती के अगोरा रही। अदिति, गोट बार तो बाचे रही, पाती होलो बाचे रही, तो ओखले पहले सुनथन सुघर अकन माटी के गीत ला।

0: संगवारी हो, अभी आपन सुनत रहे हो सुघर कन माटी के गीत ला, जे लस्वर दे रहीन मदन मेहर और साथी मन ह।
1: और सुने बे चालीस हमर ये संगवारी मन ह, दुर्गा चौक रायगढ़ ले गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास, शिव कुमारी श्रीवास, राम दुलारी श्रीवास मन, पलारी छत्तीसगढ़ ले हवे प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी वर्मा मन, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले हवे संतोष खड़से, विनोद खड़से मन, खैरागढ़ ले हवे देवेंद्र मोहबे, अमरदीप मोहबे, खल्लारी भीमखोज ले हवे संगी मन जी एल साहू, सरोज छोटी, पिंकी साहू मन, बागबारा भदरसील हवे पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन मन है, बिलेगढ़ ले हवे रोसालाल देवांगन, कौशल्य हेमलता डिम्पल देवांगम, रोहासिल हवे मुकेश साहू, नंदनी मनीषा मयंक साहू मन है, लालपुल हवे संगी मन कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निम्मी पम्मी निशान ध्रुव मन, डोंगरगांव हवे राष्ट्रपाल गजभिजय, राधिका अनिष्का तन्मय गजभिजय, सुंदरपाला रोहासिल हवे डगेश्वर साहू, घनश्याम गौरव, नूतन साहू मन है, दत्तरंगील हवे संगी मन है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा मन। अदिति
0: हाँ,
1: तोर हाथ में तो पाती है और दिखत हवे, अब झटकुन बता डर कौन संगवारी है, कौन दिन भर पाती पठो है, वो काय कहते संगी मना।
0: हाँ तो संगी हो, 9 जुलाई के ए सवाल आए पोटिया कला दुर्गले संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू मन है।
1: हाँ?
0: और संगवारी मन कहा थे 9 जुलाई के युवानी ला हमर मयारू कंपियर थानेश्वरी बघेल और ललिता साहू हा सुघर ढंग ले बहुत अकन ज्ञानवर्धन गोट के संग अपन बात ला पेश करी से।
1: हाँ?
0: अपन गोट मा गांव के मेधावी मन के सीख ले।
1: हाँ?
0: बात रही सबे।
1: हाँ?
0: और बाढ़े ओकर बारे में बताई सबे।
1: हाँ हाँ?
0: ओकर बाद औ संग मा पहुना जोहार कार्यक्रम मा चित्रकला ले जुड़े कलाकार।
1: हाँ?
0: सीवा साहू ले दीपक तिवारी के गोठ मा बात सुने पर मिली से।
1: हाँ?
0: ए दिन हमला अपन हमर गांव के कार्यक्रम मा श्रोता संगी मन के गांव के बारे मा बड़ सुघर गोठ जाने पर मिली से।
1: हाँ?
0: और अत्येक सुघर प्रस्तुति खातिर थानेश्वरी बघेल और ललिता साहू ला बड़ अकन बधाई के।
1: हाँ?
0: औ संग मा यहू संगवारी मन ह पठोए रही सबे पत्र ला। तब बेरला तिवार ले जीवनलाल सिन्हा, निर्मला देवेंद्र, सुधा अमना सिंह, महामाया चौक मेधापारा ले रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपक, दीपांशी टेकलाल पटेल मन ह। औ धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल, सघुन आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल मन ह। हसदा नंबर 2 ले कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू मन ह। और सहजपुर लोरमी ले सतीबाई साहू, उर्वशी साहू और माही अंशु, दामनी पार्वती, रामकिशन साहू मन ह।
1: संगवारी हो, गांव हमर पहचान है। गांव में ऐसन मेघावी लेकर युवा मनखे रही थे जेना कठिन मेहनत, लगन और पढ़ाई के बल में सफलता हासिल करते। वो मन अपन गांव के नाम ला रोशन करते और दूसर मनखे पर गलो प्रेरणा बनते। और यही बस नहीं है संगी, गांव के मेघावी मन के हमन सीख घलो सकथन कि कम साधन और कम संसाधन में घलो मेहनत घलो हासिल करे जा सकत है। संगवारी हो, अनुशासन और मेहनत के बल में अपन सपना ला घलो पूरा कर सकत हो। ऐसने मेघावी मन सफलता के हासिल करे के संदेश घलो देते और हमला ये सफलता के संदेश तो देते, संग में अपन काबिलियत ला घलो बताते। तो संगी हो, अगर हमन ऐसने मेघावी मन के रद्दा में चलबो तो हमू मन ला सफलता एक दिन जरूर मिली। और गांव के मेघावी लेकर मन रद्दा ले सिखाते कि कतको विपत्ति रहे, कतको परेशानी रहे, अपन रद्दा ले हटू झन, घुझू झन, देखा ले हमला विकास करे वे कोनो नहीं रोक सके। अतिक सुघर पाती पठो हो तेखर बर रेडियो के माध्यम ले थनेश्वरी बघेल और ललिता साहूला बधाई पठो हो। तो आगू गले आपके पाती के अग्रहरी बड़ सुघर लागे संगवारी हो, आप मन के मया भरे पातीला पठोयो, आप मन ला खलो मय लागे सोही, अतेक सुघर हमर तीर पाटीला पठोया, आगो घलो आप मन के पाती ऐसने पठोवत रहू, ओ खबर हमर पता तो चाहिए। तो हमर पता है क्रम आप मन की चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 पिन कोड 492001।
0: और जिन संगवारी मन हमन ला ईमेल के माध्यम ले अपन ईमेल करना चाहते ओकर मन बर ईमेल पता है airyouth9@gmail.com। और कोड लगाए बर झन बोलू संगवारी हो, तो कोड हरे Y8। आप मन के चिट्ठी
1: इहे तक।

0: संगवारी हो, अभी आपन सुनत रहे हो सुंदरकन माटी के गीत ला, जिन ला स्वर दे रहीन बैतल राम साहू और साथी मन हा।
1: और सुने भर चारे समर ये साथी मन हा, मदरसिल हरे घनाराम सेन, गितेश, दीपेश, निर्मला सेन मन, भीम घोष, तरपुंगी लावे, संतोष गुप्ता, हितेश, हुमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता मन, चांदनी चौक गुंदई पंडरिया लावे, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानकू, रविंद्र, रौनक सेन मन, परसा टोला अंबागढ़ चौकी लावे, ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र तुसानी मसिया मन, दतरंगी भाटापरा लावे, नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन।

0: आर्यनगर कोकल हे, आर्यनगर कोकल भिलाईल हवे उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष, नंदनी जंगेल मन। धरसीवा बस स्टैंड हवे रायपुर ले छेदुलवाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा और उहेल हवे अनुराधा, अल्पना, इकबाल कुरैसी, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू मन। दुर्गा पारा संतोषी नगर ले हवे छन्नूलाल, पुष्पलता, अर्पिता, अनुराग मन और इहेल हवे बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था यादव, अभिषेक, अभिनव यादव मन। पुतकी कला कवर्धल हावे राधेश्याम पांडे, विनय, वीना पांडे, विजय पांडे, नयन, सुमांशु पांडे मन हवे। कुरासी भैसल हवे पवन कुमार साहू, कांति देवी, पंकज, सुस्मिता, दीपिका साहू मन हवे। पथेरिया भरेवाल हवे चंदुला सिंगरोल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरोल मन हवे। कांकेर संबरपुर हवे फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव मन हवे। देवरबीज बेरलाल हवे दिनेश देवांगन, सृजन देवांगन, रूपेश राजपूत मन। पथरिया धमधा दुर्गल हावे बुद्धूराम साहू, जगौती, खूबचंद, हेमचंद साहू मना। कोहिकापुरी दुर्गल हावे सूरजभन साहू, कमलाबाई साहू। नवागढ़ कटेल हावे नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शारदा वर्मा, मयंक वर्मा मना। लक्षणपुर हावे रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू मन हावे। आमाखोड़ा रेंगना खाल हावे देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्षप्रिय गीत सरगम नेताम मना। अदिति,
1: हाँ संगवारी,
0: एक बात बता, तोला सबले ज्यादा का चीज में खुशी मिलते?
1: मोला सबले ज्यादा खुशी तो मोर परिवार, संगी संगवारी औ दाई बाबू औ हमर सियान बाबा कर बैठ के जौन गोट बात करथन ना,
0: हाँ?
1: ओमा मोला सबले ज्यादा खुशी मिलते।
0: सेतुन खा था अदिति, अब हमर सियान बाबा दाई बाबा ना जब अपन नानपन के सुरता के पोटरी ला खोलते ना,
1: हाँ?
0: तो बड़ सुने सुने के मन लागते ना।
1: हाँ सही बोले, औ ऐसने देखना मोला आकाशवाणी जाए बर लेट होत रही सबे,
0: हाँ हाँ।
1: त मोला तोर ते बोलेस नहीं,
0: हाँ।
1: काय गोट सुरता आगे तो लगी के,
0: हाँ
1: हाँ। त मोला एक गोट सुरता आगे से कि मोला ना मोर बाबा हा कहा है,
0: हाँ?
1: जूर मिल के रहू के,
0: हाँ
1: हाँ। त आगे के जो बात हवे तो ओहा जूर मिल के ही बात हवे।
0: से तुम कहा था सा दीदी, मतलब तुर बाबा कहात रही से जूर मिल के रेबे तो जिंदगी ला जीत सकथन, और कहूँ जिंदगी या बिखर जाते तो नानकुन गोट घलो बड़का लागते ना,
1: हाँ।
0: ऐसने गोट तो चलते रही संगी, तो सुन लेथन आवाज सुगर अगन गीत ला।

0: तो संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुंदर अकन माटी के गीत ला, जेन ला स्वर देन रहीन बसंती देवार और साथी मन हा।
1: सुने बर चारे समर ए साथी मन हा। अडार नान घाट ते हावे माखनलाल वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा मन। गेंदा टोला बाजार चौक ले हावे राजनांद गोले, बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि, योगिता, गजेंद्र गुप्ता मन हा। लोरमी चचेड़ी हावे कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी मन हावे। कोलारी कवर्धा लावे कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पुणेन्द, साहिल चंद्राकर मने। सहसपुर लोहारा दनिया क्रोध ले हावे गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत मन हावे। अमलेडी कवर्धा लावे संगी मन, संतोष राजपूत, हेम प्रभा, ट्विंकल, गौरव राजपूत मन। वार्ड नंबर दू गंडई पंडरिया लावे शिवा यादव, राजू, चिंटू, तरुण, चोवा, कन्हैया, निर्मला यादव मन। लोरमी चचड़ी लावे शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम, कोलाम मन हावे। डुमा तोला मंगचुआ बालोद ले हावे भगवानी राम काटे, गोपिका, भावेश, माधुरी देवी काटे मन हावे। पीपर पारा पालचुआ मुंगेली लावे उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वांसिका, दिवाकर मन। बंगला माटिया बलोद हावे शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे मन हावे। बीरनपुर कला दनिया गंडई लावे सुरेश कुमार साहू, तन्मय, टोमेश्वरी, किलेश्वरी साहू मन हावे। समडीडी नवा पारल हावे मुकेश गुप्ता, दीपक, श्रद्धा गुप्ता, अंकुश, अदिति और राघव गुप्ता मन हावे। पीपरियल हावे कमलकांत गुप्ता, रिमझिम गुप्ता और पहारा अहिवारल हावे पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया बंछोर मन। डोंडीलहरा बलोद ले हावे देवशंकर तमुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली, बेबी, पूजा, आरती, प्रभा देवी मन हावे। देवरी भाटा पारल हावे गन्नूला रजक, पुनेश्वर, फनेश्वर, हाव्यर, तानिया रजक मन हावे। पुरैना शहीद नगर छुई किनार ले हावे धर्मेंद्र जगेल, संतराम लोधी, नागेश्वर जगेल, साहूकार लोधी मन हावे। चर डोंगरी पीपरिया कबीर धाम ले हावे दुर्गाराम साहू, अजय, जय, किशन, कुमारी, इंद्रानी, माया साहू मन हावे। रानीगांव नगरी ले खिलेश्वर साहू, चित्ररेखा, शुभम, सेजल साहू मन है। अदिति,
0: हाँ संगी,
1: काय बात है, आज ते बड़ सुघर दिखत हस, नवा लुगरा, माथे में टिकली, नाने नाने खिनवा पहने हस, कहाँ ले आवत हस ते?
0: मैं तो घर ले आवत हो।
1: हाँ,
0: तोला तो पता है।
1: हाँ,
0: मुला सजे थवड़े के कतना शौक है बे।
1: हाँ, तो संगी फिर ऊपरी कायला सवारना तो जम्मू मन खेला सुघर लगते, फिर सबले ज्यादा तो हमला अपन अंतस के अपन विचार ला सुघर रखना चाहिए ना, कैसे ना?
0: हाँ, सरदोन के संगीत है।
1: हाँ?
0: काबर की बेरा में तो सूरज घलो निकलते।
1: हाँ?
0: और जैसे ही बेरा पहाते।
1: हाँ?
0: तो सूरज घलो बुड़ जाते।
1: हाँ?
0: तो वैसे ही हमार काया घलो थोकन दिन के बाद बुढ़ा जी थे।
1: तभी तो कहते हो संगी हो, हमला कभू अपन काया ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और संग में अपन ज्ञान ऊपर घलो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना?
0: हाँ, तो दामनी।
1: हाँ?
0: गोट बार तो चलते रही।
1: हाँ?
0: ओकर पहली हमन सुनथन सुघर कन गीत ला।
1: हाँ।

0: संगवारी हो, अभी आपन सुनत रहे हो सुखर कन माटी के गीत ला, जेन ला स्वर दे रहीन पंचराम मिर्जा और कुलवंतिन भाई।
1: और सुने बार चारे समर ए संगवारी मना हजदा नंबर दो ले कमलेश साहू, जितेंद्र, दिलीप, प्रवीण, पायल, लक्ष्मी साहू मना, कोई भंगी टोलल हावे, ननकाराम धुरवे, जामुन भाई, फितरत मालती धुरवे मन हावे। अदिति,
0: हाँ,
1: संगी मन संग गोट बात करत करत का बेरा पहा जाते पता नहीं चले ना।
0: हाँ, सही बोले।
1: तो जाए के पहले काले के कार्यक्रम बता देते हैं। संगी वो काले के कार्यक्रम सुनो आप मन हिंदी में, जब मैं आप मन सुनू राग नंदिनी और सवाले को आईने। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपन धान के ध्यान रखो। यही गोट बात संग अपन संगी दामिनी सेन
0: और अदिति साहू
1: देवो बिदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्र

0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू और FM बैंड पर आकाशवाणी का की रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री है आज महतारी वंदन योजना के 29वां किश्त में 66 लाख माई लॉगिन के बैंक खाता में भेजिस पैसा। गृहमंत्री है आज समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास काम में तेजी लाए के दिन निर्देश और राज्य सरकार है पुलिस अधिकारी मन के करीन तबादला। आईजी डीआईजी एआईजी समेत 12 जिला के पुलिस अधीक्षक मन बदले गए हैं। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज रायपुर के निवास कार्यालय ले महतारी वंदन योजना के 29वां किश्त में 66 लाख माई लॉगिन के बैंक खाता में 626 करोड़ रुपया ले ज्यादा के पैसा भेजिस। ए मौका में श्री साय है कहिन की राज्य सरकार है महतारी वंदन योजना के संगे संग लखपति दीदी जैसन आने आने योजना के माध्यम ले माई लॉगिन मन के कमाई ल बढ़ाए उमन ला आर्थिक रूप ले सशक्त बनाए और आत्मनिर्भरता के दिशा में आगू बढ़ाए बर काज करत है। सुरैया मल्ला बता दन की ए योजना में अब तक माई लॉगिन मन के खाता में करीब 18,806 करोड़ रुपया भेजे जा चुके हैं। राज्य सरकार है भारतीय पुलिस सेवा के 24 जन अधिकारी के तबादला आदेश जारी करे है। गृह विभाग को तिले जारी आदेश अनुसार आईजी डीआईजी एआईजी समेत 12 जिला के पुलिस अधीक्षक मल्ला बदले गए हैं। आईपीएस अजय कुमार यादव ला राजनंदगांव रेंज के नवा पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए हैं। उन्हें जिला मन में घलो बड़का बदलाव करत हुए चंद्रमोहन सिंह ला दंतेवाड़ा जिला के नवा पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। एकर अलावा त्रिलोक बंसल ला बेमेतरा, सुनील शर्मा ला सारंगढ़ बिलाईगढ़, जितेंद्र कुमार यादव ला कबीरधाम और चौहान किरण गंगाराम ला बालोद के एसपी बनाए गए हैं। संगे संग योगेश कुमार पटेल ला सूरजपुर, राय गौरव राम प्रवेश ला बलौदा बाजार भाटापारा, उमेश कुमार गुप्ता ला बीजापुर और मयंक गुर्जर ला सुकमा जिला के जिम्मेदारी सौंपे गए हैं। ऐसने संदीप कुमार पटेल ला नारायणपुर, भावना पांडे ला धमतरी और हरीश राठौर ला कोरिया जिला के नवा पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। एक अलावा रॉबिन्सन गुरियाला रायपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा हा आज मंत्रालय महानदी भवन में रखे गए पुलिस विभाग के समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में राहत पुनर्वास और विकास काम में तेजी लाए के निर्देश दिन। ओमन किहिन की नक्सल मामला में जेल में बंद ऐसन आरोपी जेकर खिलाफ ज्यादा गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं है ओखर मामला में नियमानुसार समीक्षा करके रिहाई के प्रक्रिया शुरू करे जावे। उप मुख्यमंत्री है किहिन की अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास बर शासन कोती ले नक्सल मुक्त प्रस्ताव पास करके ऐसन गांव में 1-1 करोड़ रुपया के विकास कार्य स्वीकृत करे जाही जेखर ले ग्रामीण मनला आय के साधन तो मिल ही संगे संग गाँव के विकास घलो हो ही। एक ठिन आने बैठका में श्री शर्मा हा बस्तर के ऐसन गांव मन के पहचान करे के निर्देश दिन है जिहां आज तक किसनहा मन रासायनिक खातु नहीं बउरे है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने गांव के रद्दा मन के निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक ले करे जाही। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा हा अधिकारी मल्ला ए व्यवस्था लागू करे के निर्देश दे है। एमा हर महीना रद्दा के वीडियो निरीक्षण होही और एआई तकनीक हा गड्ढा दरार और आने आने नुकसान के पहचान करही। रिपोर्ट के आधार में सबले ज्यादा खराब रद्दा के मरम्मत के कार्य योजना ल सबले पहली बनाई जाही। ए नवा व्यवस्था के पायलट प्रोजेक्ट आज ले प्रदेश के सबो जिला में शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है किहिन है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में सिर्फ पुलिस गवाह मन के आधार में घलो सजा हो सकत है। एकर बर स्वतंत्र गवाह जरूरी नहीं है। कोर्ट है किहिन कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में स्वतंत्र गवाह मिलना हमेशा व्यवहारिक नहीं होए। ऐसन स्थिति में केवल पुलिस अधिकारी मन के बयान के आधार ऊपर घलो आरोपी ला दोषी ठहराए जा सकत है बसरते उखर गवाही ह विश्वसनीय और सही हो। सिर्फ पुलिस विभाग में होए ले कोनो गवाह के बयान ल खारिज नहीं करे जा सके। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच है ए व्यवस्था देवत हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन ले जुड़े एक नक्सली के अपील ल खारिज कर दिस अउ उखर 10 बछर के सजा ल जारी रखे हे। उहें एक आने मामला में हाईकोर्ट है राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेज मन में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में भर्ती बर राज्य सरकार के न्यूनतम 10% अंक पाए के अनिवार्यता ल अवैध ठहरात हुए रद्द कर दिस। कोर्ट है किस की केंद्र सरकार के वैधानिक संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC कोती ले दे गए छूट ल राज्य सरकार ह अपन मर्जी ले नहीं बदल सके। जस्टिस ए.के. प्रसाद के सिंगल बेंच है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन और एक ठन आने याचिका के संग्रह सुनवाई करत हुए ए आदेश जारी करिस। कोर्ट है राज्य सरकार ल निर्देश दिन है कि INC कोती ले दे गए छूट के जैसन बगैर कोनो न्यूनतम परसेंटाइल के शरत के सिर्फ मेरिट आधार में 15 दिन के भीतर नवा सिरा ले काउंसलिंग के प्रक्रिया शुरू करे जावे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। नगरी प्रशासन और विकास विभाग ह प्रदेश के सबो नगर निकाय ल चिट्ठी लिख के खुला गड्ढा ले लैका मन ल जान के खतरा होय के सेती सुरक्षा उपाय के निर्देश दे हे। पत्र में कहे गए है कि नगरी क्षेत्र में अभियान चला के खुला गड्ढा खुला नाली और निर्माण होवत जगह ल पहचान करके ओकर चारों कोती सुरक्षा घेरा बनाए जाए जेखर ले लैका मन सुरक्षित रही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है महादेव ऑनलाइन सट्टा मामला के जांच में अब तक 3,407,77,00,000 रुपया के कथित आपराधिक आय ल पता लगाए के दावा करे है। एजेंसी अनुसार अब तक 573 करोड़ रुपया ले ज्यादा के चल और अचल संपत्ति ल जब्त या कुर करे जा चुके हैं और 5 ठन अभियोजन शिकायत रायपुर के विशेष PMLA अदालत में दाखिल करे गए है जेमा जाँच जारी है। महासमुंद के पढ़िया लयिका रागिनी साहू के चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन यानी शक्ति सेट बर नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुए है। रागिनी है छत्तीसगढ़ ले चुने गए इकलौता छात्रा है। ए मिशन में 108 देश के पढ़िया लयिका मन है चंद्र उपग्रह और रोवर बनाही जिला ए बछर अक्टूबर में इसरो है श्रीहरिकोटा ले लॉन्च करी। रायगढ़ जिला में आज जंगली हाथी के हमला में 2 लोगन के मौत हो गए। धरमजयगढ़ डिवीजन के DFO जितेंद्र उपाध्याय है बताइन कि कापू वन क्षेत्र के अंतर्गत तालगांव में एक जंगली हाथी है माइलोगन ऊपर हमला कर दिस जेखर ले ओखर मौत हो गए। उन्हें छाल वन क्षेत्र के और नारा गांव में घलो हाथी के हमला में एक मजदूर के मौत हो गए। सुनिया मल्ल बता दें कि राज्य में ए हफ्ता के भीतर हाथी के हमला में 3 जन के मौत हो गए है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई पुलिस 8.5 करोड़ रुपया ले ज्यादा के साइबर ठगी के मामले में फरार एक आरोपी ल पकड़े है। आरोपी के पहचान सुपेला निवासी राकेश शर्मा के रूप में हो है। सुपेला निवासी राकेश कुमार के रूप में हो है। पुलिस ले मिले जानकारी अनुसार आरोपी है पूछताछ में अपन अपराध ल मान ले है। ओकर तिल ले मोबाइल सिम कार्ड और आने डिजिटल साख्त जब्त करे गए है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सब्बो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। ए दारी के अंक में आप मन बस्तर जिला के बारे में जानकारी सुनिया। मुख्य सचिव विकासशील के अगुवाई में काली मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तैयारी ल लेके अधिकारी मन के संग एक बड़का बैठका होइस। बैठका में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के तैयारी के बारे में विचार करेगीस। संगे संग स्वतंत्रता दिवस समारोह के आने आने व्यवस्था पर अधिकारी मन के जिम्मेदारी घलो तय करेगीस। बैठका में बताएगीस कि राजधानी रायपुर के पुलिस पलेट ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन बिहनिया 9 बजे ले होही। आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। मुख्यमंत्री है आज महतारी वंदन योजना के 29वां किस्त में 66,00,000 माइलोगिन के बैंक खाता में भेजिस पैसा। गृहमंत्री ह आज समीक्षा बैठक म नक्सल प्रभावित क्षेत्र म विकास काम म तेजी लाए के दिन निर्देश और राज्य सरकार ह पुलिस अधिकारी मन के करीन तबादला आईजी डीआईजी एआईजी समेत 12 जिला के पुलिस अधीक्षक मन बदले गए हे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
3: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशयोः द्विपक्षीय संबंधाः सामरिक सहभागिता स्तरे समेधिताः। 30,000 यावत् पारस्परिक व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 रूप्यकाणां लक्ष्यं निर्धारितम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कथनं न्यूजीलैंड देशे निवसता भारतीय समुदायेन द्वयोः राष्ट्रयोः विकास यात्रायां एकः महत्वपूर्णो भागः ऊढः। ऑकलैंड नगरे विशालं भारतीय प्रवासी समुदायं च संबोधितवान् असौ। रक्षामंत्रिणा राजनाथ सिंहेन स्वदेशी तंत्रेण निर्मितस्य आईएनएस महेन्द्रगिरी युद्धपोतस्य विधिवत जलावतरणं विधापितम्। संसूचितं च यत् भारतम् एकं सुदृढं आत्मनिर्भरं भविष्योन्मुखं च रक्षाबलं निर्माति। परिवहन क्षेत्रे प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संचालित सहयोगं सुदृढं विधातुं ऐतिहासिकं ब्रिक्स मंत्री घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या अंगीकृतम्। बावी चक्रवातस्य कारणात् जापान तैवानयोः विमान यात्राः निरस्तीकृताः। शैक्षणिकाः संस्थाः च स्थगिताः। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये पञ्चमान्तिम च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा अद्य सायं साउथहैम्प्टन नगरे आयोजयिष्यते। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम उपान्त्य स्थानानां निश्चयार्थम् अद्य रात्रौ प्रागुपान्त्य चरणे नॉर्वे इंग्लैंड दलयोर अथ अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशयोर मध्ये स्पर्धा भविता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां संपाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः सम्बन्धान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपान्तरितवन्तौ। अनेनैव सह 30,000 यावत् उभय देशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 रूप्यकात्मकं विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभय देशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य क्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सिन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
4: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
3: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिकरूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्ट चर्च तः क्वींसटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लेक्सन इत्यमुना उभय देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रावोचत् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा क्षमतां सहैव आधुनिक प्रौद्योगिकीं सुदृढीकृत्य एकां बलशालिनीं आत्मनिर्भरां रक्षासेनां निर्माति। तेन प्रतिपादितं यत् आगामी युद्धेषु कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः एवमेव अन्येषां नवीन तन्त्राणां प्रयोगः भवितुमर्हति, परञ्च अन्तिमरूपेण विजयः राष्ट्रिय संकल्पेन वीर सैनिकैः सक्षम सैन्यशक्त्या एव प्राप्स्यते। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी पारम्परिक सैन्यबलं च परस्परं पूरकौ स्तः। सहैव भारतम् आत्मनिर्भर भारत संकल्पस्यान्तर्गतं द्वयोः अपि क्षेत्रयोः उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधातुं कटिबद्धं वर्तते। श्रीराजनाथसिंहः अद्य विशाखापत्तनम नगरे स्वदेशीयायाः प्रोजेक्ट 17A प्रणाल्याः षष्ठस्य INS महेन्द्रगिरि नामकस्य स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोतस्य नौसेनायाः पूर्वीय पोतदले सम्मेलनं समारोहं सम्बोधयन् आसीत्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन अथ राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य महाराष्ट्रस्य नागपुरे तृतीय ब्रिक्स परिवहन मन्त्रिणां परिषदः अध्यक्षतां विहितवान्। सम्मेलनस्यास्य समाप्त्यन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणः असौ अब्रवीत् यत् बहुभ्यः देशेभ्यः समागतैः प्रतिनिधिभिः वैकल्पिक जैव इन्धनानाम् अथ प्रदूषणमुक्त प्रौद्योगिकीनाम् उपयोगेन भूमार्ग, रेलमार्ग, विमानयान, जलमार्गेषु च कार्बन तटस्थ परिवहनं विकासयितुं कृतानां प्रयासानां विस्तरेण समीक्षा कृता। असौ प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये संकट प्रतिरोधकाय, सुस्थिराय च परिवहन क्षेत्राय परस्पर सहयोगं सुदृढं विधातुं आधुनिक प्रौद्योगिकीनां नूतनान्वेषणानां च आदान प्रदानं क्रियते। अद्य व्यावी चक्रवातः पूर्ण चीन सागरे प्रचण्ड वेगेन प्रवर्धमानः सन् जापानस्य दक्षिणेषु द्वीपेषु तीव्रवायुना सह अतिवृष्टिम् अजनयत्। अनेन सहैव तैवान देशः पूर्वीय चीन देशश्च चक्रवातस्य तट संघटनाय पूर्णतः सज्जो वर्तेते। ऋतुविभागस्य पूर्वानुमानानुगुणम् एषः चक्रवातः तैवान देशस्य उत्तर भागात् प्रातः एव चीन देशस्य झेनजियांग प्रांते तटं प्रवेक्ष्यति। जापान देशस्य ओकिनावा प्रांते समुद्र तरंगाणां समाह्वानानन्तरं 200-तोप्यधिकाः विमानयानानि निरस्तीकृतानि। अद्य भारत इंग्लैंड क्रिकेट दलयोर्मध्ये प्रचलन्त्याः श्रृंखलायाः पञ्चमान्तिमश्च T20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा साउथैम्पटन नगरस्य यूटिलिटा बाउल क्रीडांगणे भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का की रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं गौतम चंद जैन और साथी। पहले सुनिए गौतम चंद जैन, कुसुमलता ठाकुर और ध्रुवाराम मरकाम के स्वर में ये लोकगीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आइए अब सुनते हैं कुसुमलता ठाकुर और ध्रुवा राम मरकाम के स्वर में ये छत्तीसगढ़ी गीत।

गौतम चंद जैन और कुसुमलता ठाकुर के स्वर में आप सुन रहे थे ये छत्तीसगढ़ी गीत। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इन्हीं के स्वर में नाचा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे गौतम चंद जैन और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में, ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। नक्सली प्रकरणों की वापसी के लिए अब हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से की जाएगी। और रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। इस मौके पर श्री

0: पाटन ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ ही लखपति दीदी जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
1: आज महतारी बंधन योजना के तहत 29वीं किस्त जारी किए हैं और इस तरह से अभी तक कुल 18,800 करोड़ रुपए से अधिक हमारी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन की राशि भेज चुके हैं और इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और जब वो मिलती हैं कार्यक्रमों में तो बहुत खुश होती हैं। अलग अलग तरीके से उनका अनुभव सुनने को आता है, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग हमारी माताएं करती हैं, तो इस तरह से आर्थिक रूप से हमारी माताओं का बड़ा सशक्तिकरण हो रहा है।
0: उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज मंत्रालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों में विधि सम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन और वकीलों का दल बनाकर प्रकरण वापसी के संबंध में जरूरी कार्रवाई करें। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि नक्सल प्रकरण की वापसी के लिए हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए शासन द्वारा नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर ऐसे गांव में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे जिससे ग्रामीणों को आजीविका के साधन मिलेंगे, साथ ही गांवों का विकास भी होगा। इसके लिए 50 गांवों को चिन्हित किया गया है जिसमें सुकमा और बीजापुर के 20-20 तथा नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाए। राज्य सरकार ने बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बस्तर के उन गांवों की पहचान कर उनका जैविक प्रमाणन कराने के निर्देश दिए जहां आज तक किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांव छत्तीसगढ़ की धरोहर है और इनकी जैविक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। बैठक में बस्तर के जैविक उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और सहभागी गारंटी प्रणाली के तहत आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिर्फ पुलिस गवाहों के आधार पर भी सजा हो सकती है, इसके लिए स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र गवाह मिलना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उनकी गवाही विश्वसनीय और सच्ची हो। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह देते हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े एक नक्सली की अपील को खारिज कर दिया और उसकी 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। वहीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार के न्यूनतम 10% अंक पाने की अनिवार्यता को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर महीने सड़कों का वीडियो आधारित निरीक्षण होगा। एआई तकनीक गड्ढों, दरारों और अन्य क्षतियों की पहचान करेगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की ओर से जारी पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईजी, डीआईजी, एआईजी सहित 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। आईपीएस अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभयारण्य में प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म को नई पहचान देते हुए जंगल सफारी में वन महोत्सव और इको ट्रेल का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ग्रामीणों के साथ तेंदुआ दादर इको ट्रेल का भ्रमण किया। वन महोत्सव के तहत उप मुख्यमंत्री ने जिले में 50,000 सीड बॉल रोपण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर 1,00,000 पौधों के वितरण अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने बैगा समुदाय के 100 हितग्राहियों को सोलर लालटेन और जैकेट वितरित किए। रायगढ़ जिले में आज जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। धरमजयगढ़ डिवीजन के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कापू वन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तालगांव में एक जंगली हाथी ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं छाल वन क्षेत्र के ग्राम और नारा में भी हाथी के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई। गौरतलब है कि राज्य में एक सप्ताह के भीतर हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मानसून के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर आधुनिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। सेंसर आधारित ये प्रणाली 24 घंटे नदियों के जलस्तर की रियल टाइम निगरानी करती है। जलस्तर चेतावनी या खतरे के स्तर तक पहुंचते ही संबंधित अधिकारियों के मोबाइल पर तत्काल अलर्ट भेजा जाता है, जिससे समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पत्र लिखकर खुले गड्ढों से बच्चों की जान को खतरा होने के कारण सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाकर खुले गड्ढों, नालियों और निर्माणाधीन स्थलों को चिन्हांकित कर उनके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया जाए, ताकि बच्चे उससे सुरक्षित रहें। साथ ही निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को भी निर्देश जारी कर गड्ढों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए जाने को कहा गया है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई पुलिस ने 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुपेला निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। महासमुंद की छात्रा रागनी साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। शासकीय आशीबाई गोलचा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की रागनी साहू छत्तीसगढ़ से चुनी गई इकलौती छात्रा हैं। देश भर से चुने गए 20 विद्यार्थियों में उन्होंने जगह बनाई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में कल 12 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी कल रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से कल 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरगुजा जिले में कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रायपुर जिले के धरसीवा थाना क्षेत्र में आज कुंभरगढ़ स्थित प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर की बावड़ी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और बिलासपुर में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली का पोल लगाने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला सहित 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के रूप में 66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। नक्सली प्रकरणों की वापसी के लिए अब हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से की जाएगी। और रायगढ़ जिले में जंगली हाथी

0: के हमले में 2 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा गीत। फिल्म गुलामी के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ, मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे फिल्म नगीना में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में रात 8 बजे और रात 9:15 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम मोनिका।
1: राम राम निधि। संगे संग हमार कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमार दोनों के
2: राम राम।
0: देख मोनिका, बदलत मौसम अनुसार हमन खेती किसानी के काम बूता करथन।
1: हाँ।
0: है ना। वैसे भी हमर जो जुन्ना बेरा रही से एमा हमर सियनहा मन हा मौसम आधारित खेती करत रहे।
1: हाँ।
0: और हमू मतलब वैसे खेती करना सीखा।
1: मतलब पहले की जन खेती किसानी रही से सरल भरोसा रहा है।
0: और यही हुए अमन पानी के अगुरा करे, कब पानी बरसी हमन खेती की शुरुआत करबो।
1: मैंने वो बेरा में जगह जगह हरियर हरियर देख के मन घलो खुश हो जाए। फसल हालात जब खेत में देखन होने लगे।
0: फिर ऐसे नहीं देख मोनिका, खेती किसानी के काम बूता तो हमारे 12 महीना की है ना। खेती किसानी हम हर मौसम में करते हैं। और जब करते हैं तो अभी का देखा था मानसून में मा कई ठन मौसमी बदलाव आवत रही थे।
1: हाँ।
0: जैसे बेरा में बने बारिश नहीं होगी तो का होते सूखा पड़ जाते।
1: हाँ।
0: और यहू के कभू कभार झरझरा कहूं पानी गिर गए तो खेती खार के बुआई चक्र संग पैदावार में घलो गिरावट आ जाते।
1: मैंने भाई मेहनत करे तो जाबे करते संगे संग हमारे आर्थिक नुकसान घलो हो जाते।
0: काबर की काय मन मोनिका, अभी के बेरा ला देखस ना तो पहली का है बरसात के दिन में बरसात हो, ठंड बने पर है, गर्मी के दिन में गर्मी रहा है। फिर अभी का होगी मौसम में बहुत परिवर्तन देखे बर मिलते हैं। मन
1: कभी भी बरसात हो जाते भाई ऐसे हो जाते। और देख का है ना कि हमारे यहाँ जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के बात करें तो एला तो

0: धान के कटोरा कहते तो जैसे कि हमारे संगवारी मन ही यहाँ ज्यादातर जिन किसान संगवारी मन है धानच के ऊपर निर्भर हवा और ऐसे कि जिन मानसून है जिन मौसम है एक ऊपर हमारे खेती किसानी निर्भर रहते काबर की धान की खेती है।
1: जब मानसून जो नहीं माने पानी हाँ समय में आते ना सही मात्रा में पानी गिरते तभी फसल बढ़िया होते। फिर आजकल देखबे तो मानसून के बेरा बदल गए कोनो कोनो जगह में बरसा देरी ले शुरू होते तो कोनो कोनो मर कम पानी गिरते तो कहीं एक एक वक्त में भारी वर्षा हो जाते
0: माने ऐसे है कि कभी भी कुछ भी हो जाते।
1: हाँ अब देख आधा रास्ता में भी पानी गिरत और आधा रास्ता सूखा हवा तो ये बदलाव के सोचे जो असर है ना मोनिका तेन हमारे खेती ऊपर पड़ते।
0: सही बात है भाई ऐसे है कि अब बरसात के बाद है संगवारी हो बरसात देर ले शुरू हो ले धान के बोनी में देरी हो जाते अब कम पानी गिरी तो जैसे हम बात करत रहे बीजा बने ढंग ले नहीं लगाए और फसल के बढ़वार घलोक रुक जाते और खास करके देखे जाए तो हम जैसे बोले ना कि मेहनत तो गीस गीस संगे संग हमारे जिन कहीं
1: चीजों के नुकसान हो गए
0: आर्थिक नुकसान घलोक हो गए।
1: बिल्कुल सिर तो कहा था और ज्यादा पानी गिरे लेका हो जाए फसल सड़ जाते जड़ कमजोर हो जाते तेनों में नुकसान मिलते हैं मला बेरा कुबेरा बरसात के सेती कीरा और रोग प्रकोप घलो बढ़ जाते एकर ले किसान संगी मन के जो खेती के खर्चा है तेनों बढ़ते और उपज घट जाते। कई संगी मन हा दोबारा बोनी करते अब कैसे एक गांव के तो पूरा मेहनत हगे और दोबारा बोनी करे ले काय आर्थिक नुकसान घलो है।
0: अब इसे है निधि की गोट बात तो बड़कन है करबो घलो फिर अभी सुनता ये संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
3: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
4: मोनिका, ये समस्या ले बचे बर किसान संगवारी मल्ला मौसम की जानकारी अनुसार खेती करना बने माने गए है। पानी की बचत, कम बेरा में तैयार और सूखा कर सके या किस्म के बीज लगाना और खेती किसानी में विविधता अपनाना चाहिए। अब कहे संगवारी मन केवल धान के ऊपर नहीं बल्कि फसल चक्र ला अपना के घलो अपन खेती किसानी ला बहुत अच्छा ढंग से बढ़ा सकते हैं।
5: घलो है निधि, कैसे फसल चक्र अपनाते हैं हमारे जन संगवारी मन है ना, एक ही खेत में अलग अलग काम घलो कर लेते
4: हैं।
5: जैसे मेड़ में फल फलहारी या साग भाजी लगा देखे, घर की पूर्ति घलो हुआ थे, आर्थिक लाभ घलो कमावा थे। संगे संग ऐसे है कि जैसे तालाब बना लेने छोटे से कोना मा मछली बदक पाल सकते थे। मैंने इसे है कि हमारे संगवारी मन अब जागरूक हो गए,
4: जागरूक हो गए। और सबले बड़ी बात का ये जानता जम्मू गुट बात माँ यही कही वो कि मानसून के बदलत स्वरूप हमारे खेती पर एक बड़े चुनौती बन गई है आज के बेरा माँ। अब हमला वैज्ञानिक तरीका संग मौसमी जानकारी और सही कृषि प्रबंधन ला अपनाए की जरूरत है, जेकर ले हमला नुकसान कम हुए और हम ज्यादा ले ज्यादा उपज ले सकन।
5: भाई बात तो सोलाना सही है, और मैं तो एक बात और कहूँ निधि, देख आजकल ना हर मनखे के हाथ में एक सुविधा है, का चीज के, मोबाइल के। मोबाइल में ना अलग अलग ऐप आते जिन हमला मौसम की जानकारी देते। भाई कोनो भी ऐसे नहीं है जो पूरा मतलब सटीक जानकारी दे सके कि भाई ऐसे बेरा में पानी गिरी है, ऐसे बेरा में सूखा हुई, ऐसे हुई, फिर का है कि ये सब
4: अनुमान लग जाते हैं।
5: तो एक हल ये फायदा है संगवारी हो कि हमें खर अनुमान के अनुसार अपन काम लग कर सकते हैं। अब आज के बेरा में एक चीज और है, सिंचाई की बात करते रहे ना, तो देख पहले का हुआ थ्री से सिर्फ सड़क भरोसा रहा, अब ना हमारे जैसे वैज्ञानिक विधि की बात करें तो सिंचाई के आने आने तरीका आ गए।
4: कौन कौन से
5: सूक्ष्म सिंचाई विधि कही थे,

0: सिंचाई है, फवारा विधि है, तो एक हल्ले का फायदा है कि पानी के वतने जो उपयोग होते जितना जरूरी है,
1: पानी बर्बाद नहीं हुए है ना,
0: बर्बाद नहीं हुए का होते है ना, पहले ऐसे होते ही से कि पानी कभी भी डालन तो पानी कतकुन पर बहा जाए और कतकुन बीजा ओकर साथ बहा जाए। अब इसे है कि अब टपक सिंचाई के उपयोग करबो तो पानी सीधा जरी तक जाते, सीधा माटी में जाते और एक हर उपयोग हमारे संगवारी मन है ना कतकुन बखत दवाई खाद उर्वरक डाले पर घलो करते।
1: हाँ ये सब का ये जिन मोनिका ते गोड़ बात करत हस ना, ये बदलत बेरा संग नवा नवा तकनीक आए जिला मनखे ला बेरा रहत अपनाए के जरूरत है। का होते ये हमर काम बूता ला सरलक बना देते। फिर कभू कभू कहन कि जब हमन मेहनत करथन ना तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो जानकारी ला अपनावत, नवा तकनीक ला अपनावत हम अपन काम बूता ला बहुत अच्छा बना सकथन। फसल चक्र ला अपनावत हमन पर्यावरण के स्वास्थ्य ला घलो बने रख सकथन,
0: खेतिया घलो अपनावत हन। तो निधि ऐसे कि हमारे किसान वाणी की बेरा हो गए है, तो संगवारी हो बेरा है किसान वाणी की, प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
1: निधि ऐसे होता ना निधि की जब हम खेती किसानी की बात करते रहे ना भी तो कतकुन पखत ऐसे घला हो जाते है कि भाई हमारे संगवारी मन हा पशुपालन घला करते। फिर दिक्कत ये आती है कि हमारे जिन पशुपालन है ओखर मन ला लाभ सिर्फ एक ही नहीं मिला है भाई। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ दूध के लाभ लेवत हैं कि गोबरेज के लाभ लेवत हैं। अब तो ऐसे है कि ते वैज्ञानिक तरीका के बात कर नवा विधि के बात कर तो आज हमार पशुपालन करथन तो आने आने जिनिस के लाभ ले सकथन।
3: हाँ, काबर की ये वैज्ञानिक विधि है हमार खेती किसानी के संग संग संग पशुपालन में घलो बहुत काम के हवे है ना। और देख ते आज भी बोलेस ना वैज्ञानिक प्रबंधन वैज्ञानिक विधि तो पशुधन ले जो गोबर है गौमूत्र है एकर भी लाभ है। और वो लाभ ला हम वैज्ञानिक प्रबंधन करके कौन ढंग से उपयोग कर सकते हैं इला आज हम अपन क्रम आज की सलाह में विस्तार ले जानबो सुनबो समझबो। आज की सलाह के आज के विषय घलो है गोबर एवं गौमूत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन। और ये विषय के जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष दुबे। आप मन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पशुपालन यंत्रीकरण अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ले हमें और आप मन संग गोट बात करे हैं मोनिका। तो संगवारी हो सुनथन क्रम आज की सलाह।
1: संगवारी हो पशुपालन जब हम करथन तो मन में विचार आते कि सिर्फ दूध उत्पादन करके या तो हम उखर लाभ ले सकथन या आर्थिक लाभ घलोक ले सकथन। फिर भाई आपे मन विचारो कि सिर्फ दूध ही नहीं हुए जेखर ले हमला लाभ मिलते पशुधन ले जुड़े दूसरे जिनिस जैसे गौमूत्र या गोबर के बात करन तो एखर ले घलोक हमार लाभ ले सकथन। तो एखर ले का लाभ है एखर कैसे प्रबंधन करे जा सकते वो भी वैज्ञानिक तरीका ले आज हमन गोट बात करबो। और गोट बात करे खातिर आज हमारे संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष दुबे जी। आप मन है वैज्ञानिक हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पशुपालन का यंत्रीकरण अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना में। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में।
4: धन्यवाद मैडम, नमस्कार, धन्यवाद
1: जी। जैसे कि अभी हमन संगवारी मल्ला बताएं कि हमारे जिन पशुधन है वो सिर्फ दुग्ध उत्पादन खातिर नहीं हुआ है तो भाई दुग्ध उत्पादन के अलावा पशुपालक संगवारी मना अतिरिक्त आय कैसे ले सकते पशुपालन करके।
4: देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछे मैडम आपने। सामान्यता पशुपालकों में खासकर जो गौ पालन करते हैं उनमें सामान्यता ये सोच होती है कि दूध उत्पादन ही आमदनी का स्रोत है, जबकि दूध उत्पादन के अलावा भी जो गोबर का जो उत्पादन होता है और जो गौमूत्र

0: होता है वो भी एक अतिरिक्त आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है,
1: जी
0: पर यदि उसको वैज्ञानिक विधि से अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए तो उस तरह से भी अतिरिक्त आय पशुपालक कमा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी अमन जैसे बात कर रहे थे कि गोबर ही गौमूत्र ही एक हले अतिरिक्त आय ले सकते, तो आप मन ये बताते हो कि गोबर से हमारे संगवारी मन कैसे अतिरिक्त आय ले सकते हैं, मैंने कृषक संगवारी मन जो नहीं खर खाते रखकर काम आता है।
0: अच्छा, देखिए पहले तो एक मन से ख्याल हटा देना पड़ेगा कि गोबर कचरा है। गोबर कचरा नहीं है, गोबर एक संसाधन है। उस संसाधन का उपयोग करके आपको आमदनी कमाना है ना। पहले ये सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरी चीज, गाय का जो गोबर है उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं,
1: जी
0: जैसे उसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाश होता है, जैविक कार्बन होता है। इसके अलावा बहुत सारे उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो यदि इसी गोबर का अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जाए और इसको अलग अलग तरीके से यदि खेत में डाला जाए तो उसकी वजह से उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, फसल का उत्पादन भी बढ़ता है और किसान भाइयों को आमदनी भी होती है। जैसे अलग अलग तरीके हैं, उसका गोबर का वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जैविक खाद बनाया जा सकता है, बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है, बायोगैस से जो स्लरी बन रही है उसको खाद के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। गांव में आज भी जो गोबर के कंडे बनते हैं उनका बहुत आर्थिक महत्व है, वो बिकता है अच्छे से, तो व्यावसायिक महत्व है उसका। इसके अलावा जैविक कीटनाशक जो आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है या जो नेचुरल फार्मिंग का जो चलन है उसके लिए बहुत उपयोगी है ये। इसके अलावा कंपोस्ट खाद भी गोबर के माध्यम से बनाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आप मन हाँ वर्मी कंपोस्ट के बात करे हो, तो गोबर खाद ले जुड़े हमन बात करो कि भाई वर्मी कंपोस्ट का होते, पहले तो आप मन ये बताते हो।
0: अच्छा, देखिए वर्मी कंपोस्ट शब्द जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वॉर्म्स और दूसरा कंपोस्ट, मतलब केचुए से मिलके जो कंपोस्ट बन रहा है वही वर्मी कंपोस्ट है, जिसे हिंदी में केचुआ खाद भी कहा जाता है। तो ये एक जैविक तरीके की खाद है जिसमें गोबर और उसके अन्य जैविक पदार्थों को केचुए के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले खाद में बदला जाता है। इसमें इसका महत्व ये होता है, जैसे ही उसमें केचुआ का अपन मिलाते हैं, केचुआ का मिश्रण करते हैं गोबर में, तो उसमें नाइट्रोजन जो है अधिक उपलब्ध रूप में हो जाता है। जो नाइट्रोजन आसानी से गोबर में उपलब्ध नहीं हो पाता, केचुआ खाद में वो आसानी से उपलब्ध होता है। फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है, पोटाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है और लाभकारी सूक्ष्म जीव भी उसमें भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, वर्मी कंपोस्ट इकाई अगर हमारे किसान संगवारी मन हाँ बनाना चाहते तो ये कैसे बना सकते?
0: देखिए वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा उसमें लागत आती नहीं है। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए स्थान का चयन देखना है। तो ऐसी जगह जहाँ पर छायादार हो, बहुत तेज़ धूप ना आती हो, जहाँ पे जल भराव ना होता हो और जहाँ पे पानी की सुविधा हो, ऐसी जगह का चयन करना है वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए। जो आवश्यक सामग्री है उसमें गोबर है, फसल का अवशेष है, सूखी पत्तियां हैं, केचुए है और थोड़ा सा पानी चाहिए नमी बनाए रखने के लिए। तो इसमें निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले गोबर चाहिए जो कि 15 से 20 दिन तक रखा हुआ हो या सड़ा हुआ हो। इसके बाद उसमें 3 से 4 फुट चौड़ी क्यारी बनाना है जिसमें गोबर और फसल की अवशेष की परतें बिछा दी जाए। इस क्यारी में या गड्ढे में गोबर और फसल की अवशेष की परतें बिछा दी जाएं और थोड़ा बहुत पानी छींट के नमी बनाए रखें। फिर उस पे केचुए को छोड़ देना है। उसके बाद फिर से सैंडविच की तरह ऊपर से फिर एक परत बना देना है, फिर केचुआ छोड़ना है। तो इस तरह से लेयर टू लेयर जो है उसको बनाना है। और ध्यान देने वाली बात यह है, लगभग 60% नमी होना चाहिए, सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए और अत्यधिक पानी ना डालें। तो इस तरह से 45 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बड़े आसानी से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है।
1: मैंने आप मन बहुत सुखद तरीका ले

0: लागत और कम आती है और गोबर की महत्वता उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है। तो उस तरह से नाड़ेप निर्माण करके भी इनका उपयोग किया जा सकता है गोबर का। इसके अलावा आज देख रहे होंगे कि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो गोबर गैस जो है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि LPG की में बचत भी के भी विकल्प के तौर पर भी उपयोग कर सकते
1: जी
0: हैं। पर्यावरण संरक्षण भी होता है बायोगैस बनाने से। इसके अलावा धुएं से मुक्ति भी मिलती है और गोबर की महत्वता भी इसमें बढ़ती है। इसके अलावा जो गोबर गैस बना रहे हैं उससे जो स्लरी निकल रही है गोबर गैस बनाने की वजह से, तो वो स्लरी भी एक अच्छे उर्वरक का काम करती है। और किसान बंधु जो यूरिया DAP पोटाश की जो कमी हो रही है उसके बदले ये स्लरी का भी अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गौमूत्र आधारित जैविक खाद है, जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, अग्न्यास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, नीमास्त्र हो गया। तो ये सब तरीके से भी बहुत सारे जैविक खाद गौमूत्र के थ्रू माध्यम से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे महिला स्व सहायता समूह हैं जो कि इन गाय के गोबर से दिया बना रहे हैं, गमले बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं, बहुत सारे सजावट के उत्पाद जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से इन गोबर और गौमूत्र का किसान बंधु उपयोग करके अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, आप मनाए हमारे संगवारी मल्ला बड़ सुघर तरीका ले और विस्तार ले बताए कि भाई आज के बेरा में सिर्फ दुग्ध उत्पादन करके लाभ बस नहीं लिए जा सके, हमारे जिन पशुपालक संगवारी मन है मन हाँ गोबर और गौमूत्र ले घलोक लाभ ले सकते हैं। ये सारी जानकारी खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: संगवारी हो, अभी हमन सुने जानकारी गोबर एवं गौमूत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन, ये विषय में हमर जानकारी देवत रही हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष दुबे, विज्ञानिकी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, पशुपालन यंत्रीकरण अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। आप मन के जानकारी लिए हम यही जाने इनके गोबर संसाधन एक ठन जोन हमने मतलब भरपूर जोन पोषक तत्व भूइया ला चाहिए होते, खाद ला चाहिए होते, वो हमन मल्ला वो गोबर से मिल जाते और एमा छोटे छोटे जोन सूक्ष्म तत्व जोन रहते मृदा की उर्वरता बढ़ाए बर तेना रहते,
1: माने एमा जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास,
2: हाँ,
1: और जिन सूक्ष्म तत्व रहते एमन शरीर जिन मर माटी है ओला पोषक तत्व देते।
2: हाँ, गोबर से हमन जैविक खाद, बायोगैस, जैविक कीटनाशक बना सकथन और कंपोस्ट खाद घलो बनाए में ये मदद करते। मैंने कुल मिला के गोबर और गौमूत्र जोन है तीन बड़ लाभ के हैं।

निधि, हमर करा ना हलो चौपाल क्रम ले हलो किसान वाणी क्रम ले जुड़े एक सूचना है, तेला संगवारी मल्ला बता देतन। संगवारी हो, अवैया मंगलवार 14 जुलाई 2026 के प्रसारित हुआ हलो किसान वाणी कार्यक्रम में इधरी के विषय हुई नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। ये विषय में आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित हुई मनीषा खापड़े, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 400-3482, दूसरिया फोन नंबर है 400-3483 और तीसरिया फोन नंबर है 400-3484। रायपुर

0: डी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 14 जुलाई 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक। और ये कार्यक्रम के प्रसारण के बात करें तो ये हुई वही दिन मंगलवार के संझा 7:30 में। संगवारी हो, आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही और सूचना इच्छे सिरावत है।
1: मोनिका, गोड बात करें, जानकारी घलो पाएं, सूचना घलो सुने,
0: हाँ
1: फिर अब मनोरंजन के बेरा है तो एक ठन गीत घलो सुन लेते हैं। संगवारी हो, सुनतन ये सुगर गीत जिला गावत है विदुषी ममता चंद्राकर मन।

0: विदुषी ममता चंद्राकर और संगवारी मन के स्वर में सुनें ये सुघर गीत।
1: और अब बेरा है हमार क्रम कृषक प्रश्न मंच के। तो भाई ऐसे है कि हमार संगवारी मन अगर आज हमार जिन सलाह है ना आज की सलाह क्रम ओला बने सुघर ध्यान लगा के सुने हो ही तो झटकुन एक ना बड़कन मेल हम मिल जाएगी। तो संगवारी हो आज के प्रश्न में आप मल्ला बता देता हूँ, पेन और पेपर लेके लिख ले रहो। हमारा आज के प्रश्न है कि गोबर के काका उपयोग हो सकते। प्रश्न ला एक घंव और बता देता हूँ कि गोबर के काका उपयोग हो सकते। सही जवाब पर मेल आई डी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। भाई एक हर जिन राय आज के प्रश्न एक हर आप मल्ला एक बार वो मैं बता दूँ RAIAAJKE राय आज के प्रश्न PRASHNA और 23@gmail.com। और इसने हमन पूछे रहें कि पाँचू हफ्ता का है ओकर सवाल और जवाब, तो ये बताता हूँ। पाँचू हफ्ता पूछे रहें जुलाई महीना में कौन कौन से साग भाजी लगा सकथन। तो एक सही जवाब है सेमी है, पताल है, करेला, भाटा, रमकेरिया, फूलगोभी, मिर्चा, लौकी, कुमड़ा, खीरा, गवारफली ला लगा सकथन। और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम ला कौन बताई बताई
0: मैं बताऊं। सही जवाब भेजे संगवारी मन ने मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, कोहका भेलई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत आयुष और नंदिनी जंघेल, अडार नानघाट ले माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा, गंडई पंडरिया ले है शिवा यादव, राज, चिंटू, तरुण, चोवा यादव, कन्हैया और निर्मला यादव, चर डोंगरी पिपरिया ले है दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन और कुमारी साहू और इंद्राणी माया साहूमन, महादेव घाट अमलेश्वर ले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, गुड़िया ओ रियांश ठाकुर मनहा, पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, समडिल नवा पारा ले है दीपक गुप्ता
1: श्रीमती
0: और श्रीमती अंकु और राघव गुप्ता मनहा।
1: भाई ऐसे संगवारी हो कि आप मन सही जवाब लिख के भेजो, ये खातिर आप मन ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अब निधि देख एक ठिन गाना ते सुनाए रहे भाई हमारे, बात तो सही है कि जब चौपाल में सब क्रम होते ना और गीत संगीत होते तो वो घर उत्साह और उछा और एकदम मन एकदम हरियर हरियर हो जाते। भाई मानता हूँ अभी सावन आए नहीं है तब बोले गाना सुनबो तो बने लागी। तो चल एक ठिन गाना ला हमरों डाले सुनाथन और सुनथन संगवारी हो। गाना गाए ही इला श्रवण कुमार साहू कर संगवारी मना।

0: श्रवण कुमार साहू और संगवारी मन के गाए ये गीत ला अभी मन सुनें और संगवारी हो ये तो रही से किसान वाणी प्रायोजक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: अब हुआ थे जाए के बेरा फिर जाए के पहली बता देवन काली के कार्यक्रम काली संझा बेरा चौपाल मा गुड़बात हुई खरपतवार नासी रसायन के उपयोग वक्त सावधानी ये विषय मा और भेंट वार्ता हुई भेंट वार्ता के विषय है नए फसल उद्यान की स्थापना हेतु नियोजन और प्रबंधन विशेषज्ञ हुई डॉक्टर कुंतल साटकर और वे गीत संगीत के मधुरता तो बगरबे करी अधिक विदा कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मल्ला मोनिका
0: और निधि के
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, सुरीले गीतों के साथ प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे यीशुदास की आवाज में। फारूक जमी के लिखे गीत को संगीत दिया था राज कमल ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा गीत। फिल्म महान के लिए धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं भरतलाल हरिंद्र और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये छत्तीसगढ़ी गीत।

कार्यक्रम के आखिर में अब सुनिए भरतलाल हरिंद्र और साथियों के स्वरों में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। कलाकार थे भरतलाल हरिंद्र और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने, हेनरी पैटन और हैरी हेलियोवोरा की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की श्रृंखला का अंतिम टी20 मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी और भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक और पीथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। और इस मुकाबले के लिए एक तरफ चेकिया की कैरोलिना मुखोवा हैं जबकि दूसरी तरफ लिंडा नोस्कोवा हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी आज इस खिताबी मुकाबले में भिड़ंत करते हुए नजर आएंगे। वहीं अब से कुछ देर पहले पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवोरा की जोड़ी ने खिताब पुरुष डबल्स का अपने नाम कर लिया है। उन्होंने आज फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के मटे पाविक और अल सल्वाडोर के मार्सेले अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब जीता। इससे पहले कल इटली के यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव ने विंबलडन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है, जहां कल इटली के यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरेव से होगा। कल सेमीफाइनल मुकाबले में ज्वरेव ने ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी के शानदार अभियान पर विराम लगाते हुए उन्हें 7-6, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर लगातार दूसरे विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। डिफेंडिंग चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी 24 साल के सिनर ने 39 साल के जोकोविच को सीधे सेटों में मात देकर एक बार फिर से उनका 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ दिया। अब फाइनल में एक तरफ फ्रेंच ओपन जीत कर आ रहे ज्वरेव हैं, जिनके पास अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने का मौका होगा, जबकि दूसरी तरफ सिनर लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। सिनर ने विंबलडन 2025 का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हरा कर जीता था। हार के बावजूद भी 23 वर्षीय आर्थर फेरी चर्चाओं का विषय रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। विश्व रैंकिंग में 114वें स्थान से शुरुआत करने वाले फेरी ने दमीर जुमहूर, ओटो विर्तानेन, जीजू बर्ग्स, ग्रिगोर दिमित्रोव और फ्लावियो कोबोली जैसे खिलाड़ियों को हरा कर अंतिम चार तक का सफर तय किया। वो लाइव रैंकिंग में 78 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 36वें रैंकिंग तक पहुंच गए हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि विंबलडन के इस ऐतिहासिक कोर्ट पर कई खिलाड़ियों ने खिताब जीते और कई खिलाड़ियों ने दर्शकों के दिल जीते। ऐसे ही खिलाड़ी रहे आर्थर फेरी, जिन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की, जहां फीफा विश्व कप में नॉर्वे का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला मियामी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से शुरू होगा, जबकि एक अन्य मुकाबले में सुबह 6:30 बजे गत विजेता अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कल स्पेन ने एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।
2: 16 वर्षों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने का स्पेन का इंतजार खत्म हो गया है। स्पेन ने बेल्जियम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सेमीफाइनल का सफर तय किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्हें पहली सफलता मैच के 30वें मिनट में मिली, जब लैमिन यामल के शानदार रन के बाद पेड्रो पोरो ने बॉक्स में लो क्रॉस किया। बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ ने पहले डेनी ओल्मो का शॉट रोक लिया, लेकिन रीबाउंड पर फेवियन रुइस ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि बेल्जियम ने स्पेन की बढ़त को बरकरार नहीं रहने दिया और मैच के 41वें मिनट में टिमोथी कोस्टिगेने के शानदार क्रॉस पर चार्ल्स डी केटलेयर ने हेडर की मदद से गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल के साथ स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन की लगातार 6 क्लीन शीट का सिलसिला भी टूट गया। मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 86वें मिनट में मैदान पर आए स्पेन के मिकेल मेरिनो ने 2 मिनट बाद ही टीम के लिए विजयी गोल दागा और अंतिम 4 में टीम का स्लॉट फिक्स कर दिया। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना पिछले विश्व कप की उप विजेता फ्रांस से होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो फीफा भी अब अपने खिताब की दौड़ के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब रुक करते हैं लंदन के लॉर्ड्स मैदान का, जहां पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जी हां, बिल्कुल 140 साल बाद ये मैदान महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। खेल के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। भारत ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए थे। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, ऐतिहासिक मुकाबला कहा जा सकता है कई मायनों में, इस समय क्या स्थिति है भारतीय टीम की इस मैच में?
3: जी शक्ति, भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम पर इस समय 145 रन की बढ़त के साथ खेल रही है और स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ही क्रीज पर डटे हुए हैं। तो अभी तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। अगर भारत की पहली पारी की बात करें तो उनको शुरुआती झटके जरूर लगे थे, जिनमें शेफाली वर्मा और यष्टिका भाटिया के नाम शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप करी स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने 64 रन की। उसके बाद हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच 89 रन की साझेदारी हुई और फिर पुछल्ले बल्लेबाजों में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, इन दोनों ने 45 रन जोड़े भारत के लिए और एक मजबूत स्थिति में उनको खड़ा किया। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने 3 विकेट लिए थे और इसके अलावा जो जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको कोई भी मौका नहीं दिया। क्रांति गौड़ ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट हॉल लिया और सिर्फ एक ही प्लेयर रही एमी जोन्स, जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया इंग्लैंड की तरफ से। कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने 44 रनों का योगदान दिया था। तो इसके चलते इंग्लैंड की टीम जो है वो 170 रन पर सिमट गई थी और भारत को 115 रन की लीड मिली थी।
0: जी बिल्कुल, यानी 115 रन की बढ़त, और जब आप 285 रन बना करके इतनी बढ़त हासिल कर लेते हैं तो वाकई आपका मनोबल ऊंचा होता है और कह सकते हैं कि मैच पर भारतीय टीम की पकड़ मजबूत है। वहीं इंग्लैंड में इस समय पुरुषों का टी20 मुकाबला भी खेला जा रहा है, जहां भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टी20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में साउथहैम्पटन में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 14वें ओवर में एक विकेट पर 146 रन बना लिए थे। विशेष, जिस तरह की ये श्रृंखला गुजरी है भारत के लिए, क्या कहा जा सकता है? टीम श्रृंखला पहले ही गंवा चुकी है और अब सब कुछ आगे देखने के लिए होगा, जो कि एक दिवसीय श्रृंखला भी है।
3: जी बिल्कुल, भारत के लिए ये श्रृंखला जो है किसी बुरी सपने से कम नहीं रही है। आज हालांकि टीम में 2 बड़े बदलाव हमको देखने को मिले हैं कि वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर दिया गया है या उनको आराम दिया गया है। उन्होंने 3 मुकाबलों में 42 रन जोड़े थे। वहीं संजू सैमसन वापसी करते नजर आए और सूर्यांश सेडगे को जगह मिली है वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे। भारत पहले से ही 3-0 से श्रृंखला में पीछे चल रहा है। आज सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए मैदान पर उतरी है भारतीय टीम और इसी के चलते उनको वनडे सीरीज के लिए जो अपना मोमेंटम है वो सेट करने के लिए देखेगी। भारत को इसके इस सीरीज के तुरंत बाद 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम में, दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में और तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेलेगी।
0: जी बिल्कुल, जहां पर टीम की उम्मीद होगी कि जब मैदान पे उतरा जाए तो एक नया जोश, नया जुनून और नया जज्बा हो और टीम के साथ दर्शकों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की वो जोड़ी भी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां दूसरे देश की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें

0: साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को एक साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साझेदारी की अपार संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश खेल के क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं। इस दौरान श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत न्यूजीलैंड से रग्बी सीखना चाहता है।
0: भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं।
1: तो एक शानदार टीम है न्यूजीलैंड के पास रग्बी की, जिसका इस विश्व में शायद कोई ही सानी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे न्यूजीलैंड में खेलों के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से बेहद प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेल तकनीक में साथ मिलकर काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं स्पेन के मैड्रिड का, जहां भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तानिपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: भारत की 17 वर्षीय तीरंदाज प्रीतिका प्रदीप ने शानदार वापसी करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की तीरंदाज हजल बुरून को 145-142 से हराकर मैड्रिड तीरंदाजी विश्व कप में अपने करियर का पहला व्यक्तिगत विश्व कप कांस्य पदक जीता है। उन्होंने इसके साथ ही एक ही दिन में भारत के लिए दो पदक जीतकर यादगार प्रदर्शन किया। प्रीतिका ने ज्योति सुरेखा वेनम और चिकिता तनिपार्थी के साथ मिलकर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस तरह कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का समापन दो पदकों के साथ किया। प्रीतिका को सेमीफाइनल में मलेशिया की फातिन नूर फतेहा मत्साले के खिलाफ 142-144 से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक मुकाबला खेलना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत में प्रीतिका दबाव में नजर आई। तुर्की की बुरून ने पहले ही दौर में लगातार 3 सटीक 10 लगाकर बढ़त बना ली और प्रीतिका 28-30 से पीछे हो गई। दूसरे दौर में उन्होंने 29-28 से बढ़त बनाकर अंतर कम किया और तीसरे दौर में तीनों तीरों पर सटीक निशाना लगाते हुए स्कोर 87-87 से बराबर कर दिया। अंतिम तीर पर उन्हें जीत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 8 अंक की जरूरत थी, लेकिन प्रीतिका ने दबाव को मात देते हुए शानदार परफेक्ट 10 लगाया और अपने करियर का पहला विश्व कप कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले सुबह खेले गए महिला कंपाउंड टीम फाइनल में ज्योति सुरेखा वेनम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तानिपार्थी की भारतीय तिकड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। कोलंबिया ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखते हुए भारत को 232-228 से हराया, जिससे भारतीय टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब कल रिकर्व वर्ग में भारतीय तीरंदाजों के पास दो और पदक जीतने का मौका होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: सिर्फ तीरंदाजी के निशानों से ही नहीं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से भी भारत को खुशखबरी मिली है, जहां एथलेटिक्स में सर्वेश कुशारे ने मोनाको डायमंड लीग में अपने डेब्यू ही लीग में ऊंची कूद में तीसरा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। अपने डेब्यू में ये कीर्तिमान रचने वाले सर्वेश पहले खिलाड़ी हैं भारतीय, और इसके साथ साथ वो उस एलाइट क्लब में भी आ गए हैं जहां नीरज चोपड़ा और मुरली श्रीशंकर तथा विकास गौड़ा जैसे तमाम खिलाड़ी हैं। और अब चलते चलते एक बार स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लेते हैं, जहां T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इस समय 15वें ओवर में एक विकेट खोकर के 178 रन बना लिया है। वहीं महिला टीम ने इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए हैं। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237142 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
5: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी।

0: एक दूजे के लिए। इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं इंदीवर का लिखा गीत। फिल्म कुर्बानी के लिए संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और आवाजें हैं कंचन, मनहर और आनंद की।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत आकाशवाणी का, ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सौंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भू जल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं। इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संजोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामाण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारम्भ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई के रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। स्नान का बाद में अंदर जाते हैं हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, बेस करते हैं, रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पथी पांचन होता है, आम केला पनस सपुरी सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पथी होता है मूंग और नारियल का कोरा जल, लवंग जायफल दे के चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है

0: पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और शिव मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा फोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला शिव मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। शिव मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
3: निपेंद्र विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। पूसा सूर्या है, पूसा रुनिमा, पूसा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संचेशन।

0: संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, जैसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गाँव में। और भी बहुत सारी वेराइटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
2: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
3: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, रामकेला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
4: है। ये आम कुछ खास है। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी ये हमारे ध्रुव उहे के जन्म है मोर। कुछ दिन हमन अटारी में रहे, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेकर छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल मैं करूँ। हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े

लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं करमा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ। माँ गावे है

बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हो, कबड्डी खेलत रहे हो, सुर खेलत रहे हो, खो खो खेलत रहे हो, तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के गनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से, बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है, और ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है, तो सुने पर आते की के वो छोटे से चटाई निकाली सब कथे में बैठ बेटा में बैठ, कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए, उसी समय वो बोलीस कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की इस। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो

गदगद कर देते, ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हम का ऐसे लागते, मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, उमन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन, ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजे, इकर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे, ये में अब बड़ा आनंद आते, आज भी वही है, अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो शिला गदा पकड़ के रेंगता हूँ, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते।

0: कर सकत रहे हूँ, ओला ऐती तेती बहका सकत रहे हूँ, ओमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे मा हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाथे आ तो बोले भूरियारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मोला बहुत है अच्छा लागते, लेका मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा मा भूर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्योंटल भेटे हूं गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान

0: डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपू सारद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपू विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. रामावरपू माधुरी देवी is accompanied by श्री महादासु येडकोंडलु on the मृदंगम and श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद on the घटम।
0: डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी बिगिन्स हर कॉन्सर्ट विद शक्ति गणपतिम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तैया भागवतार इन नाटरागम रूपक तालम।

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नो विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She's accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Suryaprasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behag Ragam, Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपू माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11 बजने को हैं, समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub, with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She is conferred with 33 state film awards. She was chosen for Padma Bhushan in 2013. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. The third quarterfinal match between Norway and England will be played at Miami Stadium, with kickoff scheduled at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Later, Argentina will face Switzerland at Kansas City Stadium at 6:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Vennam, Pritika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. Meanwhile, in women individual compound event, teenage archer Pritika Pradeep produced a stunning turnaround to beat world number 11 Hazal Barun of Turkey, clinching her maiden World Cup bronze. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।